चल मेरे कंप्यूटर, चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ये गुस्से वाले हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। तो मैं तो बच गई, लेकिन आप अपने आप से दूर कैसे रहेंगे? आप सारा दिन अपने आप को कितना चीट कर रहे हैं। किसी को चीट करना क्या होता है कि किसी का नुकसान करना ना, किसी के साथ धोखा करना, किसी का गलत करना, उसी को आप चीटिंग कहेंगे। अपने मन का पल पल पल नुकसान करना, अपनी फीलिंग्स का नुकसान करना, अपनी खुशी को, अपनी शांति को हर थॉट में खत्म करते जाना। दूसरा अगर चीट करता भी, किस चीज के लिए चीट कर लेती? पैसों के लिए कर लेती, बिजनेस में कर लेती, कुछ आप मेरे पे विश्वास करते मैं झूठ बोल देती, इतना ही तो चीट कर सकते हैं। सामने वाला कितना चीट करेगा, हमें क्या चीट करेगा? दूसरे तो हमसे बच गए, दूसरे हमसे डर गए, दूसरे हमसे दूर रहने लगे, लेकिन हमें तो अपने साथ रहना है। द पर्सन हु आई हैव टू लिव विद 24/7, आई नीड टू बी कम्फर्टेबल विद दैट पर्सन। आई हैव टू लिव विद माई सेल्फ। दूसरे तो अपना संभाल लेंगे, सो वी नीड टू से।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: नमस्कार दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना आपका स्वागत करती हूँ। आशा करते हैं आप सभी हेल्दी वेल्दी होंगे। तो आज हम चर्चा करते हैं आज के युग के अनुसार क्या है। तनाव एक बहुत ही बड़ी समस्या है, तो आज हम इसी पर चर्चा करते हैं। तनाव रहित जीवन, तनाव रहित जीवन कैसा होता है। आज के युग में जो है तनाव एक बहुत ही बड़ी समस्या है। आज का युग जो है तनाव का युग ही बनकर रह गया है। तनाव का कारण चाहे कुछ भी हो, परंतु इस समस्या का हल हमें निकालना ही होगा, नहीं तो यह जो है तनाव विश्व में अशांति तो लाएगा ही, साथ में क्या होता है विश्व के विनाश का कारण ही बन सकता है। यदि हम व्यक्तिगत रूप में भी तथा सामूहिक रूप में भी सुख व शांति

में जीवन जीना चाहते हैं तो हमें समस्या का हल निकालना ही होगा, ये समस्या को हल करना ही होगा। यानी कि तनाव क्या है इसे भी हमें समझना है। हमारे शरीर में रोग निरोधक शक्ति होती है जो कि रोगों से हमारी रक्षा करती है। जब भी बाहर से कोई संक्रमण होता है तो क्या होता है, हमारी यह शक्ति रोगों से हमें बचाती है। लेकिन यदि बाहरी संक्रमण ज्यादा शक्तिशाली है और हमारी क्षमता कम है तो हमें क्या होता है, बीमारी लग जाती है। इसी प्रकार हमारे अंदर एक मानसिक शक्ति भी है जो कि जीवन में आने वाली समस्याओं के प्रतिकूल जो होता है, परिस्थितियों के प्रतिकूल और उलझनों, जो उलझन होते हैं, उलझनों का भी सामना करती है। यदि ये सब हमारी आंतरिक शक्ति से ज्यादा अगर शक्तिशाली हो जाए तो तनाव की शक्ति जो है वो तनाव की स्थिति से ज्यादा शक्तिशाली हो जाए तो तनाव की स्थिति भी पैदा हो जाती है और इसे ही हम चिंता, शोक, फिक्र आदि भी कह सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति को अगर आमदनी क्या होता है, उसका आमदनी अगर आप देखो 10,000 है और उसकी आवश्यकता 15,000 की है, या किसी अन्य कारण से जैसे बीमारी आदि से अचानक खर्चा ज्यादा हो जाए तो उसे क्या होता है, कुछ सोचना पड़ेगा। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के अंदर किसी हद तक सहन शक्ति होती है, उसका शिक्षा का स्तर जो होता है या शारीरिक जो शक्ति होती है वो बौद्धिक शक्ति किसी हद तक ही होती है। यदि किसी कारण वश चाहे परिवार में संबंधों की कटुता या ऑफिस में सहकर्मियों के कारण या किसी अन्य प्रकार में परिस्थितियां हमारी सहन शक्ति से बाहर हो जाए तो भी क्या होता है, वो तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और हम अपने आगे की चर्चा इसी तरह जारी रखते हैं। आज का हमारा विषय है तनाव रहित जीवन। एक होता है तनाव का निवारण भी हमें करना आना चाहिए। तनाव को दूर करने के लिए हमें या तो हम अपनी आंतरिक शक्ति का को बढ़ा सकते हैं, या तो उसे हम बढ़ाएं या बाहरी दबाव को कम करें, जैसे कि हम अपने खर्चे को कम करके या आमदनी के अन्य साधन अपनाकर अपने बजट को ठीक कर ले। इसी प्रकार हम अपनी जो है सहन शक्ति बढ़ाकर साक्षी दृष्टा होकर या ज्ञान योग की पराकाष्ठा से स्वयं को संतुलित कर ले, फिर तो तनाव से मुक्ति पा सकते हैं। यदि परिस्थितियां लगातार चलती रहे और हम तनाव पे ही रहें, जैसे आपसी कलह क्लेश, बिजनेस में घाटा, दफ्तर में बॉस से अनबन, इच्छाओं की पूर्ति न होना या लंबी बीमारी आदि, तो हमारे दिल व दिमाग पर भी तनाव प्रभाव डालने लग जाता है। फिर क्या होता है, डिप्रेशन के चिन्ह जैसे उदासी आना, किसी भी कार्य में मन न लगना आदि ऐसा मतलब पैदा होने लगते हैं। और हमें तनाव को दूर करने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। एक होता है तनाव के प्रति अपना जो होता है दृष्टिकोण, हमें बदलना चाहिए। इसके प्रति हम कैसे अपने दृष्टिकोण को बदलेंगे, किसी भी समस्या या परिस्थिति का भारीपन या हल्कापन, हल्कापन इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसे किस दृष्टिकोण से लेते हैं। यदि हम अपने दृष्टिकोण को बदल ले और यह समझ ले कि यह समस्या हमारे कल्याण के लिए है, इससे हमें कुछ शिक्षा ही मिलेगी या यह परिस्थिति हमारी कमी को निकालने के लिए आई है, तो यह हमें तनाव न होकर एक खेल ही नजर आएगा। एक यहाँ पे ये भी होता है, असफलता को कभी कभी सफलता न मिलने पे भी इंसान उदास हो जाता है, तो इसमें हम क्या करते हैं, असफलता को स्वीकार हमें न करना चाहिए, इसे भी हम स्वीकार न करें। मान लीजिए कि आप किसी भी रास्ते पर चल रहे हैं, रास्ते पे में चलते चलते क्या होता है, आपका पांव फिसल जाता है और आप गिर जाते हैं, तो आप क्या करेंगे, क्या आप चलना छोड़ देंगे या उठकर अपने कपड़े झाड़ेंगे या फिर से चलना शुरू कर देंगे? इसी प्रकार जीवन में कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ता है। यदि आप असफलता को स्वीकार करके हतोत्साहित होकर बैठ जाएंगे तो आप जीवन में उन्नति नहीं कर सकेंगे। अतः असफलता को न स्वीकार करके बल्कि और ही हिम्मत से आगे बढ़ने का ही सोचना, जैसे हर ताले की चाबी होती है वैसे हर समस्या का भी हल अवश्य होता है। मेहनत करते रहने पर कभी कभी हल मिल ही जाएगा। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ, और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार। तो फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में, और हम अपने आगे की चर्चा इसी तरह जारी रखते हुए देखते हैं कि तनाव मुक्त जीवन हमें कैसे जीना है। हमारा आज का विषय है तनाव रहित जीवन। तो तनाव ग्रस्त विश्व, अभी विश्व को कैसा बनाना है? हाँ, अभी तो विश्व जो है वो तनाव ग्रस्त है। और एक होता है जीवन, एक क्या है, प्रयोगशाला है। प्रयोग करने के लिए एक टेस्ट ट्यूब लेकर उसमें कुछ केमिकल्स डाले जाते हैं, फिर जो प्रक्रिया करनी होती है हाँ वह की जाती है। इसके बाद जो नया केमिकल बनता है वह नई खोज के रूप में हमें प्राप्त होता है। इसी प्रकार जीवन में समय जो है हमारी टेस्ट ट्यूब है। इसमें आप अपनी समस्या को डाल दीजिए, फिर समस्या का हल निकालने के लिए विचार सागर मंथन कीजिए। कुछ दिनों बाद समस्या का हल मिल जाएगा, वही हमारा अनुभव होगा और हम अपने अनुभव से दूसरों को भी लाभ पहुंचा सकेंगे। एक यहाँ पे ये भी होता है कि समस्याओं को स्वीकार कर उनसे समझौता करें। कभी कभी हमें क्या करना चाहिए, समझौता भी करनी आनी चाहिए। कई बार समस्याओं का कोई हल नहीं होता, जैसे लंबी बीमारी, अंगहीनता, या परिवार में किसी भी सदस्य का व्यवहार, या ऑफिस में किसी भी हाँ व्यक्ति का व्यवहार आदि। ऐसी बातों को हम क्या करते हैं, हमें स्वीकार करना पड़ता है और उन्हें साथ लेकर चलना ही होता है। जैसे यदि आप कहीं सफर कर रहे हैं तो आपके जो पास अपनी जो अटैची होती है, चाहे वो कितनी भी भारी हो, आप उसे उठाएंगे ही। ऐसे ही आप उन समस्याओं का ही जीवन भी हाँ उन समस्याओं को जीवन रूपी यात्रा की अटैची समझ लीजिए और यात्रा पर चलते रहिए। विश्व में भी बहुत तरह की समस्या है, हाँ तनाव ग्रस्त है हमारा विश्व। तो विश्व में कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो स्वयं तनावग्रस्त नहीं होते।

परंतु उनके कारण जो है सारा विश्व तनाव में आ जाता है। जैसे हिटलर के मन में आया कि वह विश्व विजेता बने, इससे कितना नुकसान हुआ, कितने लोग मारे गए। वास्तव में यह भी एक तनाव ही है। आज भी विश्व के जो हालात बने हुए हैं, वह भी एक प्रकार का तनाव ही है। एक देश दूसरे देश को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है और स्वयं को विश्व का सुपर पावर बनाना चाहता है, इसलिए अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा रहा है। इस पर कितना खर्च हो रहा है, यदि यह लोग भी अगर आध्यात्मिक परायण हो जाए और विश्व बंधुत्व की भावना इनके अंदर आ जाए, तो विश्व विनाश से, जो विनाश हो रहा है, उससे बच सकता है। आध्यात्मिकता तो कहती है मन जीते जगत जीत। वे लोग तन जीते जगत जीत का ही अनुसरण कर रहे हैं। यदि वे लोग भी विश्व पर जीत पाने की बजाय स्वयं पर जीत पाने का प्रयत्न करें और लोगों के दिलों में, हाँ, लोगों के जो है दिलों को जीत कर विश्व विजेता बनने की कोशिश करें, तो विश्व में जो है तनाव भी समाप्त होगा और विश्व विनाश जो हो रहा है विनाश से भी बच जाएगा। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ। और आइए सुनते हैं तब तक के लिए इस गीत को।

नमस्कार दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हैं। आज हम का हमारे विषय है तनाव रहित जीवन, योग और तनाव। एक होता है योग और तनाव। तनाव अर्थात तन प्लस आओ, तनाव। तन में आना ही तनाव होता है। आज की मानव की जो सुख शांति आनंद का आधार भौतिक प्राप्तियां ही है, इन प्राप्तियों के होते हुए भी आत्मा की जो संतुष्टता न होने के कारण आत्मा में अभाव का अभाव सा महसूस होता है और कुछ और चाहिए ऐसी महसूस होती रहती है। जब योग के द्वारा हमें आध्यात्मिक प्राप्ति होती है तो वह जो है अभाव समाप्त हो जाता है। फिर हमें सांसारिक पदार्थ जो है तुच्छ नजर आने लगते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा को ज्ञान मिलने के बाद हीरे भी पत्थर लगने लगे। योगाभ्यास करते योगा जो अभ्यास था वो करते करते हम क्या करते हैं, आत्म स्वरूप स्थिति को पाते जाते हैं और ईश्वरीय आनंद से भरपूर हो जाते हैं। फिर सांसारिक इच्छाएं जो होती है तमन्नाएं समाप्त हो जाती है। हमारा जो जीवन है आध्यात्मिक जीवन बन जाता है। ऐसी अवस्था में तनाव का तो कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता। अतः हमें सदा तनाव मुक्त रहकर हर बात को साक्षी दृष्टा स्थिति में रहकर सुख शांति से जीवन बिताना चाहिए। नहीं तो यह जो अनमोल मानव जीवन, इसमें भी संगम योग का ब्राह्मण जीवन व्यर्थ नहीं चला जाएगा। मन के विचारों को लेकर शोध होना चाहिए। कहा जाता है कि मनुष्य अपने विचारों का उत्पाद है, अर्थात हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि आज हम जो भी कुछ हैं अपने विचारों की देन है। अतः अपने विचारों को श्रेष्ठ बनाना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। अभी का जो समय चल रहा है, वर्तमान समय में हम देखते हैं कि मन की जो समस्याएं बहुत बढ़ती जा रही है। मानसिक रूप से लोग जो है अव्यवस्थित है, जिसके कारण कई शारीरिक और मानसिक रोग भी लग जाते हैं। राजयोग जो होता है, एक राजयोग की एक विधि होती है, मन को व्यवस्थित करने में हमारी बहुत मदद करता है। राजयोग के अभ्यास से हम जो है अंतर्मुखी बनते हैं। योग का होना हमारे जीवन में बहुत जरूरी हो जाता है। अंतर्मुखी का अर्थ है अपनी भीतर की और अंदर की जो भी कमी कमजोरी है, अपनी भीतर की ओर मुड़ना और अपने अंदर हो रही जो एक्टिविटी है उसकी जांच करना। मन बुद्धि संस्कारों में क्या चल रहा है उसके रूप को समझना, उसके ऊपर नजर रखना। राजयोग के द्वारा हम यह जान पाते हैं कि हम हमारे जीवन में हमारी जो भी समस्याएं हैं, हमारे विचार पॉजिटिव होते हैं तो बहुत ही धीमी गति से व्यवस्थित तरीके से चलते हैं। लेकिन जब विचार निगेटिव होते हैं तो बहुत तीव्र गति से अव्यवस्थित तरीके से चलते हैं। तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, गाते रहिए और कुछ गुनगुनाते भी रहिए। नमस्कार, ओम शांति।

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com.
1: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
2: सपोज आपने मुझे अभी आकर कहा कि आपका शरीर कमजोर है, एक आपकी बात को इग्नोर कर दो, ठीक है। सेकंड, मैं कहूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती उस बारे में, है कमजोर तो है, आई कांट हेल्प, खाना ऐसा है, आजकल पानी ऐसा है, मौसम ऐसा है, तो ये कमजोर है। थर्ड ऑप्शन इज, ठीक है, आई स्टार्ट वर्किंग ऑन इट टुडे, एंड अगर मैं आज भी उस पर काम करना शुरू कर दूं, चाहे मैंने 50 साल कोई काम नहीं किया उसके ऊपर एंड वो कमजोर हो चुका है, बिल्कुल कमजोर हो गया, लेकिन आज भी अगर उस पर काम करना शुरू कर दिया, आई एम मूविंग फ्रॉम डिजीज टू हेल्थ। आज अगर काम करना नहीं शुरू किया उस पर, देन इट्स डिक्लाइनिंग फर्दर फर्दर फर्दर। तो आज डिप्रेशन नहीं होगा ये बात सुन के, लेकिन आज अगर ध्यान नहीं रखा और कल अगर कोई बड़ी बात आ गई तो ताकत नहीं होगी उसको फेस करने में, तब डिप्रेशन होने का चांस होता है। आज इस बात को सुनने से नहीं होना चाहिए, आज एक रियलाइजेशन होनी चाहिए।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: आप सबका स्वागत। सेल्फ मैनेजमेंट की इस पूरी श्रृंखला में खुद को मैनेज करते हुए जब खुद को एक नए अंदाज से देखा तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी सामने आई, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जब देखा तो सबसे पहले अपने प्रति थी। और साथ ही हम बात कर चुके हैं रिलेशनशिप्स की, अब आगे बढ़ते हैं और रोल्स के बारे में जानते हैं कि कितने तरह के रोल्स हम हर रोज निभा रहे होते हैं और कैसे उनको मैनेज करना है। हमसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं प्रमा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। अगर पीछे मुड़कर देखते हैं तो रिलेशनशिप्स भी समझ में आए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब समझ में आई, और सेल्फ के साथ रिश्ता कैसे जोड़ना है, खुद के प्रति जो जिम्मेवारी है वो। अब रोल की बारी आती है, तो क्या मैं अपने रोल्स को देखूंगा, किस तरह से मैं रोल्स को आगे मैनेज कर सकता हूँ।
1: सेल्फ मैनेजमेंट मीन्स कि एक अवेयरनेस के साथ अब जीवन जीना शुरू करें कि ये हर दिन जो बीत रहा है, हर दिन में जो हर पल बीत रहा है, इट इज लाइक अ सीन ऑफ द ड्रामा। एक सीन, नेक्स्ट सीन, नेक्स्ट सीन, सीन्स आफ्टर सीन्स आफ्टर सीन्स इज अ सीक्वेंस ऑफ ऑल द टाइम पुट टुगेदर इन द होल डे। एंड हर सीन में व्हाट एम आई डूइंग? I'm just playing a role because हमें समझ में आ गया कि I am the actor and this is my role. लेकिन am I conscious while playing the role?
0: I think never. और यहाँ से मुझे एक और बात समझ में आ रही कि जैसे ही मेरी सिचुएशन चेंज होती है मेरा रोल भी तो चेंज हो जाता है। कितनी बार, मतलब मैं पहले अगर हस्बैंड था, उसके बाद जब मैं फादर बना, सडनली देयर इज अ मेजर रोल चेंज, यू नो। और अगर मैं पहले बैचलर था और फिर मेरी शादी हुई तो मेरे और ते सबके साथ रिश्ते जो है वो चीजें, उसकी कॉन्शियसनेस तो कभी भी नहीं रही।
1: या सो वन इज ऑल दीज रोल्स दैट आई प्ले। लेकिन ये जो आपने नाम भी लिए कि मैं हस्बैंड था, मैं फादर हूँ, मैं कल को ग्रैंडफादर भी बनूंगा, ऑल दीज रोल्स दैट आई प्ले, इसमें भी आई प्ले रोल्स। यू सी, रोल मीन्स कि हर सीन जो आए उस सीन में मैंने कैसे इनेक्ट किया। दैट इज माई रोल इन दैट पर्टिकुलर सीन। अब एक है अगर बिना सेल्फ अवेयरनेस के चल रहे हैं, कोई कॉन्शियसनेस नहीं है कि आई एम द एक्टर, तो हर सीन जो आती जाती है एंड एवरी रोल दैट आई प्ले, आई एम नॉट अवेयर कि मैं अपना रोल क्रिएट कर रहा हूँ। आई फील कि मेरा रोल ये क्रिएट हो रहा है आपकी वजह से, सिचुएशन की वजह से। क्यों? इट कम्स बैक टू द बिगिनिंग ऑफ आर सीरीज कि जब हम कह रहे थे कि माई रिस्पॉन्सेस आर बेस्ड ऑन द सिचुएशन, या मेरा जो रिस्पॉन्स है वो परिस्थिति या लोगों पर बेस्ड है। इसका मतलब मैं जो अभी इनैक्ट कर रही हूँ वो किस पर बेस्ड है,
0: क्योंकि जैसे सिचुएशन आती गई मैं उस पर।
1: या सो इट वॉज एज इफ सिचुएशन एंड लोग आर रिस्पॉन्सिबल जिसके कारण आई एम प्लेइंग दिस रोल लाइक दिस।
0: ओके, दे आर इंस्टिगेटिंग मी टू बिहेव लाइक दिस और एक्ट लाइक दिस,
1: राइट? तो फिर हम समझते थे कि मेरा रोल ऑलरेडी फिक्स्ड है। हम ये कहते थे कि डेस्टिनी ऑलरेडी फिक्स्ड है, भाग्य मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, मैं तो सिर्फ उसको प्ले कर रहा हूँ। नाउ इसमें फिर कोई क्रिएटिविटी नहीं चाहिए कि मेरा रोल ऑलरेडी फिक्स्ड है और ये तो मैं सिर्फ करता जा रहा हूँ, ये मेरे हाथ में नहीं है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग।
0: दिस इज एक्सपेक्टेड ऑफ मी एज अ ग्रैंडफादर, एज अ फादर, दिस इज एक्सपेक्टेड ऑफ मी
1: एंड दिस इज फिक्स्ड एंड आई एम प्लेइंग इट लाइक दिस बिकॉज ऑफ यू। आई एम इनएक्टिंग दिस पर्टिकुलर सीन लाइक दिस बिकॉज ऑफ यू। जो भी मेरा अभी रिस्पॉन्स है, जो मेरा व्यवहार है, जो मेरा बात करने का तरीका है, इट इज बिकॉज ऑफ यू। तो इसलिए मेरे पास बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी नहीं थी कि अपने रोल को कैसे प्ले करना है, क्योंकि हमने सोचा डायरेक्टर कोई और है, क्रिएटर कोई और है, मैं तो सिर्फ एक एक्टर हूँ और मैं वो जो किसी ने फिक्स किया हुआ मेरा रोल, मैं उसको प्ले कर रहा हूँ। लेकिन जैसे जैसे हमें ये अवेयरनेस आती गई कि एवरी रिस्पॉन्स स्टार्ट्स विद माय थॉट, सिचुएशन आई, मैंने थॉट क्रिएट किया, तो जब ये फर्स्ट फंडामेंटल रिस्पॉन्स समझ में आया कि मेरी थॉट मेरी चॉइस है, इसका मतलब मेरा रोल मुझे कैसे प्ले करना है वो
0: मेरी अपनी चॉइस है,
1: मेरी चॉइस है। सो बेसिकली सेम लाइफ, सेम रिलेशनशिप, सेम सो कॉल्ड रोल्स, बट नाउ आई विल क्रिएट द रोल
0: The way I want to do it. But we always say the director is one.
1: Who's the director?
0: He's directing, you know.
1: Now again, we understood what's God's role. हमने पिछले एपिसोड में देखा कि परमात्मा का क्या रोल है हमारे जीवन में। जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं आज व्यवहार कर रहा हूँ, क्या उसको परमात्मा कंट्रोल कर रहा
0: है? नहीं, that is not there.
1: Yeah, that is not there. So I cannot say he's creating the role for me. He can give me the wisdom एंड द पावर, लेकिन

0: क्रिएट्स माई रोल,
1: आई
0: क्रिएट माई रोल. तो अगर मैं एक दिन भी इस अवेयरनेस के साथ चलूं कि सीन आफ्टर सीन आई नॉट ओनली प्ले द रोल बट आई क्रिएट द रोल,
1: आई क्रिएट द नेक्स्ट सिचुएशन, आई क्रिएट एंड आई स्टार्ट एक्टिंग इट दैट वे. आई कैन एक्ट दिस वे, आई कैन एक्ट दिस वे.
0: सी ना, फिक्स्ड नहीं है, फिक्स्ड नहीं है. हर सिचुएशन में, कोई भी परिस्थिति में, आज आपसे किसी ने बुरा भला कह दिया, वो एक सीन है. You can act this way, you can act this way, you can. There will be at least five different ways जिसमें आप act कर सकते हैं. इसका मतलब as an actor आपका role fixed नहीं है, आपके पास choice है कि आप किस तरह से उसको enact करना चाहते हैं. आपकी script already लिखी हुई नहीं है. This is a very big thing. ये बहुत बड़ी realization हो जाती है. और उससे क्या होगा अगर हम उस अवेयरनेस से चलेंगे?
1: Oh, it's so beautiful. Only the situation comes. See, अगर अब थिएटर में भी है, अगर मैं प्ले कर रही हूँ और मेरे पास प्री जो रिटन डायलॉग्स नहीं है, इट्स ओनली द सिचुएशन, देन हाउ आई हैंडल इट, इट्स माय चॉइस.
0: तो कितना क्रिएटिव हो जाएगा ये सर.
1: इट्स अमेजिंग.
0: फिक्स्ड नहीं है कि आपने लाइंस पूरी याद की हुई है, आपको सिर्फ बोलना है. नहीं, उसमें कोई अवेयरनेस नहीं चाहिए. वो तो एक ऑटोमेटिक जो याद किया हुआ बोल रहे हैं. लेकिन एक है सिचुएशन आई, आपने परिस्थिति को परसीव किया, अपनी क्रिएटिविटी को यूज किया कि इस सिचुएशन में मुझे कैसा रोल प्ले करना है, और उसको प्ले किया. अब वही सिचुएशन में डिफरेंट एक्टर्स विल प्ले डिफरेंटली,
1: बट आई कैन देन टेक द प्ले इनटू अ डिफरेंट डायरेक्शन.
0: एब्सोल्युटली. एंड दैट इज व्हाई वी सेड यू क्रिएट योर डेस्टिनी. व्हेन वी सेइंग आप अपना भाग्य, अपनी डेस्टिनी खुद क्रिएट करते हैं, दैट मींस यू कैन टेक द प्ले
1: इनटू अ डिफरेंट डायरेक्शन, इनटू अ डिफरेंट, ओह कंप्लीटली
0: कंप्लीटली डिफरेंट, बेस्ड ऑन हर सीन में आप क्या क्रिएटिविटी यूज करेंगे. अगर कोई अपनी क्रिएटिविटी को नहीं यूज कर रहा है, तो दैट पर्सन इज वर्किंग इन अ वेरी ऑटोमेटेड मोड. वो आया, मैंने ऐसे बोल दिया, वो सीन आई, मैंने ऐसे कर दिया, उसने गुस्सा किया, मैंने कर दिया, उसने इंसल्ट की, मुझे बुरा फील हुआ. क्रिएटिविटी नहीं है, ऑटोमेटेड है. तो उसमें फिर जीवन कैसे हो जाएगी? इट बिकम्स बोरिंग. इट इज ऑटोमेटिक, अपने आप ही चल रहा है. मुझे कुछ बहुत ज्यादा उस पर सोचने की जरूरत नहीं है. लेकिन जिस दिन मैंने जीवन को इस तरह से देखना शुरू किया कि हर सीन में मेरा क्या रोल होने वाला है, मुझे कैसे रिएक्ट करना है, दैट्स टोटली माय चॉइस, माय होल वे ऑफ लुकिंग एट इट इज गोइंग टू चेंज.
1: इनफैक्ट इससे पता क्या, एक बहुत बड़ी बात और क्या हो सकती है कि हमारा जो माइंड है, जो अभी ऑलरेडी जो जो चीजें मेरे साथ हो चुकी हैं, उन्हीं पे अपना टाइम वेस्ट करता रहता है कि मेरे साथ ऐसा हो गया, उसने ऐसा किया, उसकी बजाय विल बी नाउ वर्किंग कि मैं कैसे सिचुएशन
0: इन द प्रेजेंट.
1: यस.
0: इतनी सारी जो आज हम मैनेजमेंट वर्कशॉप सुनते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, व्हाट इज इट अबाउट? प्रेजेंट में कैसे जीतें? पास्ट और फ्यूचर को फिनिश करें. लेकिन प्रेजेंट में क्यों नहीं जी पा रहे? क्योंकि प्रेजेंट में क्रिएटिविटी की जरूरत ही नहीं है. ये ऑटोमेटिक मोड में चल रहा है. ये ऑटोमेटिक मोड में चल रहा है. आप देखो, जब एक लेट्स से कि हम एक रास्ते पर जाते हैं घर से ऑफिस, अब घर से ऑफिस रोज जाते हैं, घर से ऑफिस रोज जाते हैं, यू नो, आफ्टर सम टाइम आप पूरा रास्ता कवर कर सकते हैं बिना कोई अवेयरनेस के. बिना मतलब आप बिल्कुल कुछ कुछ कुछ और सोचते सोचते आपको पता ही नहीं चलेगा आप एक घंटे में ऑफिस पहुंच गए, राइट? लेकिन एक नए रास्ते पर जाना है तो आप कितनी अवेयरनेस से चलते हैं. अच्छा, अब यहाँ जाना है या यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, फिर यहाँ टर्न करना है. आप रास्ते में चीजों को देखेंगे. लेकिन जहां आप उसी पैटर्न पर रोज जा रहे हैं, doesn't require any awareness. That means आपने वो पूरा एक घंटा जर्नी की, लेकिन you were not present. आप किसी और चीज के बारे में सोच रहे थे. इसी तरह आप जीवन की पूरी यात्रा में जर्नी कर रहे हैं. आप रास्तों पर जा रहे हैं, आप सीन्स में आ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन आई एम नॉट देयर. आई एम नॉट देयर बिकॉज आई एम नॉट नीडेड देयर, बिकॉज मैं अपना रिस्पॉन्स चूज ही नहीं कर रही. फिक्स्ड किए हुए रिस्पॉन्सेस. कोई गुस्सा करेगा तो मुझे गुस्सा करना ही है, तो उसमें क्रिएटिविटी की क्या जरूरत है अभी? तो विदाउट अवेयरनेस आई वॉज गोइंग थ्रू द जर्नी ऑफ लाइफ, कुछ और सोचते सोचते. तो इधर द पास्ट और द फ्यूचर, एंड उसमें प्रेजेंट वाला मिनट कब निकल गया पता ही नहीं चला. अब जैसे ये अटेंशन आ जाएगी कि हर मिनट एक नया सीन, नया सीन, नया रोल, एंड माय चॉइस हाउ टू प्ले. फिर टाइम है पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचने.
1: नो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग देन यू नो लाइक अवेयरनेस में फिर हम एक्टिव रहेंगे. हम एक्चुअली यू नो ऑल हमारी सेंसेस जो है वो तैयार रहेंगे कि हाउ कैन वी इनोवेटिवली डू दैट.
0: एब्सोल्युटली. तो फिर जो बात हो रही है बार बार हाउ टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट. यू नो द क्वेश्चन इज कि हरेक को ये पता है कि पास्ट और फ्यूचर इज वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी. लेकिन हाउ टू डू इट. क्यों हमारा मन बार बार पास्ट में जा रहा है? क्योंकि उसके पास प्रेजेंट में करने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग है नहीं. अनलेस आई हैव समथिंग इंटरेस्टिंग टू डू. ऑफिस में देखो काम हम करते हैं. कई लोगों का काम होता है जो बहुत मोनोटोनस होता है. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत मोनोटोनस है. थोड़े समय के बाद करने के बाद आप वो काम करते जा सकते हैं विदाउट बीइंग देयर. आपका मन घर बैठ सकता है और आप अपना सारा यहाँ काम खत्म कर सकते हैं. लेकिन अगर आपका कोई काम है विच रिक्वायर्स अ कंटिन्यूस अवेयरनेस डिसीशन एक्यूरेसी, फिर आपके पास टाइम नहीं है यहाँ और वहां की बातें सोचने के लिए, क्योंकि मन फुल कॉन्सेंट्रेशन से उस मोमेंट के ऊपर है. नाउ लेट्स जस्ट लुक एट आवर लाइफ लाइक दैट कि एवरी मिनट अवेयरनेस हाउ टू चूज द रोल. जीवन कैसे हो जाएगी. एंड मेन चीज उसमें जो आएगी इट विल बिकम फन.
1: इट विल बी एक्साइटिंग.
0: इट्स गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फन.
1: जो एक वो थकान से हम भर चुके होते हैं बिकॉज़ देयर इज नथिंग एल्स टू डू. देयर इज नथिंग.
0: अगर आपको मोनोटोनस काम करना हो तो उसके एंड ऑफ द डे कैसे फील होता है? लेकिन अगर क्रिएटिव काम करना हो यू एंजॉय. आप कितना भी काम कर सकते हैं सारा दिन एंड येट यू से मोर मोर.
1: आपकी ऊर्जा बची रहती है
0: क्योंकि क्रिएटिविटी इज द नेचर ऑफ द सोल. हर आत्मा का जो हमने देखा था पर्पज ऑफ लाइफ है इज टू एक्सप्रेस एंड एक्सपीरियंस. लेकिन वो कब होगा? व्हेन आई एम क्रिएटिव. कि हर रोल मुझे कैसे प्ले करना है. तो अपने रोल्स को देखें. आज क्या हुआ? हमने कहीं ना कहीं फिक्स कर दिया. हमने ये सोचा आई हैव टू प्ले द रोल. टुमोरो पूरा दिन बिताएं आई हैव टू क्रिएट द रोल नॉट प्ले द रोल. प्ले द रोल ऐसे लगता है किसी और ने लिखा हुआ है. आई हैव टू प्ले. अगर हम इस कॉन्शियसनेस से चलते हैं कि मैं क्रिएटिव नहीं हूँ, मुझे तो सिर्फ रोल प्ले करना है, तो मेरी दो चीजें बहुत लिमिट हो जाती हैं एंड वो है फ्लेक्सिबिलिटी एंड क्रिएटिविटी. मेरे पास कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है. सिचुएशन चाहे कैसी भी हो आई एम गोइंग टू रिस्पॉन्ड ओनली इन दैट वेरी फिक्स्ड रिजिड वे. एंड क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं है, मेरी अंदर की जो अनुभूति है, जो एक्सपीरियंस है, इट्स गोइंग टू बी वेरी बिकॉज स्टैग्नेंट हो जाएंगे. हम वही चीज यू नो सेम चीज रोज प्ले कर रहे हैं. तो आप लाइफ को जो इंजॉय करना है, इसीलिए आज किसी से बोलो कैसा है, चल रहे हैं, हो रहा है, इंजॉयमेंट वाले फीलिंग, एक्साइटमेंट वाले फीलिंग. नो, बिकॉज उनके लिए हर दिन वो सेम बन चुका है. सेम उसी तरह उठना, उसी तरह बच्चों को उठाना, उसी तरह ऑफिस जाना, वापस आना. मोर और लेस एवरी डे इज बिकमिंग लाइक सिमिलर. फिर हम कहते हैं कुछ चेंज चाहिए. यू नो दैट इज व्हाई देयर इज दिस डीप डिजायर के कुछ चेंज चाहिए. चलो हॉलीडे पे जाके.
1: हाँ, मैं वही कहने लगी थी कि स्ट्रेट हॉलीडे पे ले जाते हैं, वहां पे भी बैठे रहते हैं या स्विमिंग पे चले जाते हैं. जनरली अगर हम देखें
0: तो चेंज की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि यहाँ कोई भी चीज अगर हम बार बार करेंगे तो उसके बाद उसके अंदर कुछ एक्साइटमेंट नहीं रहता. सो बी लुकिंग फॉर अ चेंज. लेकिन इफ वी लुक फॉर दैट एक्साइटमेंट एवरी डे, यू रियली वुडंट नीड अ सेपरेट हॉलीडे बिकॉज एवरी डे वुड बी एक्साइटिंग. के हर रोज कुछ नया करना है. हम नया फिर से सिचुएशंस में ढूंढ रहे हैं. हम नया कहाँ ढूंढ रहे हैं? कि कहीं सिचुएशन चेंज हो तो कुछ नया हो. अब सिचुएशन हर टाइम नहीं चेंज हो सकती. आप कितनी बार ऑफिस से हॉलीडे पर जाएंगे? फाइनली आपको 365 डेज में से 11 महीने या 11.5 महीने तो ऑफिस में ही काम करना ना. आप साल में 15-20 दिन ही हॉलीडे जा सकते हैं. डज दैट मीन कि नया विल बी जस्ट फॉर 15 डेज एंड द रेस्ट 11.5 मंथ्स द सेम बोरिंग वे? नो. व्हाई नॉट मेक एवरी डे एक्साइटिंग? एंड वो तब होगा कि सिचुएशन नई हो वो नहीं, उसी सिचुएशन में मैं कोई नया रिस्पॉन्स क्रिएट करूं.
1: मैं नहीं हो जाऊं.
0: हाँ, क्रिएटिविटी हियर, नॉट नेसेसरली क्रिएटिविटी इन इवेंट, क्रिएटिविटी इन सिचुएशन, क्रिएटिविटी इन रिस्पॉन्सेस. इज दैट पॉसिबल? अ क्रिएटिविटी इन अ रिस्पॉन्स. कि वो ही सिचुएशन, वो ही बॉस, वो ही पेरेंट, वो ही हस्बैंड, but I will look at a different way of responding.
1: And I suddenly become very nice, huh?
0: Whatever, you can choose
1: that. Or otherwise, nice, if I suddenly become very bad.
0: क्रिएटिविटी बट विच विल गिव यू अ फीलिंग ऑफ सैटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट. अभी क्या हुआ, हम बहुत सारे रोल्स प्ले करते हैं लेकिन मेजरली हमने दो रोल्स में अपने आप को फिक्स किया हुआ है. वन इज एट वर्क, वन इज एट होम. ये दो रोल्स हैं जिसमें हम एकदम से अपने आप को टाइट पकड़ लेते हैं लेकिन हम उसमें क्रिएटिविटी नहीं ढूंढते.

0: और हम बहुत सीरियसली उन रोल्स को प्ले करना शुरू कर देते हैं. दिस इज माय रोल, यू नो, एंड इस रोल को मैंने इस तरह से प्ले करना है. और जहां उस रोल में हम बहुत सीरियस हो जाते हैं, वो मजा खत्म हो जाता है. दैट फन ऑफ प्लेइंग द गेम इज ओवर. जैसे जो आपने कहा पोजिशन, यू नो, आई एम अ मदर या आई एम अ मैनेजर, ये फिक्स्ड हो गई है. तो पोजिशन को ही रोल समझ लिया. अब क्या होगा, एक ऑफिस का लीडर है या मैनेजर है या चेयरमैन है, जो भी, इफ ही सेज आई एम द मैनेजर, दैट्स इट, देन वो अपने रोल को हर रोज किस तरह से प्ले करेंगे,
1: मैनेजर के रूप में या चेयरमैन के रूप में.
0: परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, एम्प्लॉइज कितना भी उतार चढ़ाव से गुजर रहे हो, मैं तो बॉस हूँ. तो अगर मैंने अपने आप को सिर्फ उसी पोजीशन में
1: क्रिएट दैट इमेज, यू नो, आई हैव टू कंटिन्यू टू मेंटेन दैट इमेज ऑफ बीइंग अ बॉस.
0: तो मैंने अपनी पोजीशन को सिर्फ अपना रोल बना लिया कि दिस इज माय रोल, आई हैव टू बी द बॉस. सामने आपके एम्प्लॉय बैठा है, वो उदास है, वो परेशान है किसी बात से, लेकिन मैं तो बॉस हूँ. आई कैन नॉट सडनली बिकम वेरी फ्रेंडली विद हिम और समथिंग, बिकॉज हु एम आई? आई एम द बॉस. नाउ व्हाट इफ टुमारो द बॉस गोज टू द ऑफिस विद दिस अवेयरनेस कि यस, ये मेरी पोजिशन है, लेकिन ये मेरा रोल नहीं है. रोल कुड बी डिफरेंट इन डिफरेंट सिचुएशंस. मैं कभी बॉस का रोल प्ले करूँ, लेकिन पोजिशन बॉस की है. कभी मैं एक मोटिवेटर का रोल प्ले करूँ, कभी मैं काउंसलर का रोल प्ले करूँ. कोई दर्द में है, कोई कन्फ्यूजन में है, कोई दो लोगों की आपस में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गई है, कभी मैं एक मीडिएटर का रोल प्ले कर दूँ दोनों के बीच में, कभी मैं इवन एक पेरेंट का रोल प्ले कर सकती हूँ ऑफिस के अंदर. इज दैट पॉसिबल? बट दैट विल ओनली हैपन व्हेन आई लुक एट द रोल विद क्रिएटिविटी. लेकिन अगर मैंने सोचा
1: ऑन द अदर हैंड आई हैव टू बी वेरी वेरी यू नो लाइक, क्योंकि मैं बहुत फियरफुल होता हूँ, मुझे ये डर होता है कि एक बार मैंने गिव इन किया तो वो दिल स्टार्ट टेकिंग मी फॉर ग्रांटेड, यू नो, मैं उनके साथ उस लेवल पर बात अगर करने लग गया तो फिर तो यू नो.
0: सो दैट इज द फियर, बट वी आर नॉट रेडी टू एक्सपेरिमेंट. जस्ट ट्राई एंड इमेजिन कि अगर एक बॉस सिर्फ एक पोजिशन को नहीं स्टिक करके इस तरह से अलग अलग रोल्स प्ले करे, तो वर्क एनवायरमेंट कैसा हो जाएगा?
1: वेरी स्मूथ एक्चुअली,
0: वेरी लाइट, वेरी लाइट, एंड जो आपस की सबकी बॉन्डिंग होगी बहुत कंफर्टेबल हो जाएगी. सेम विद अ पेरेंट एंड अ चाइल्ड. मैं फादर हूँ, मैं मदर हूँ सिर्फ नहीं, मैं एक फ्रेंड भी हो सकता हूँ. अगेन अ पेरेंट कैन बी अ काउंसलर. हमें स्कूल में काउंसलर की क्यों जरूरत है? हमें स्कूल में, हाउ कैन वी नीड अ काउंसलर इन स्कूल? एक पेरेंट एक काउंसलर हो सकता है, एक पेरेंट एक फ्रेंड हो सकता है, पेरेंट एक मोटिवेटर हो सकता है. लेकिन अगर वो सिर्फ पेरेंट है, देन बहुत रिजिडिटी आ जाएगी.
1: इनफैक्ट पेरेंट एक टीचर हो सकता है.
0: पेरेंट एक टीचर हो सकता है.
1: अलॉट, यू नो, कि बहुत सारे पेरेंट्स ये कहते हैं कि बच्चा हमसे नहीं पढ़ता है इसीलिए मुझे एक ट्यूटर चाहिए, कि मुझसे तो पढ़ेगा ही नहीं, मेरी तो बात ही नहीं सुनता वो. मतलब इट्स अमेजिंग.
0: एंड टीचर नॉट नेसेसरी ओनली इन सब्जेक्ट्स, बट टीचर इन सो मेनी थिंग्स. आजकल हम पेरेंट्स से बात करते हैं कि बच्चे, यू नो, इमोशनली थोड़े से वीक हो रहे हैं, वी नीड टू मेक देम स्ट्रॉन्गर. दे विल से दैट इज द रोल ऑफ द टीचर, दैट्स द रोल ऑफ द स्कूल. व्हाई? व्हाई इज दैट नॉट माय रोल? हमने सोचा हमने तो उनको इतने अच्छे स्कूल में भेज दिया, बाकी सारा काम वहां होना चाहिए. तो कल अपनी पोजिशन से हटकर उसको एक रोल की तरह देखें. पोजीशन से अटैच हो जाते हैं कि मैं बॉस हूं और फिर मुझे बॉस ही बनकर रहना है. तो हम उससे हम भी सफोकेटेड हो जाते हैं. इफ यू सी सर्टेन पीपल एट अ वेरी सीनियर पोजीशन, वो हंसेंगे भी नहीं खुल के. दे विल सिट सो अथॉरिटेटिवली क्योंकि दे वॉन्ट टू रिमेन इन दैट पोजिशन, क्योंकि उन्होंने सोचा यही पोजिशन है और यही बना के रखना.
1: अच्छा, ये पर कई लेवल्स पर सिखाया भी जाता है, ट्रेनिंग का भी तो पार्ट है. समवेयर वी आर सो मच स्टक विद द ट्रेनिंग पार्ट कि हमें इसको मेंटेन करके रखना है, तो उसे अनडू करने की कितनी जरूरत है?
0: एवरीवन हैज टू आस्क देमसेल्फ्स, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग राइट फ्रॉम चाइल्डहुड ज्यादा इसी प्रकार की रही है, पोजीशन ओरिएंटेड. आपको ये बनना है, आपको ये बनना है. क्रिएटिविटी कभी उसका बहुत ज्यादा हिस्सा रही नहीं है. और इसीलिए हमने कहा कि हमें लोगों ने सिखाया क्या पढ़ना है, क्या बोलना है, कैसे चलना है, लेकिन क्या सोचना है वो कभी टॉपिक में था ही नहीं. आर्ट ऑफ थिंकिंग वो नहीं था. तो जब आर्ट ऑफ थिंकिंग नहीं था तो आर्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग नहीं होगा. नहीं होगा. वो एक सेट पैटर्न था कि आप मदर हैं तो ऐसी मदर होनी चाहिए, फादर हैं तो ऐसे. बट नो, इट्स द सेम थिंग, आई कैन जस्ट प्ले इट इन डिफरेंट वेज. एंड जितना हम उसको क्रिएटिवली प्ले करेंगे, हम उसको इंजॉय करेंगे, उस रिलेशनशिप को भी इंजॉय करेंगे. क्योंकि आज आप देखो, एक पेरेंट और चाइल्ड, एक चाइल्ड अपने पेरेंट के अंदर कन्फाइड क्यों नहीं कर पा रहा है? अगर एक बच्चे की कोई भी इश्यू है, वो बाहर वालों को अगर बता सकता है, पेरेंट को क्यों नहीं बता सकता है? क्योंकि वो पेरेंट सिर्फ पेरेंट है. वो पेरेंट अगर फ्रेंड भी बन जाए, तो एक बच्चे को बाहर किसी फ्रेंड को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
1: और पेरेंट को भी किसी फ्रेंड की जरूरत नहीं पड़ेगी. यू नो व्हाट, समवेयर पेरेंट्स घर जब आ जाते हैं, तब भी वो अपने दोस्तों से या मित्रों से उतने फोन पे बात कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि बच्चा मेरा दोस्त बन सकता है. यू नो, यू कैन एक्चुअली, बच्चा बहुत अच्छा दोस्त बन सकता है आपका. आई हैव एक्सपीरियंस इट कि वो आपको इतनी अच्छी सलाह दे सकता है जो कहीं बाहर का कोई मित्र नहीं दे सकता.
0: नाउ दिस इज क्रिएटिविटी. इसलिए इसको एक्सपेरिमेंट करना है. नॉट नेसेसरी कि पहले हमने जो पढ़ा है वो गलत है, या जो हम यहाँ अभी शेयर कर रहे हैं वो नॉट नेसेसरी. उसको करके देखना है कि हाउ डू यू फील. लेकिन वो तभी होगा व्हेन वी आर वर्किंग विद द राइट कॉन्शियसनेस कि आई एम एन एक्टर, दिस इज जस्ट अ पोजिशन, बट एक्चुअली इट्स अ रोल एंड आई एम प्लेइंग द रोल, एंड आई एम नॉट प्लेइंग इट बट आई एम क्रिएटिंग द रोल. हर सीन में सिर्फ ये याद रखना है, How do I want to create my role in this scene? तो आपको कैसे भी सीन मिले, कहीं बहुत उतार चढ़ाव की भी सीन मिले, तो यू स्टिल हैव अ चॉइस. इट्स अगेन गोइंग बैक टू दैट फंडामेंटल लाइन, आई हैव अ चॉइस. हर सिचुएशन में आई विल चूज हाउ टू प्ले द रोल. सो फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू ट्राई, पोजिशन कॉन्शियसनेस नहीं, एक्टर कॉन्शियसनेस, कि मैं एक्टर हूँ, आई एम प्लेइंग द रोल. दूसरी रीजन जो हम बहुत सीरियस हो जाते हैं ये करते करते, इज बिकॉज हम रोल से ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं
1: और रिस्पॉन्सिबिलिटी मान लेते हैं अपने, मेरा कर्तव्य है ये.
0: लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी ज्यादा आइडेंटिटी बन जाती है वो,
1: यही मैं हूँ,
0: यही मैं हूँ. तो यही मैं हूँ, तो फिर फ्लेक्सिबिलिटी की मार्जिन नहीं आती, क्योंकि हमने देखा कि अपना परिचय न होने के कारण हम रोल से आइडेंटिफाई कर लेते हैं. और जैसे ही हम रोल से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो फिर हम हर सीन में उसको वैसे ही प्ले करेंगे, क्योंकि यही मैं हूं. तो फ्लेक्सिबिलिटी का क्वेश्चन ही नहीं होता. आई एम अ पेरेंट, इट्स नॉट आई एम अ सोल प्लेइंग द रोल ऑफ अ पेरेंट.
1: एक्चुअली डजंट कम, यस, यू नो, उस वक्त आपको वो छोड़ देता है थॉट कि आई एम अ सोल, यू नो.
0: व्हेन आई अंडरस्टैंड दैट आई एम द सोल प्लेइंग दिस रोल, तो एक डिटैचमेंट आ जाएगी फर्स्ट. एंड डिटैच्ड होके जो भी रोल प्ले करेंगे, वो रोल पहले से भी
1: अच्छा
0: ज्यादा होगा. जब रोल में फिक्स होकर प्ले करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी होती है. देखो, व्हेन आई आइडेंटिफाई माय सेल्फ विद द रोल, तो उस आइडेंटिटी को बचाने के लिए, जितने फियर्स है मेरे मन में, उस आइडेंटिटी को बचाने के लिए आई कैन बी अग्रेसिव, आई कैन बी डिफेंसिव. इफ लेट्स से माय आइडेंटिटी इज मैं बॉस हूँ, अब आप मेरे से जरा हंस के बात करो थोड़ा सा, तो मुझे डर लगने लगेगा कि वो जो मेरा बॉस का इमेज है, वो कहीं, यू नो, कहीं ये मुझे, जैसे आपने कहा, फॉर ग्रांटेड ना ले ले. तो फिर मैं तुरंत अग्रेसिव हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने सोचा आई हैव टू गिव यू द मैसेज, प्लीज रिमेम्बर, यस, प्लीज रिमेम्बर हु एम आई. आई एम द बॉस एंड यू बेटर टॉक टू मी जस्ट लाइक अ बॉस. सेम विद द पेरेंट एंड द चाइल्ड. पेरेंट इमिजिएटली वो सिग्नल कन्वे करेगा बच्चे को, यू प्लीज रिमेम्बर आई एम द पेरेंट. That doesn't mean कि हम rudeness आने दें या you know misbehavior आने दें, लेकिन कोई हल्कापन, एक you know lightness relationship के अंदर, that's a part of the, you enjoy that relationship. लेकिन जहां हर relationship को उतना tightness से पकड़ा कि ये how could he talk to me like this, how could he behave with me like this, because who am I? I am this. तो कहीं ना कहीं हमारा फिर जो बिहेवियर होता है वो अग्रेशन की तरफ या यू नो वो विड्रॉल की तरफ चला जाता है, जस्ट बिकॉज मैं इनसिक्योर हूँ अपनी वो आइडेंटिटी.
1: इनफैक्ट अगर हम देखें तो अगर क्रिएटिविटी है उस रिश्ते में, फन है, वी लुक फॉरवर्ड टू यू नो बीइंग इन दैट
0: रिलेशनशिप. यस, एब्सोल्युटली.
1: आप उनसे करनी नहीं काट रहे होते बिल्कुल.
0: तो जो हमने पहले डिस्कस किया रिलेशनशिप्स में कि आज हम कट रहे हैं एक दूसरे से, हम कटेंगे नहीं जब हमें ये लगेगा कि एवरी रिलेशनशिप इज अ चांस फॉर मी टू एक्सप्लोर न्यू एवेन्यूज ऑफ माय क्रिएटिविटी. इट विल बिकम अ लॉट ऑफ फन.
1: और जहां जहां थोड़ी मुश्किल भी है, वहां पर मतलब कहीं कुछ खटास या पहले से कुछ थोड़ा डिस्टेंस आया हुआ है, आई कैन ऑलवेज स्टार्ट डूइंग इट नाउ.
0: एब्सोल्युटली, क्योंकि अब आपके पास चॉइस है कि वो रिश्ते में बहुत खटास है, लेकिन आप अपने रेगुलर जो मेथड ऑफ एक्टिंग है, प्लेइंग द रोल, उस पे नहीं जाओ. मेक इट क्रिएटिव, क्रिएट अ ब्यूटिफुल न्यू थॉट उस आत्मा के प्रति. जस्ट गो एंड इनैक्ट इट द वे यू नेवर थॉट यू कुड हैव डन इट. अभी मैंने सोचा कि वो मेरे से ठीक से नहीं बात कर रहे तो मैं ठीक से क्यों बात करूं. फिक्स्ड वे ऑफ एक्टिंग द रोल. कल मैं सोचा कम ऑन फॉरगेट ऑल दिस,
1: कंसंट्रेट ऑन योर परफॉर्मेंस,
0: लेट मी गो एंड प्ले इट इन अ वे दैट इवन आई विल सरप्राइज माई सेल्फ. मैं आपको क्या सरप्राइज करूं, मैं तो खुद ही सरप्राइज हो जाऊं कि वो मैंने कैसे कर लिया ये. दैट इज क्रिएटिविटी.
1: एंड कंसंट्रेट ऑन योर परफॉर्मेंस,
0: ओनली माई परफॉर्मेंस. वैसे भी आपके परफॉर्मेंस पर मैं कुछ भी नहीं कर सकती. मैं सिर्फ कंप्लेन कर सकती हूँ या जजमेंटल हो सकती हूँ. बट इफ आई जस्ट फोकस ऑन माइंड, you see how much fun we are going to have in the whole day.
1: Oh, wonderful. Spirituality teaches you fun.
0: Yes. Spirituality is a lot of fun.
1: Fun, yes. That's what we are understanding. Thank you so much, Sister Shivani, aaj ki is puri baatcheet ke liye. Om Shanti.
0: Om Shanti.
1: Ab apne roles पर काम करना शुरू करें. आई थिंक इट विल बी रियल फन. और जो हमारे अंदर का एक्टर छुपा है अपनी परफॉर्मेंस को, जैसे कि सिस्टर शिवानी ने एंड में आई थिंक यू हैव गिवन द पंच लाइन कि अपनी ही परफॉर्मेंस से अपने आप को चकित कर दे, एक नए अंदाज से खुद हम एक्ट करना शुरू करें, तो वो और वो एक्टिंग जितनी नेचुरल होगी, जितनी हमारी अपनी होगी, उतना हम उसे एंजॉय करेंगे. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में हम हर बार की तरह आपसे यही कहेंगे, ये प्रोग्राम आपका अपना है, ये मंच आपके लिए है. कोई बात, कोई सवाल आपके मन में उठता है, आपका हम स्वागत करते हैं. आप हमें फोन पर या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर है 0999-344-555, 0999-344-666, 0987-366-555, 0999-744-555. हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@pkmail.org. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज इतना ही, लेकिन सेल्फ मैनेजमेंट का ये पूरा सिलसिला आगे भी चलता रहेगा. आप हमारे साथ जुड़े रहिए. आज आपसे विदा लेते हैं. ओम शांति.
2: ब्रह्मा कुमारीज के प्रत्येक सेवा केंद्र पर राजयोग मेडिटेशन निशुल्क सिखाया जाता है. ये कोर्स 7 दिन प्रतिदिन 1 घंटे का है. भारत में बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गांवों में हमारे 8,000 से अधिक सेवा केंद्र हैं. राजयोग सीखने के लिए और अपने नजदीकी सेवा केंद्र का पता जानने के लिए संपर्क करें

शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ट्रैक्स बने होते हैं एंड पानी उसमें बह रहा है, ठीक है, गार्डन है, रास्ते हैं, ट्रैक, सपोज इधर ही इस सड़क पर एक ट्रैक बना हुआ है। अब वो रोज पानी उसी में बहता है, ठीक है। अब पानी का बहते बहते उस एरिया के अंदर वो एक ट्रैक बन ही गया ना। अब जैसे ही पानी आएगा वो दूसरी साइड पे कहीं जाएगा ही नहीं, राइट, वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक में फ्लो होगा। होते होते होते वो ट्रैक उस पानी के लिए एक परमानेंट पाथ बन चुका है, राइट। अब अगर हम आज से चाहते हैं कि वो उस ट्रैक में नहीं जाए, उस डायरेक्शन में वो पानी नहीं जाए, लेकिन वो एक नए तरह से जाए, तो हमें थोड़े दिन के लिए, सिर्फ ज्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए जैसे ही वो पानी आता है, फ्लो होने लगता है, हमें उसको चैनलाइज करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। ऐसे ही माइंड भी जब एक थॉट क्रिएट करता है, फिर अगले दिन वही थॉट क्रिएट करता है, फिर अगली बार वो सिचुएशन आती है, फिर वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाएगा अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में भी उसका एक ग्रूव बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आएगी तो आप चूज नहीं करते, आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली उस पैटर्न से ही होती है, एंड करते करते करते वो ग्रूव एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे ब्रेन की मैपिंग, वो पैटर्न्स बन जाते हैं। अब हम एक जीवन अनेक जन्म उसी पैटर्न उसी मैपिंग से काम करते जा सकते हैं, लेकिन अगर हम आज डिसाइड करें तो हम आज चेंज कर सकते हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: कुछ दिन पहले एक भाई मिले, उन्होंने कहा सुबह क्या हुआ, कहते मैं उठा, ऐसे बेड से उठा तो टेबल थी बेड के सामने, मेरा पैर लग गया टेबल से। तो मैंने सबको जोर जोर से डांट लगानी शुरू कर दी, दिखता नहीं, अपने सब स्टाफ को बुलाया, वाइफ को बुलाया, दिखता नहीं बेड के सामने टेबल रखी, उठा मेरा पैर लग गया, सबको डांट रहा था। तो धीरे से किसी ने आके कान में कहा, सर रात को आपने रखी थी। अब जैसे ये पता चला कि रात को आपने रखी थी, अब व्यवहार कैसा हो जाएगा? इसीलिए जीवन में जितने विघ्न हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए हम औरों को डांट रहे हैं, औरों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, औरों पर चिल्ला रहे हैं, वो जीवन में विघ्न हमारे किसने रखे थे? किसने रखे थे? वो हमने ही रखे थे। अब औरों पर डांटने की बजाय हमें क्या करना है? हमें क्या करना है कि आज उसको ध्यान से साइड पे रखना है। तो जो मेरे जीवन में हो रहा है, अगर मुझे ये क्लैरिटी है कि जैसा कर्म वैसा कॉन्सिक्वेंस, तो मुझे उंगली फिर किसी और पर नहीं, उंगली यहाँ और ठीक करने की उंगली भी यहाँ। वी आर नॉट डूइंग अ फेवर टू एनीबडी एल्स। ये हम कहते हैं ना, उसने किया इतना, मैं कैसे क्षमा करूं? उनको नहीं क्षमा कर रहे, अपने आप को क्षमा कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। अब हम कह सकते हैं कि हमने लाइफ की स्किल्स के बारे में जान लिया है। अब जितना अभ्यास करते जाएंगे, जैसे भी किसी भी स्किल को सीखते हैं तो कहा जाता है कि उसको आप जितना अभ्यास करेंगे, जितनी बार उसको यूज करेंगे, आप उसमें परिपक्व होते जाएंगे, पारंगत हो जाएंगे। तो लाइफ स्किल्स को हम समझ रहे हैं, जान लिया है, अब अभ्यास पर निर्भर करेगा कि हम कितने पारंगत होंगे। कुछ और बातें मेडिटेशन से जुड़ी हुई, अपने आप से जुड़ी हुई जानते हैं। हर बार की तरह हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आप दोनों का स्वागत। ओम शांति। डॉक्टर पटेल, ये पूरी श्रृंखला में बहुत सारे पड़ाव, बहुत सी नई बातें, ऐसी बातें जो सचमुच अभी नहीं पता थी। मेडिटेशन का जो प्रभाव है उसके बारे में हमने बात की। मेडिटेशन पर ही कोई और अगर रिसर्च की गई है तो उसके बारे में भी हमें बताएं।
1: नहीं, जरूर, बहुत अच्छा। मैंने आपको ईईजी स्टडीज के बारे में बताया था, एमआरआई स्टडीज के बारे में बताया था। ऐसे ही मेडिटेशन की जो इमीडिएट इफेक्ट है वो हमारे ऑरा पर है, क्योंकि आत्मा से जो विचार निर्माण होते हैं वो एक सूक्ष्म रूप लेते हैं। हमेशा तीन लेवल है, एक तो आत्मा का लेवल, दूसरा फिजिकल, और उसके बीच में एक लेवल है जिसको हम ऑरा कह सकते हैं, और ये ऑरा को फोटोग्राफ भी किया जा सकता है। और ऐसी भी रिसर्च जो मैंने बताया आपको सर गंगाराम हॉस्पिटल में की थी, वैसे ही ईईजी के साथ साथ एक पीआईपी कैमरा होता है जिसका नाम है पॉली कॉन्ट्रास्ट इंटरफियरेंस फोटोग्राफी, क्योंकि पॉली कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करता है और जो हमारा ऑरा है उसको हम फोटोग्राफ कर सकते हैं। उसमें बॉडी में भी डिफरेंट पैटर्न्स निर्माण होती है, साथ साथ में साइड में भी ऑरा के डिफरेंट कलर्स आते हैं,
0: जिसे हम वो कहते हैं तेज मंडल जो है अपना।
1: हाँ, बिल्कुल, जो देवताओं के भी हम दिखाते हैं वो भी उनका एक आभा मंडल ही है। और सेम चीज की गई जो ईईजी रिसर्च में की गई थी कि कुछ लोगों ने सिर्फ म्यूजिक सुना और दूसरों को मेडिटेशन का अभ्यास कराया गया, और पहले और बाद में उनका ये पीआईपी स्कैन हुआ, उसमें भी जो रिजल्ट्स आए सचमुच बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स थे। जिन्होंने म्यूजिक सुना है उनमें पहले और बाद में पीआईपी स्कैन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, आप चित्र में भी देखेंगे। जिन्होंने मेडिटेशन का अभ्यास किया था उनका जो साइड का ऑरा है वह भी लाइट होने लगा है, अगर रेड कलर है तो पिंक होने लगा है, पिंक से येलो होने लगा, येलो से कुछ लोगों का व्हाइट भी होने लगा। साथ साथ बॉडी में भी जो ब्लॉक्स क्रिएट होते हैं उसमें भी परिवर्तन आया, क्योंकि कोई जो बीमारी होती है पहले तो वो ऑरा में शुरू होती है, फिर शरीर के ऑर्गन्स पर आती है,
0: तो मतलब पहले सूक्ष्म रूप से आ जाती है,
1: फिर बॉडी पर वो रिफ्लेक्ट होता है, उसको कई साल लग सकते हैं। ये पीआईपी स्कैन में भी आप देख सकेंगे कि गले में पूरा रेड पैच है, और मेडिटेशन का अभ्यास किया उसके बाद वो रेड पैच काफी कम हो गया है।
0: एक बार की उतनी देर की मेडिटेशन?
1: हाँ, 20 मिनट की मेडिटेशन में जो सिद्ध करता है कि भले अभी कोई बीमारी नहीं है परंतु आने वाले 3-4-5 साल में उस व्यक्ति को गले की कोई ना कोई बीमारी होगी, और ऐसे अगर वो मेडिटेशन के द्वारा उस ऑरा को क्लियर कर सकता है तो वो बीमारी को भी प्रिवेंट कर पाएगा, एक बहुत बड़ी प्राप्ति है।
0: तो ये सिस्टर शिवानी, मतलब एक बार मेडिटेशन का अनुभव और बार बार हम जो ऑरा क्लिंजिंग पूरा टाइम अल्टरनेट हीलिंग में आजकल हम करते हैं कि ऑरा क्लिंजिंग की बहुत जरूरी है, ऑरा जो है वो क्लियर होना चाहिए, तो मेडिटेशन का आपने कहा 15 मिनट का अभ्यास अनुभव।
2: ऑरा इज व्हाट इट्स लाइक एन एक्सरे ऑफ आवर थॉट्स, जिस क्वालिटी की थॉट्स है उस क्वालिटी के कलर, उस क्वालिटी की इमेज हमें दिखाई दे रही है। एक जिस पर्टिकुलर ग्लैंड पे एक इलनेस आने वाले समय में मैनिफेस्ट होने वाली है, लेकिन वो शुरू तो हो चुकी है, इसलिए उस पर्टिकुलर ऑर्गन के पास जो ऑरा है उसका कलर थोड़ा सा टुवर्ड्स द डार्क है। इस पूरी सीरीज में हम देखते आए हैं जो थॉट्स हम क्रिएट करेंगे वो एनर्जी उस पर्टिकुलर ऑर्गन के उधर यू नो टारगेट होती है, और वहां या तो डिजीज क्रिएट हो सकता है या फिर उस डिजीज को हील भी कर सकते हैं। तो जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं हम अपने थॉट्स की क्वालिटी को चेंज कर रहे हैं, तो हमने अपना हीलिंग का प्रोसेस शुरू कर दिया है, एंड दिस पिक्चर इज अ प्रूफ ऑफ दैट कि यहाँ आपने थॉट्स चेंज की, यहाँ आपका उस रीजन के पास का ऑरा चेंज हो गया। लेकिन अब सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि फिर से नहीं वो डार्क की तरफ जाए, क्योंकि नॉर्मली ऑरा क्लेंजिंग में भी क्या होता है, ऑरा क्लेंजिंग कराते हैं, थॉट्स को नहीं चेंज करते, तो फिर धीरे धीरे धीरे वो फिर से इमोशनल ब्लॉक्स क्रिएट हो जाते हैं, वो ऑरा फिर से डार्क कलर की तरफ जाता। जो रेगुलर मेडिटेशन प्रैक्टिस करेंगे और सारा दिन में भी अपने थॉट्स पर अटेंशन रखेंगे, तो फिर वो कलर परमानेंटली लाइट की तरफ चला जाएगा। अगर 20 मिनट्स में ये हो सकता है तो डेली करेंगे तो वी कैन इमेजिन व्हाट द मिरेकल विल बी।
0: आई थिंक
1: मेंटेन करने के लिए डेली जरूरी है,
2: डेली करना पड़ेगा।
0: हमने पहले भी जो कितनी बातें की हैं, हर बार हर एफर्ट को हमने एक महीने का टाइम दिया है, तो आई थिंक वी शुड गिव अस 1 मंथ
1: और मेबी 2 मंथ्स,
0: एक महीना 2 महीना और फिर वो देखें। इनफैक्ट वो तब तो हमें महसूस भी होने लगेगा, पीआईपी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी,
1: नहीं पड़ेगी
0: कि जिस भी बीमारी का अगर है या असंभावना है वो दूर हो सकती है।
1: दिस इज अ साइंटिफिक प्रूफ, हमारे दर्शक भी उस बात को समझे कि अगर इतनी इफेक्ट होती है तो नियमित मेडिटेशन करने से सदा के लिए वो चेंज हो जाएगा।
2: साइंटिफिक प्रूफ इसलिए इज गुड क्योंकि कई बार जैसे हमने जो विजुअलाइजेशन टेक्निक्स भी की, दे विल ओनली वर्क इफ यू हैव कंप्लीट फेथ। अब कई बार साइंटिफिक प्रूफ के बिना आपका कंप्लीट फेथ नहीं डेवलप होता, बीच बीच में आपको थोड़ा सा डाउट आ सकता है। अब वो थोड़ा सा डाउट आपकी पॉजिटिव एनर्जी की बजाय नेगेटिव क्रिएट करेगा, तो आपका सारा वो एफर्ट, इट वोंट गेट द रिजल्ट। इसलिए इस तरह की साइंटिफिक रिसर्च हमारे वो फेथ को कंप्लीट कर देती है, फिर हम एक्सपेरिमेंट को भी शुरू करते हैं और फिर एक्सपीरियंस हो जाता है।
0: और जो आपने अभी इमोशनल ब्लॉक्स की बात की है, इनफैक्ट अगर हम इसी श्रृंखला में पीछे जाते हैं तो आपने कहा था कि इमोशनल ब्लॉक्स जो है उन्हें रिजॉल्व करना, क्योंकि वो अवेयरनेस भी नहीं है। यहाँ तो दिख गया कि अगर पीआईपी करवाया और उसमें दिखा कि ये एक इमोशनल ब्लॉक हो सकता है जो बीमारी में मैनिफेस्ट होगा और सालों साल मेरे साथ दर्द के रूप में भी तो रहा, तो मेडिटेशन ही वो माध्यम था। हाउ डज इट साइंटिफिकली ओपन्स द ब्लॉक, इमोशनल ब्लॉक कैसे खुलता है?
1: ब्लॉक्स जो है उसमें दो चीजें होती है, एक तो वह उस घटना की याद है वहां पर और दूसरा उसकी इमोशंस भी है। किसी ने विश्वासघात किया आपके साथ, तो विश्वासघात के समय जो आपने इमोशंस क्रिएट हुए, दे आर देयर क्योंकि बहुत स्ट्रांग थे, और वह मेमोरी भी है उस घटना की। अब यह दोनों को रिमूव करने की जरूरत है। मैंने साइकोथेरेपी में देखा है कि कई बार वो व्यक्ति थोड़ा इमोशंस को तो समझ जाता है, कुछ हद तक वो रिलीज हो जाता है, परंतु कंप्लीटली वो इरेज नहीं होते हैं। परंतु मेडिटेशन के अभ्यास में न केवल मेमोरी उसकी इरेज होती है, परंतु वो ब्लॉक के साथ जो रिलेटेड इमोशंस है वह भी रिलीज हो जाते हैं। क्योंकि एक तो व्यक्ति एक्सेप्ट करता है कई बार, या उसे माफ कर देता है, जो हमने आगे भी डिस्कस किया था। साथ साथ परमात्मा से जो शक्ति मिलती है, हम सभी संबंध परमात्मा से जुड़ाते हैं, तो वह संबंधों का जो प्यार है, जो सेटिस्फेक्शन है, जब परमात्मा से प्राप्त हो जाता है, तब भी उस ब्लॉक के इमोशंस को इरेज करना संभव है। और जो टेक्निक्स है कि हम रिलैक्सेशन करते हैं, साइकोथेरेपी करते हैं, तो ब्लॉक्स कम तो होंगे, परंतु मैंने अनुभव भी किया कि पूरी तरह से वह नहीं जाते। परंतु अगर मेडिटेशन का अभ्यास रेगुलर किया जाए, मैं तो कहूंगा कि कम से कम 3 मास करना चाहिए। 3 मास आप नियमित मेडिटेशन का अभ्यास करो और जितना हो सके उसकी डेप्थ में जाओ। नहीं, 3 मास अगर अभ्यास करो तो ब्लॉक्स के अंदर इमोशंस भी है, मेमोरी भी है, तो इमोशंस को भी कम्प्लीटली इरेज करने में मेडिटेशन बहुत मदद करता है।
0: इसी को अगर आगे बढ़ाते हैं तो मैं एक आत्मा, ये हम बार बार कह रहे हैं, तो उसके भी कुछ साइंटिफिक प्रूफ्स हमारे सामने आए हैं, अब इतनी रिसर्चेस हो रही हैं।
1: बिल्कुल, ये बात अच्छे से समझनी चाहिए। जब हम साइंटिफिकली इसको एक्सेप्ट करेंगे तो फिर अभ्यास भी करेंगे, जब तक एक्सेप्ट नहीं किया अभ्यास भी नहीं करेंगे। और मैं आपको मुख्य रूप से 3 बातें बताना चाहता हूँ। एक बात तो कि जो आज न्यूरोलॉजी भी एक्सेप्ट करने लगी है, ओपन माइंडेड न्यूरोलॉजिस्ट, आज कई लोग तो कंजर्वेटिव होते हैं, उनको जो 30 साल पहले सिखाया गया है वो चेंज ही नहीं करना चाहते हैं, परंतु आज बहुत सारे ओपन माइंडेड न्यूरोलॉजिस्ट भी है जो इस बात को स्वीकार करने लगे कि ब्रेन

0: ब्रेन में, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में भी किए, हाइपोथैलेमस में भी किए, और वो लोकल एनेस्थेशिया में हुए थे, जिसके कारण पेशेंट भी कॉन्शियस थे, अपना अनुभव भी वो सुना सकते थे। जब वेल्डर पेनफील्ड ने माइक्रो इलेक्ट्रोड्स इम्प्लांट किए, हाइपोथैलेमस में भी जब किए, तो उन्होंने ये देखा कि एक अजीब से इमोशंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो रियल नहीं है। जब कोई चीज को आप देखते हो तो हमारे में रियल इमोशंस होते हैं, फियर होगा, क्रिटिसिज्म हो सकती है, जेलसी हो सकती है, परंतु उनमें ऐसे नहीं हुए। इवन कुछ पेशेंट्स ने भी कहा, वेल्डर पेनफील्ड ने लिखा भी है कि पेशेंट ने कहा कि डॉक्टर साहब, लगता है कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी मेरे इमोशन से ज्यादा पावरफुल है, मेरी विल से ज्यादा पावरफुल है, मैं चाहता हूं कि नहीं हो तो भी ऐसा हो रहा है, और वो रियल इमोशंस नहीं है। और भी कुछ साइंटिस्टों ने इस प्रकार की रिसर्च की है, और यह ओपन माइंडेड न्यूरोलॉजिस्ट एक्सेप्ट करने लगे। प्रोफेसर जेसी एकल्स की, जिन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था, उन्होंने तो पूरी किताब इस पर लिखी है, जिसका टाइटल ही सिद्ध करता है। उसका टाइटल है सेल्फ एंड इट्स ब्रेन, कि सेल्फ और उसका दिमाग, मतलब सेल्फ अलग है, दिमाग अलग है। तो एक तो ये बात, दूसरी जो बात है, ये जो क्रिलियन फोटोग्राफी की हम बात कर रहे थे, कि एक सूक्ष्म विशेष प्रकार की क्रिलियन फोटोग्राफी से जब रशिया में कम्युनिस्ट रूल था, तब भी ये रिसर्च हुई, और एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है साइकिक डिस्कवरीज बिहाइंड एन आयरन कर्टन, क्योंकि लोहे की दीवार थी, वहां कम्युनिस्ट रूल था, और उस किताब में ऐसी रिसर्च हुई कि जो लोग मृत्यु के बहुत ही नजदीक पहुंच गए थे, उनके ऊपर ये रिसर्च हुई, और उस रिसर्च में देखा कि कुछ सेकंड, हर 2-3 सेकंड में उनके फोटोज लिए, काफी जो शुरू के फोटोज लिए गए हैं उनमें ऑरा भी दिखाई देता है और एक प्रकाश भी दिखाई देता है। उसके बाद बस 2-3 सेकंड के बाद जो फोटो लिए गए हैं उसमें वो लाइट गायब हो गई। तो रिसर्चर लिखते हैं कि यह जो प्रकाश था वह शायद कोई फिजिकल नहीं था, अगर वो बायोलॉजिकल प्रकाश होता तो धीरे धीरे मृत्यु के बाद कम होता, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटे के बाद वो कम होता जाता, लेकिन विद इन सेकेंड वो डिसअपियर हो गया, विच शोज दैट दिस इज समथिंग स्पिरिचुअल। तो इससे मुझे भी प्रेरणा मिली कि दिस इज सम डायरेक्ट एविडेंस इज देयर कि आत्मा का अस्तित्व है।
1: और यहीं पे लाइट थी वो।
0: हाँ, यहीं पर लाइट थी ना, बिल्कुल।
1: और बाकी ऑरा उसके बाद,
0: बाकी ऑरा, हाँ, बाकी ऑरा धीरे धीरे कम हुआ,
1: मेंटेन रहा।
0: हाँ, मेंटेन रहा, स्लोली कम होता गया, लेकिन दिस लाइट डिसअपियर्ड विद इन सेकेंड। और जो तीसरा है कि जिन बच्चों को अपना पूर्व जन्म याद आया है, या तो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी, जो मृत्यु के करीब के अनुभव है, उनको भी अगर हम गौर से देखें तो पता चलता है कि विद्या रियल। जैसे कि भी जिन बच्चों को अपना पूर्व जन्म याद आया है, अगर एक एग्जाम्पल भी सही हो, मैं मानता हूं कि कुछ मेडअप स्टोरीज भी है, कोई स्वार्थ के कारण किसी ने कह दिया कि मैं वो व्यक्ति था, परंतु ये सारे किस्सों में एक एग्जाम्पल भी सही हो तो वो प्रूव करता है कि आत्मा का अस्तित्व है।
1: नहीं, वो तो अब बहुत ज्यादा
0: बहुत सारे,
1: प्रूवन
0: हाँ,
1: है।
0: प्रूवन
1: हाँ,
0: है, लेकिन फिर भी आज जो स्केप्टिक्स कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो मेड अप स्टोरीज है, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी बात हो सकती है। और जो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस है, कि जो मृत्यु के बहुत करीब पहुंच गए थे, जिसको टनल एक्सपीरियंस भी कहा, कि जैसे लाइट शरीर से निकल गई, हम अपनी बॉडी को ही देख रहे थे, एक टनल से बहुत तेज गति से गुजरे और फिर हमने कोई प्रकाश को देखा, यह जो यूनिफॉर्मिटी है, भले उनकी धार्मिक मान्यताएं अलग अलग थी, फिर भी सभी को एक जैसा अनुभव हुआ।
1: नियर डेथ एक्सपीरियंस जो था।
0: हाँ, और साथ साथ में जो लोग वो सारे सर्जिकल ऑपरेशन को डिस्क्राइब कर पाए, वह नहीं हो सकता है। अगर वो ड्रीम लाइक स्टेज है तो एग्जैक्ट ऑपरेशन में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज किए, यहां तक कि डॉक्टर्स ने क्या कॉन्वर्सेशन की, वह भी उन्होंने बताया। तो डॉक्टरों को भी आश्चर्य हुआ कि भाई ये तो अनकॉन्शियस था, उसको कैसे याद है कि हमने आपस में क्या बातें की। तो तीन चीजों से भी हम बुद्धि को ये कन्विंस कर सकते हैं कि सचमुच वी आर सोल, और वो अभ्यास हमें नियमितता से करना चाहिए।
1: बिल्कुल, आपने जैसा कहा कि एक जहां एक साइंटिफिकली कई बार मन नहीं मानने को तैयार होता, अगर आप, जैसे बार बार हम कह रहे हैं कि आप ट्रस्ट है, आप कंप्लीट ट्रस्ट

0: अब मेरा मेडिटेशन में, मेरा इस ज्ञान को इम्प्लीमेंट करने में जो स्पीड होगी वो कितनी तेज होगी?
1: अब उसको प्रोसेस को शुरू करने की स्पीड फास्टर हो जानी चाहिए एटलीस्ट, कि जो एक्चुअल एक्सपीरियंस है वो तो हमें खुद को ही मिलेगा। अध्यात्म, आत्मा, परमात्मा, ये वो शक्तियां हैं कि जब तक हम उनको अनुभव नहीं करेंगे, इवन इफ आई हैव सीन अ पिक्चर ऑफ इट और आई हैव सीन द इमेज, इवन दो नॉट द इमेज बट लाइक दिस, आई स्टिल कांट एक्सपीरियंस इट। सो द प्राप्ति तो तभी होगी व्हेन आई विल एक्सपीरियंस इट, लेकिन एविडेंस लाइक दिस मोटिवेट्स मी टू एक्सपेरिमेंट विद इट। तो एक्सपेरिमेंट शुरू किया, एक्सपीरियंस हो जाएगा। वेट सिर्फ ये हो रही है कि एक्सपेरिमेंट ही नहीं शुरू कर रहे, ये एक्सपेरिमेंट ट्राइड एंड टेस्टेड है। इसलिए जो एक्सपेरिमेंट करेगा डिसिप्लिन से और विधि पूर्वक एक्यूरेट, एक्सपीरियंस तो जरूर होगा और वो एक्सपीरियंस फिर आपको वो प्राप्ति कराएगा। लेकिन साइंटिफिक एविडेंस हमारा मोटिवेटिंग फैक्टर बन जाता है डेफिनेटली।
0: आपके लिए क्या रहा? बिकॉज अगर हम देखते हैं आपसे, तो हम जान चुके थे शिवानी कि आपको कैसे मोटिवेशन मिला, बिकॉज एक लॉजिकल और पूरा साइंटिफिक बेस को मानने वाले, साइंटिफिक एस्पेक्ट्स को मानने वाले, आपके लिए ये कौन से एस्पेक्ट्स थे जो मोटिवेटिंग फैक्टर बने?
2: सबसे पहले तो जब मैंने शुरुआत की तब फर्स्ट MBBS में पढ़ता था, तो वो साइंटिफिक फ्रेम तो था ही पूरा, मुझे कोई भी स्पिरिचुअल बातों में इंटरेस्ट नहीं था इतना। मेरा इंटरेस्ट तो यही था कि मेडिटेशन करने से कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा और कॉन्सेंट्रेशन इम्प्रूव होगा तो पढ़ाई में मैं अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। जो मेडिकल का कॉम्पिटिटिव था सारा, उस कॉम्पिटिशन में मैं एक्सेल कर पाऊंगा। और सचमुच वो बेनिफिट हुआ। शुरू में कहूंगा करीब करीब 5 मास तक तो मैं बस जाके मेडिटेशन करता था, आध्यात्मिक बातों में सचमुच रुचि नहीं थी, और तो भी फायदा होता था जब कर रहे थे, इतना डीप नहीं लेकिन बेनिफिट तो हो ही रहा था। करीब 5 मास के बाद एक बार दादी प्रकाशमणि बंबई में आए थे, अभी आज भी मुझे ठीक से याद है, सांताक्रूज ईस्ट में हमारा सेंटर है, वहां पर थोड़े ही लोग होंगे 70-80 लोग, उनके बीच में उन्होंने एक प्रवचन दिया और बड़े फोर्स से बताया। दादी की अपनी एक स्टाइल थी, तो बड़े इमोशनली बताते थे। दादी ने इमोशनली कहा कि मेरी समझ में नहीं आता है, इतनी सी बात है, अपने को आत्मा समझो, वही आप लोग नहीं कर रहे हो, इतना सरल है फिर भी नहीं कर सकते हो, अपने को आत्मा समझो। देखो दादी कहती है ना, उनकी स्टाइल थी सचमुच बोलने की, कि दादी कहती है प्रयोग करो, अपने आप को आत्मा समझो। और मैंने ध्यान से सुना, बस 15-20 मिनट शायद यही बात उन्होंने बार बार रिपीट की होगी, मैंने एकदम ध्यान से सुना। और फिर वहां से जब जाने लगा तब ऐसा अनुभव हुआ कि भी शरीर है ही नहीं, इतने दिनों नहीं हुआ था कि बस मैं आत्मा ही हूं। रास्ते में भी जा रहा था तो लगता है कि सब आत्मा ही दिखाई दे रही है, शरीर दिखाई नहीं दे रहा है। वो जो दिन सारा दिन इतना अच्छा अनुभव हुआ, तब एक बात मुझे कन्विंस हो गई कि भी दादी का प्रवचन सुन के इतना अच्छा अनुभव हो सकता है, अगर मैं खुद करूं तो कितना होगा। तो बस उससे फिर मैंने ये बात पक्की कर ली कि अब इसकी गहराई में जाना है, अपने आप करना है इसका। और फिर इसको अलग अलग तरीके से अभ्यास किया कि कैसे मैं अपने आप को आत्मा समझू, अलग अलग रूपक लिए और कुछ प्रैक्टिस की, और सचमुच डीप एक्सपीरियंस हुआ। तो उससे फिर मैं और भी आगे बढ़ा, और तब भी निर्णय नहीं किया था कि भी सचमुच इस प्रकार का जीवन जीना है। करीब मैंने 1.5 साल लिया कहूंगा कि भी 1.5 साल तक ये अभ्यास तो करता रहा, परंतु 1.5 साल के बाद जब तीसरी बार माउंट आबू गया तब मुझे और भी डीप एक्सपीरियंसेस हुए, और तब मैंने ये निर्णय लिया कि बस ऐसा ही जीवन जीना है, ये बहुत अच्छी चीज है, जो मुझे प्राप्ति हो रही है वो सबको हो। और विशेष तो मेरे मन में तो ये था कि भी डॉक्टर्स को होनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स आज साइंटिफिकली एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और उस समय बहुत कम डॉक्टर्स भी आ रहे थे सेंटर पर। तो तब ये मन में आया कि साइंटिफिकली इस बात को समझाना है, और फिर उसमें रिसर्च करके सारा जीवन ऐसा बन गया।
0: और सचमुच वो जो आपका एक थॉट था, वो रिसर्च के रूप में आज कितने ही डॉक्टर्स शिवानी जुड़े हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ। अगर डॉक्टर्स, साइंटिस्ट या वो लोग जो डिसीजन मेकिंग जगह पर हैं, वो अगर मेडिटेशन का अनुभव और ज्ञान का जो हर परिपेक्ष है वो देख सकते हैं, तो ये दुनिया कैसे होगी?
1: अगर जैसे डॉक्टर्स के लिए कहा ना, डॉक्टर्स, नर्सेस, इवन द एडमिन स्टाफ इन अ हॉस्पिटल, ये सभी वो आत्माएं हैं जो हीलिंग इंडस्ट्री में हैं. लेकिन जब हमें समझ में आ गया अब इफेक्ट ऑफ थॉट्स, अब इफेक्ट ऑफ थॉट्स ऑन माय माइंड, इफेक्ट ऑफ थॉट्स ऑन माय बॉडी, इफेक्ट ऑफ माय थॉट्स ऑन योर माइंड, इफेक्ट ऑफ माय थॉट्स ऑन योर बॉडी ऑल्सो. अब जब एक पेशेंट जो बीमार है एक डॉक्टर के संपर्क में आता है, वो पेशेंट तो ऑलरेडी दर्द में है, अब डॉक्टर भी स्ट्रेस में है, तो पेशेंट दर्द में है और डॉक्टर की भी कौन सी एनर्जी जाती, तो वो जो पूरा इंटरेक्शन है इट्स नॉट एन वेरी पॉजिटिव एनर्जी लेवल. लेकिन जब डॉक्टर्स मेडिटेशन का प्रयोग करते हैं तो पेशेंट को उनसे मिलते ही एक बहुत अच्छी फील गुड फैक्टर जो है, यू नो, उसे आपसे मिलके ही बहुत अच्छा लगा, मेरी आधी बीमारी तो वैसे ही ठीक हो गई, क्योंकि इतनी अच्छी वाइब्रेशन हमें डॉक्टर से आती है. फिर डॉक्टर्स हमें, यू नो, जो हमारा पूरा इंटरेक्शन होता है एक ऐसे डॉक्टर से जो रेगुलर मेडिटेशन कर रहे हैं, वो हमें पैनिक नहीं होने देते, हमें भी रिलैक्स कर देते हैं, एकदम काम कर देते हैं, वो बात को बड़े से बहुत छोटा कर देते हैं, डिसीशन मेकिंग बहुत एक्यूरेट होती है, एंड अपने प्रैक्टिस को वैल्यूज एंड एथिक्स पे करते हैं. सो फिर ऐसे डॉक्टर के पास जाने का किसका मन नहीं करेगा.
0: और खुद डॉक्टर के लिए भी,
1: उनके लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही. बट यू नो, जैसे कई बार डॉक्टर्स कहते हैं कि टाइम नहीं है, बट एक्चुअली इफ दे जस्ट अंडरस्टैंड दैट बाय डूइंग दिस व्हाटएवर देयर प्रैक्टिस इज एक्चुअली गोइंग टू इवन फ्लरिश मोर, बिकॉज द हीलिंग टेक्स प्लेस वेरी ब्यूटिफुली एंड अ वेरी ब्यूटिफुल पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप गेट्स डेवलप्ड. एंड क्योंकि मेडिकल इंडस्ट्री में वर्किंग आवर्स, सारा दिन पेन से घिरे रहना, डॉक्टर्स के ऊपर बहुत स्ट्रेस हो जाता है. सो द डॉक्टर के लिए तो डेफिनेटली इट्स वेरी वेरी वेरी यूजफुल.
0: बहुत सारे जो अब परिवार के सदस्य हैं, अवेकनिंग परिवार के सदस्य, वो अनुभव करना चाहते हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, सिर्फ अभी तक यहाँ का प्रोग्राम को देखकर ही अनुभव जो होता है उसे ही ले रहे हैं. आप क्या कहना चाहेंगे उनको कि वो खुद कैसे करें?
2: पहले तो मेरा जो अनुभव है उसको और थोड़ा मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि कैसे वो फेथ डेवलप हुआ. एक बात तो मैंने बड़े क्लोजली बहनों के जीवन को ऑब्जर्व किया, क्योंकि मैं यही सोचता था कि अगर हमें ऐसा जीवन जीना है तो आगे चल के यह नहीं होना चाहिए कि हमने गलती की, शायद हमारा टाइम वेस्ट कर दिया. इसलिए बड़े क्लोजली ऑब्जर्व किया और यह देखा कि भी इनमें एक तो चीज सिंप्लिसिटी है ना, बड़ी सिंप्लिसिटी से, भले सेंटर्स को अच्छा भी बनाया है, बट देयर लाइफ इज वेरी सिंपल, देयर लाइफ इज रियली प्रैक्टिकल. और एक बात का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा, नो इट्स अ रियल थिंग, कि जो मैंने कहा ना, तीसरी बार जब मैं करीब 1.5 साल के बाद माउंट आबू गया था, तब भी पढ़ ही रहा था, और जैसे आमतौर पर होता है कि भी हम कहीं पर जाते हैं, वहां पर 3-4 दिन रहे, हमारे पर खर्चा भी हुआ, तो ये भी विचार चला कि भी हमको भी उनके लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए. तो तब तो थोड़े पैसे थे जो पॉकेट एक्सपेंस के मिलते थे, वही पैसे थे. तो जो हमारे दिव्या बहन है बॉम्बे में, उनको मैं देने लगा. तो बहन ने कहा नहीं नहीं नहीं, आप नहीं दो, आप तो पढ़ते हो अभी. तो इसकी मेरे पे पावरफुल इफेक्ट हुई. मैंने सोचा कि भी व्यक्ति तो मांगेगा, यहां तक होगा कि भी और कोई युक्तियां ढूंढेगा कि किस प्रकार से ज्यादा लोग पैसे दे.
0: है ना सेवा. हाँ.
2: तो नहीं, ये प्रीफेक्ट हुई कि भाई ये रियल है, अन्यथा तो कोई ना तो नहीं कहेगा, चलो मांगा नहीं अलग बात है, ना क्यों कह रहे हैं, अभी तो आप पढ़ रहे हैं, आपको नहीं कंट्रीब्यूट करना. तो तब मैंने पक्का सोचा कि इनका कोई स्वार्थ नहीं है और इस पर गहराई से प्रैक्टिस करनी चाहिए. कि इस प्लेटफॉर्म पे हम जो बातें बता रहे हैं वो बहुत अच्छी है, जीवन उपयोगी है, लोगों के जीवन में परिवर्तन भी आ रहा है, परंतु क्योंकि हमारे दर्शक बदलते जाते, इसके कारण जो हम बातें बता रहे हैं वो एक लेवल तक है, बहुत डीप नहीं है. अगर आपको ये बातें अच्छी लगी है, आप जीवन में इसका अनुभव करना चाहते हैं, तो सेंटर पर जाना बहुत जरूरी है. क्यों? दो बातें. एक तो वो वातावरण आपको मदद करेगा, घर का वातावरण और सेंटर के वातावरण में वो ऊर्जा है. और दूसरा, सेंटर पर आप मेडिटेशन की गहराई में जा सकते हैं, और जो डेप्थ में जाने की जरूरत है वो सेंटर पर ही हो सकता है. भल ज्ञान बड़ा सरल है, वह जो सरल ज्ञान है उसकी डेप्थ में जाने में सेंटर मदद करेगा. और मुरली में जो बातें मिलती है प्रतिदिन, आज मैंने भी लक्ष्य रखा है कि भी प्रतिदिन मुरली को सुनना है, और इसीलिए कि भी मुरली में नई नई बातें भी है साथ साथ में, क्योंकि वो परमात्मा के महावाक्य है, तो उससे जो हमें ऊर्जा मिलती है, जो प्रेरणा मिलती है, वो भी बहुत गहरी है. कि जो भल प्रतिदिन रेगुलरली विदाउट फेल 365 डेज ईयर ये प्रोग्राम को देख रहे हैं तो भी वो नहीं मिल सकता. इसलिए मेरा ये निवेदन है कि भल सप्ताह में 2 बार जाओ, 3 बार जाओ, परंतु सेंटर पर जरूर जाइए और गहन जो मेडिटेशन है, ज्ञान है, उसको समझने की कोशिश करिए.
0: बिल्कुल सिस्टर शिवानी, यही जो पूरी श्रृंखला चली, अब कई श्रृंखलाओं पे बात की है हमने, और जिंदगी जीने की कला, लाइफ स्किल्स, वो कौशल हमने कोशिश की कि इनमें समेट पाए. और काफ़ी सारी बातें नई हैं, नए अंदाज से हमने काम करना है. आप क्या कहेंगे, ये सफलता कब मिलेगी? एक स्किल तो हमने ले ली, समझ ली, सीख ली, अब क्या करें?
1: कोई भी स्किल, आप कोई भी चीज सीख लें, यूज करें, बार बार यूज करते जाएं, भले पहले 1-2 बार में सफलता नहीं मिले, इट्स अ स्किल विच वी आर नाउ प्रैक्टिसिंग एंड प्रैक्टिस विल टेक अस टू परफेक्शन. उसको बस सुनने और समझने तक नहीं छोड़े. यू नो, कई बार सुनते हैं, देखते हैं, जैसे भाई साहब ने कहा, हर रोज देखते हैं, देखते हुए कहते हैं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, दैट्स बिल्कुल राइट, आई विल डू इट, बट वो थॉट तक रह जाता है. नाउ लेट्स स्टार्ट डूइंग इट, वी विल डेफिनेटली गेट सक्सेस.
0: थैंक यू सो मच. ओम शांति.
2: ओम शांति.
0: रमा कुमारी के देश विदेश में फैले सेंटर्स, जहां पर कोई भी जा सकता है, किसी भी धर्म के हों, किसी भी फिलॉसफी को मानते हों, किसी भी देश में रहते हों, आप जा सकते हैं, क्योंकि वो परमात्मा का घर है, आपका अपना परिवार है. वहां जाएं, यहां से कनेक्टेड है, अच्छा है, समझ में आ रहा है, अब उसका अभ्यास है. शिवानी ने भी कहा, डॉक्टर पटेल ने कहा, जितना अभ्यास, जितनी प्रैक्टिस, वो हमारा बनता जाएगा, हमारी कला हो जाएगी, फिर हम भी तो सिखा पाएंगे. तो ये हम करना चाहते हैं, ना सिर्फ अपने ऊपर काम करना चाहते हैं, अपनों के साथ काम करना चाहते हैं. तो आपको निमंत्रण, आप जाएं हर सेंटर पर, ये कला जो हमने यहाँ सीखी है उसका अभ्यास कराया जाता है, उस अभ्यास को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं. आपसे आगे फिर मुलाकात होगी, लेकिन हमने लाइफ स्किल्स को आपके सामने रखा है, अपने सामने रखा है. अब कितने माहिर होते हैं, कितने पारंगत होते हैं, ये हम पर डिपेंड करता है. आपसे मुलाकात करेंगे. ओम शांति.

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभ सर्वसु, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: 24 घंटे का व्रत रखें, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सामने वाले का व्यवहार कैसा भी हो, मेरा मन, वाणी और व्यवहार शांत और प्रेम से भरपूर। सिर्फ 24 घंटे का व्रत रखें तो भी हमने सृष्टि की कितनी सेवा की, और जो चीज हम एक दिन कर सकते हैं हम उसको हर रोज कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पास पावर है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

खास 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब्ड हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ, इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी। एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारी थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा। व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट, जस्ट द अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाइट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 करोड़ सेल्स है, जस्ट द ब्रेन, ओके, 10,000 करोड़ सेल्स। एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 करोड़ सेल्स आर, ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 मोर सेल्स इन द बॉडी, 10,000 crore cells in the brain into 10,000. This is the human network. So many switches connected to so many switches. अब जब इतने switches से connected होते हैं, तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसका इफेक्ट कितना लंबा जाएगा। तो जब ब्रेन में 10,000 crore cells connected to 10,000 cells, each cell connected to 10,000 cells in the body, and हर thought जो हम create कर रहे हैं उसका brain पर असर पड़ रहा है, ब्रेन से फिर वो केमिकल सिक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है, और हमने कितनी आराम से एक घंटा डिस्टर्ब रहे। अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर, उस समय याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या हम अपने आप को अलाउ करते हैं वैसे करना।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने,
3: छोटी छोटी बातों पे अगर हम गौर करते हैं तो कई बार वो छोटी छोटी बातें हमें बहुत बड़ी शिक्षाएं दे जाती हैं। जैसे कि एक छोटी सी बात, बीज या सीड्स जिनसे हम हमारी फसल उगाते हैं, हमारे पेड़ पौधों को सृजन देते हैं, उस बीज की गुणवत्ता पे निर्भर करता है पूरे देश का स्वास्थ्य। कितनी गहराई है इस बात में, लेकिन हमने कभी इस पे इतना ध्यान से सोचा नहीं। मैं बात कर रहा हूँ राहीबाई सोमा पोपेरे जी की, जिनको कि हमारे देश में बीज माता के नाम से जाना जाता है। पद्मश्री सम्मान से सम्मानित राहीबाई जी के अनुभवों से हमने अब तक बहुत कुछ सीखा है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ यशस्वी भारत कार्यक्रम के हमारे आज के अतिथि की। 90.4 FM रेडियो मधुबन के स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हैं राहीबाई जी और उनके साथ जतिन जी। राई जी, जतिन जी, आपका स्टूडियो में दोबारा फिर से स्वागत है।
4: धन्यवाद।
5: धन्यवाद।
6: मेरा यहाँ पर राई भाई जी से ये प्रश्न रहेगा कि भारत की बेटी होने पे उनको कैसा नाज है, क्या अनुभव करते हैं वो, भारत देश के लिए उनके अंदर में क्या भावनाएं हैं?
4: मावशी, त्यांचा प्रश्न है कि तुम्ही एक भारताची मुलगी म्हणून गजब वागता, या देशाची तुम्ही मुलगी आता, तर
6: आप राहीबाई जी अब आप अहमदनगर की मुलगी नहीं रही, अब आप पूरे भारत की मुलगी हो गई, आप पूरे भारत की माँ है, भारत की बेटी है, है ना? तो कैसा फील करते हैं, क्या भावना है भारत के लिए?
7: माझा भावना जी है, मला समाजा मध्ये फक्त समाजात काम करायचं होतं, ही लहानपणापासून अपेक्षा होती, पण लहानपणी काही शाळा शिकता नाही आली, आणि 12 वर्षी माझं लग्न झालं। आमच्या वडिलांची पण खूप गरिबी होती, आम्ही 7 बहिणी होतो, आमच्या एक लहान असतानीच वारली, एक बहीण 9 महिन्याची असताना आई गेली, मग आम्हाला सगळं संस्कार आमच्या वडिलांनी दिलं आणि सगळं ज्ञान आमच्या वडिलांनी शिकवलं, आणि हे भारताची जे मुलगी, मला भारताचं जे काम करायला भेटलं, तर मला लहानपणापासून अपेक्षा होती का मला समाजात काहीतरी काम करायचंय, पण 12 वर्षी लग्न झाले, माझा परवाचा खूप कठीण आला, असा कठीण आला का मी कोणासंग बोलायचं नाही, कोणत्या घरी नाही, दार नाही, काही नाही, खूप कठीण प्रवास काढला मी खूप, आणि मग तो प्रवास तेवढा कठीण काढता काढता बरेच दिवस गेले माझ्यावरी, माझ्या मोठ्या मुलांनी 10वीची शाळा सोडली, तेव्हा मला काहीतरी करता मग मी काय नाही, फक्त रोपं तयार करू लागली, मी काही दिवस ऊसतोडी कामदार होते, आणि ऊसतोडून आले का शेतामध्ये रो हाताला काही काम नसायचं, खूप दुर्गम गाव आहे आमचं, अजून सुद्धा रस्ते नाही, अजून सुद्धा पाणी नाही आमच्या गावाला, अशा दुर्गम भागामध्ये मी राहत असते, आणि मग आता पैसा नाही, काही काम नाही, धंदा नाही, मग मी रोप तयार करू लागली, बचत गट केले दोन-तीन बचत गट पाईप ला सोडले. पाईपच्या माध्यमातून मी रोप तयार करायला लागले. पहिल्या वर्षी 3,500 केले तर खूप लोक मला हसत खूप नाव ठेवीत. मग ते रोप पाईप संस्थेने कुठेतरी नेले.

0: सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: चलते हुए गिर जाओ तो उठो और फिर चलो, सारे जमाने का दामन झुक जाए पर उम्मीदों का दामन झुकने न दो, चाहे आसमान का सूरज झुक जाए पर मन का सूरज बुझने न दो। कठिनाइयों का सामना करने से ही हमारे अंदर अनुभव आते हैं और ऐसे अनुभवी को ही रवि से ज्यादा माना गया है। आज हमारे बीच में ऐसे ही एक होनहार अनुभवी बैठे हुए हैं जिन्होंने न केवल अपने पूरे देश का नाम रोशन किया है लेकिन देश में एक ऐसे वर्ग का नाम रोशन किया है जिस वर्ग के बारे में शायद मैं और आप दोस्तों बहुत कम सोचते हैं। वो वर्ग है हमारे प्यारे किसानों का, हमारे अन्नदाता किसानों का। आज हमारा सौभाग्य है कि हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हमारे देश के यशस्वी, भारत के यशस्वी किसान जेनाराम जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। जेनाराम जी, आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है।
2: हमारे इस कार्यक्रम का नाम है यशस्वी भारत और ऐसे हमारे विशिष्ट अतिथि जेनाराम भाई पटेल जी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जेना भाई जी, नमस्ते।
3: नमस्ते, ओम शांति।
2: ओम शांति। कैसा महसूस कर रहे हैं आज आप हमारे साथ रहते हुए?
3: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इससे ज्यादा मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज ब्रह्मा कुमार ओम शांति में बात कर रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है।
2: रेडियो मधुबन में हमारे जितने भी श्रोता है ये सब बहुत दिल से आपका इंतजार कर रहे थे क्योंकि इनके सामने एक ऐसा अनोखा उदाहरण रेडियो मधुबन लेकर के आया है जहाँ पर कई कठिन परिस्थितियों के होते हुए भी उमंग उत्साह के पंख से एक पंछी ने ऐसी उड़ान भरी कि हर एक की नजर उस पे थी। तो ऐसे विशिष्ट अतिथि हमारे गेना जी, आपका बहुत बहुत फिर से स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा, मेरी उत्सुकता है कि गेना राम इस शब्द का मतलब क्या होता है?
3: ये हमारे यहाँ पे ऐसे तो मैं भी मारवाड़ प्रांत से हूँ, मेरे बुजुर्ग जो लोग हैं वो मारवाड़ से आए हुए हैं यहाँ पे गुजरात में, लेकिन ये ऐसे जो अपने समाज में नाम दिए जाते हैं तो ऐसे नाम मेरे पिताजी ने भी मेरा नाम रख दिया
2: और उस नाम को आपने फलीभूत किया है। आपने अपने को इतना ऊंचा उठाया है कि उस नाम को भी आपने चरितार्थ किया है, तो आपके पिता को भी, आपके परिवार को भी आपके ऊपर नाज होता होगा।
3: बिल्कुल है सर।
2: तो मुझे चीज आपसे जो सबसे पहले ये जाननी थी कि जीवन जब सामने वाले व्यक्ति को बहुत बड़ी एक परीक्षा देता है तो उस परीक्षा को संभालना, उसको उत्तीर्ण करना, उसमें उसके लिए उसमें शक्ति भी भरता है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति उस शक्ति को पहचान नहीं पाता और उस परीक्षा में वो फेल हो जाता है। आपने बहुत छोटी आयु में ही आपके सामने जीवन ने एक बहुत बड़ी परीक्षा रख दी और वो पोलियो से आई जिसकी वजह से आप शारीरिक तौर पे विकलांग हुए। ये छोटे बच्चे के लिए ये बहुत बड़ी परीक्षा थी, तो उस बचपन में इतनी कम आयु में आपने क्या ऐसा सपोर्ट सिस्टम था आपका, क्या ऐसा आपका आधार था कि आपने इतनी छोटी सी आयु में भी उस परीक्षा को पास किया?
3: ये मैं बिल्कुल वो कुछ करने लायक नहीं था, लेकिन मुझे बचपन से ही जो मेरे पिताजी एक गांव में प्रतिष्ठित व्यक्ति थे तो उनको मिलने के लिए लोग हर रोज लोग आते थे, तो एक मैं रोजिंदा सुनता रहता था कि कोई आता है तो उसको बहुत अच्छी तरह से उसको आवकार देना चाहिए। तो मैं वो बचपन से ही एक पॉजिटिव थिंकिंग, आप बोलते हैं वैसे ही पॉजिटिव ही रहता था कि कोई अपने यहाँ पे मेहमान आते हैं तो उनको अच्छी तरह से रखना चाहिए, और वो मेहमान आते थे उनकी बातें मैं सुनता रहता था। कोई अच्छे लोग बहुत बड़ी बातें करते थे, ये बच्चा अपंग है लेकिन ये किस्मतवान है, ऐसा ऐसा है, तो उसी टाइम से मेरे अंदर जो जो जो हौसला रहता है वो उस टाइम से बुलंद हो गया था कि मैं दिव्यांग होते हुए भी मैं कुछ कर पाऊंगा। मैं छोटा था तो जो लोग बड़े करते थे वो ऐसे ही काम करने के लिए मेरा हौसला रहता था रोज का। मेरे बड़े भाई ट्रैक्टर चलाते थे तो मैं सोचता था कि मैं ट्रैक्टर नहीं चला पाऊंगा, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, क्यों नहीं कर पाऊंगा, तो मैं उसके पीछे काम करने के लिए मन काम करने का बहुत अंदाज अलग रहता था। और मैं एक आपको एग्जांपल मैं दूं तो मेरे यहाँ पे मेरे गांव में कोई नीम के पौधे हैं बड़े बड़े, मेरे साथ में जो पढ़ाई करते थे वो सब बच्चे चढ़ जाते थे, तो मैं सोचता था मैं इस पौधे पे नहीं चढ़ पाऊंगा क्या, और मैं चढ़ पाया। एक दो बार गिर

0: समझा और उसमें ये पाया कि आपको पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा से बहुत प्रेम था, आपकी
1: बिल्कुल
0: दिव्यांगता को भी आपने उसके आड़े नहीं आने दिया, और अपने पढ़ाई करने के लिए कितने गांवों को आपने चेंज किया। पहले कक्षा चौथी कहीं पर, पहले तो स्कूल नहीं था, आपके पिता के
1: रिश्ते
0: आपके कलेक्टर जी ने वहां पर स्कूल खोला, फिर वो स्कूल से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव। मैं यहां पर आपसे ये जानना चाहूंगा कि शिक्षा में ऐसा क्या आपको महसूस हुआ जिसने आपको अंदर से ये प्रेरणा दी कि शिक्षा का साथ नहीं छोड़ना।
1: ये शिक्षा में मुझे ऐसा लगा, मैं गांव में पढ़ता था तब मेरे गुरुजी बहुत अच्छे पढ़ाते थे, और उसके बाद में जब मैं सिटी, हमारे तो ओडिशा सिटी है, हम हमारे गांव से 35 किलोमीटर 35 किलोमीटर पे, तो वहीं पे मैं पढ़ने गया। गांव पे पूरा ही जो सिस्टम था, बाजार का सिस्टम था, वो गांव और बाजार में बहुत अंतर रहता है। लेकिन वहां जाने के बाद में बड़ी स्कूल में गया, वहां पे जो हमारा ग्रंथालय पुस्तकालय बोलते हुए उसमें मुझे बहुत अच्छा लाभ मिला, और वह मैंने अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ी। उसमें स्वामी जी की विवेक का पुस्तक बहुत अच्छा, और उन आधार में उनका पुस्तक जब मैंने पढ़ाई किया उसके बाद बहुत मेरा कसूर है, सभी मैं नंबर वन आ सकता हूँ।
0: तो गेना भाई जी, रास्ते में जब थोड़ी छोटी बड़ी रुकावटें आती हैं, स्पेशली उन केसेस में जहां पर एजुकेशन की बात आती है, शिक्षा की बात आती है, कई बार गरीबी, कई बार जैसे आपके केस में भी था कि दिव्यांगता थी, लेकिन फिर भी आपने उसको क्रॉस किया क्योंकि आपने शिक्षा का जो महत्व है उसको समझा था, आपके माता पिता ने समझा था। तो आज के समय में जो बच्चे या जो परिवार अपने बच्चों को शिक्षा के रास्ते से किसी भी कारण से उनको आगे बढ़ने नहीं दे पाते या नहीं देते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, शिक्षा का महत्व क्या है उन्हें आज?
1: मैं ऐसा मानता हूँ कि निर्बल मन के मानवी को रास्ता मिलता नहीं, अड़ग मन के मानवी को हिमालय नड़ता नहीं। जो माता पिता को ऐसे बच्चे हैं, उनको मेरे ख्याल से मैं ऐसा मानता हूँ कि जिसके ऊपर भगवान को विश्वास है कि ये लोग ये दिव्यांग बच्चे को अच्छी तरह से और उसके रख रखाव कर सकेंगे, उसी उसी के घर में ही ये दिव्यांग बच्चा भगवान देते, सभी को नहीं देते। और ये दिव्यांग होते हुए भी इसका किस्मत लेके जन्म लेता है और उसको थोड़ा कम देता है, उसके पीछे बहुत भगवान उसके रख रखाव के लिए बहुत ज्यादा, मेरे पिताजी की मान लो कि उनको ऐसा बच्चा दे दिया, लेकिन उनके पीछे मुझे बहुत अच्छा भगवान ने सब कुछ दे दिया। तो मैं ऐसी सोच रखता हूँ कि जिस माता पिता के घर में ऐसा कोई बच्चा दिव्यांग बच्चा आ गया है तो उसको बहुत अच्छी तरह से उसको पालना चाहिए और उसको बड़ा करना चाहिए, उसको पूरी पूरी उसके अंदर बहुत अच्छी प्रेरणा देना चाहिए, उसकी वजह से वो बच्चा उसको ऐसा नहीं लगे कि मेरे में कुछ कमी है, वो अच्छी तरह से बहुत अच्छा, उसी का जो कोई शरीर कम है तो एक ज्यादा उसका मगज ज्यादा चलेगा। तो सभी बच्चों को भी मैं ऐसा बोलता हूँ कि आप हिम्मत हारे बिना अपने को बहुत अच्छी तरह से काम करना चाहिए, और किसी जगह पे ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम बहुत बड़ा कर सकते हैं। और भगवान ने हजार लोगों में से, हजार दो हजार लोगों से एक दिव्यांग बच्चा दिया है, तो वो सभी हजारों से अलग बनाया है, तो कुछ हम अलग कर सकते हैं, ऐसी सोच अपने को रखनी चाहिए।
0: मतलब अपनी विशेषता, अपना महत्व हमारी सोच में है। जब सोच की बात आती है तो मुझे यहाँ पर आपसे ये सवाल पूछना है कि साधारणतः किसी भी परिवार में जब बच्चे आगे बढ़ते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो उनको आता है कि भाई ये कमाई करे और ये किसी प्रकार से स्वावलंबी हो जाए। ऐसे समय में आपने कृषि जैसे एक अनूठे रास्ते को चुना जिस रास्ते में कठिनाइयां ज्यादा होती हैं। जनरली हमने देखा है जो किसान के बच्चे होते हैं वो पढ़ाई लिखाई करके शहरों में चले जाते हैं या कुछ नौकरी आदि करना शुरू कर देते हैं, लेकिन किसान के पढ़े लिखे बच्चे वापस किसान बने ये बहुत कम देखने को मिलता है। आपने कृषि को ही क्यों चुना?
1: मैंने जब मैं बचपन से छोटा था तो मेरे गांव में, सब गांव में दो गरीब रहते हैं, उनके पास दो चार पशु होते हैं और उसकी खेती की बहुत अनिश्चितता रहती है, बारिश होता है तो उसको पाक मिल जाता है, नहीं होता है तो अकाल रहता है। तो ऐसे गांव में मैं बचपन से सोच रहा था कि हमारे किसानों के लिए क्या किया जाए, उसकी वजह से हमारे किसान के घर में बहुत पैसा आए। जो हमारे गांव के आसपास में, हमारे गांव में बड़े किसान कम है, हमारे गांव में दो चार बड़े किसान है और सब 2 एकड़ 3 एकड़ के मालिक है,

0: उसके बच्चों को बच्चियों को पढ़ाना है, उसको अच्छी तरह से लगन इसके शादी करना है या उसके सही तरीके से उसको गुजरान करना है, तो वो नहीं कर सकते थे। तो वो मैं सोचता था कि कुछ ऐसा किया जाए उसकी वजह से हम किसान किसी के सामने भी हम बोल सके कि हम भी किसी से कम नहीं है। तो उसी टाइम हमने ये पहले तो मैंने ये मस्टर्ड यानी राई का एक आखा पूरा हमारे गांव और आसपास के गांव का एक मंडल बनाया था किसानों का, और एक दूध डेयरी का भी चयन किया था, और उसी से भी बहुत अच्छा मुझे करने की एक प्रेरणा हुआ करती थी कि कुछ अलग किया जाए। और हमने सोचा कि किसानी में भी जो परंपरागत खेतियां होती थी, जो पानी का बहुत ज्यादा वपराश होता था, मैं सोचता रहता था कि पानी हर दिन कम होता जा रहा है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पर ड्रॉप मोर क्रॉप बोल रहे थे, तो उसके लिए भी हम सोचते रहते थे ऐसा किया क्या किया जाए उसकी वजह से बहुत अच्छी तरह से किसान को आय मिले। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे यहाँ उस टाइम वो सीएम थे, तो उन्होंने कृषि मेला की शुरुआत की थी, और उसी टाइम से मैंने एक सोच नक्की कर लिया था कि हमारे किसानों को बागवानी करवाए। हमारे यहाँ पे जो पाकिस्तान से हम 40-50 किलोमीटर में ही रहते हैं और पूरा ड्राई एरिया है, पानी का बहुत तकलीफ है, तो यहाँ से सुजलाम भी कैनाल निकाला है पानी को रिचार्ज करने के लिए, तो उसकी वजह से हमारा पानी जो डीप जा रहा था वो थोड़ा अप हुआ, और उनमें से किसानों ने ये अनार की खेती की हमने प्रेरणा दी, और सभी किसानों ने अनार की खेती की शुरुआत की। और एक एकड़ जमीन से जो किसान 2004 पहले करीबन 15-20 हजार रुपया का उसकी आय होती थी पूरे सालाना में, तो ये अनार लगाने के बाद में एक एकड़ से 5-6 लाख रुपए की आय होने लगी, और उसकी वजह से हमारे गांव में हमारे आसपास के किसानों ने, हमारे पूरा बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट ने, हमारे कच्छ जिला ने और हमारे राजस्थान के जालौर और बाड़मेर जिला ने भी, बाड़मेर से आए हुए थे हमारे गुजर, तो वहीं पे भी लोग आते जाते थे, मैं वहीं पे जाके उनको सभी को वो जो धोरा एकदम रेतीला जो राजस्थान में रेतीला प्रदेश है वहां पे भी अनार का उनको पौधे लगवा के बहुत अच्छी तरह से वो किसान भी सब अच्छी तरह से कमाई करने लगे। एक एकड़ से 5-7 लाख रुपया किसानों को मिल जाता है, और उसकी वजह से बहुत अच्छा प्रोग्रेस यहाँ पे हुआ है। हर किसान के घर में ट्रैक्टर आ गया है, हर किसान का नया मकान बन गया है, हर किसान के बच्चे अच्छी पढ़ाई करने लगे, बच्चियां अच्छी पढ़ाई करने लगे, उसको मदद मिल रहा है, और पूरा एरिया बहुत अच्छी तरह से अभी प्रोग्रेस कर रहे हैं।
1: तो इसका अगर मैं सार समझूं तो वो है कि शिक्षा और साहस दोनों की आवश्यकता है, लेकिन में मनोबल की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता है।
0: जी,
1: जिसके मन में बल है, जिसमें आत्मबल है, वही आगे तक का सोच पाता है।
0: नहीं, जी।
1: पढ़ाई तो कईयों ने की हुई होती है, योजनाएं सरकार ने बहुत बनाई हुई होती है, लेकिन कमी हो जाती है आत्मविश्वास की कि क्या मैं ये कर पाऊंगा, क्या ये मेरे से हो पाएगा, और वो आपने कभी नहीं कम होने दिया।
0: जी,
1: शरीर से पार मन की गहराइयों में छिपे जो आत्मबल है उसके द्वारा आपने सफलता पाई।
0: यहाँ पे सर्दी में एक बात बताऊं कि यहाँ पे जो हमने अनार लगाया उसी टाइम तो बहुत कम लोगों ने किया था कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं जो हो सकता, लेकिन मुझे मालूम था, मैंने देखा ही था सभी जगह पे। उसके बाद में मेरे खेत पे करीबन 8 साल में 80,000 लोग आए, सभी लोगों को मैंने पूरी पूरी बात बताई, ऐसे करो, हमने जो गलतियां की थी वो नहीं करे, इसलिए मैं उनके खेत में जाके पूरे सभी किसानों का खेत में मैं गया हूँ, और आज दिन तक मैंने किसी किसान के पास से 25 पैसे भी नहीं लिए। मैं मेरी गाड़ी में जाके उनको बताता रहता हूँ। यहाँ पे जो किसान लोग आते थे, हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था सभी किसानों का नंबर लेके, करीबन 15-20 ग्रुप था, तो सभी जिसको जिसको जो कोई तकलीफ है तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप से सभी को गाइड करता था, और बहुत अच्छी तरह से किसानों को बहुत अच्छी तरह से उसको पूरे पूरा जो जो मालूमत नहीं था वो सभी को मालूम हो जाता था।
1: इस प्रयोजन में जो आपने इतना किसानों का साथ दिया, उनको पग पग में जो भी कठिनाइयां आ रही थी, बाधाएं आ रही थी, उससे निकलने के लिए जो आपने उनको अपने सुझाव दिए, अपने अनुभव आपने उनके साथ साझा किया
0: जी,
1: ये आपको बहुत दुआएं भी आपके पास रिटर्न में आई है, क्योंकि आपने बोला ना कि भले 25 पैसे तक नहीं लिया आपने, लेकिन आपने दुआएं बहुत कमाई और ये दुआएं जो है आपको बहुत आगे लेके जा रही है। इसका प्रमाण ये है कि आज भारत देश में आपको कितने ही पुरस्कारों से नवाजा गया है और सर्वोत्तम नागरिक पुरस्कारों में से एक पद्मश्री से आपको नवाजा गया है, तो इसकी तो सबसे पहले मुबारक हो आपको।
0: थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो जब भारत सरकार की तरफ से आपको ये पुरस्कार दिया जा रहा था, इसके पहले भी कई बार चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हो या मुख्यमंत्री जी हो या जो भी हो, हर गणमान्य व्यक्ति ने कई बार आपके नाम का जिक्र किया है जहाँ पर कभी भी ऐसा मौका आता था। तो कभी जब व्यक्ति कोई आपको एक उदाहरण के तौर पे पेश कर रहा है देश में, तो उस समय आपको कैसा अनुभव होता था?
0: उसी टाइम मैं माननीय सीएम साहब को मिलने के लिए जाता था, उसी टाइम भी नरेंद्र मोदी जी ने मुझे पहले ही रोल में मुझे बैठाते थे और कभी कभी तो ऐसा हुआ था कि वो स्टेज से उतर कर नीचे आ जाते थे और हमारे जो अभी गुजरात के सीएम थे रूपाणी साहब, विजय भाई रूपाणी जी, उनको भी मिलने के लिए मैं जाता था तो वो भी स्टेज के ऊपर आके मेरे पास में नीचे बैठ जाते थे। तो मैं बोलता था कि सर आप तो बहुत बड़े व्यक्ति हैं, आप मेरे पास में नीचे नहीं बैठ सकते। नहीं नहीं, वो बोलते थे गहना भाई जी आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं किसानों के लिए, तो हमें भी तो बहुत अच्छा लगता था। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब हमारा जो ये पद्मश्री का जो उसका फॉर्म भरना था, उसी टाइम में टीवी देख रहा था, उसमें टीवी के माध्यम से मुझे मालूम हो गया था कि ये पद्मश्री का फॉर्म भर सकते हैं, इसका वो कर सकते हैं नामांकन। तो मुझे मालूम नहीं था, मेरे भतीजा को मैंने बुलाया और उसको पूछा कि ये क्या हो सकता है, तो कि किसानों के लिए इस साल रखा है, तो हमने इसमें सब वो करके दो दिन बाकी थे तो हमने एक दिन में पूरा उसका स्कैन करके पूरा वो सब इकट्ठा किया और दूसरे दिन में बहुत जल्दी करना था लेकिन वो सबमिट नहीं हो रहा था। तो मेरा एक नियम है कि जो काम करना है उसको पूरे पूरा लगन से करना चाहिए, तो मैं सोच रहा था कि 12 बजे तक अपने को बैठना है, आज रात को 12 बजे बंद होगा उसी टाइम तक बैठना है। तो हम 12 में 2 मिनट कम था और वो स्पेस खुल गया और हमारा वो नामांकन हो गया इस स्पर्धा में पद्मश्री की। फिर बाद में मैं हम भूल गए थे, बाद में 26 जनवरी 2017 के दिन सुबह में 5:30 से 6 बजे तक बजे मुझे फोन आया, मोबाइल मेरा बोल रहा था, तो मुझे बहुत वो हुआ कि अपने कोई अपने समाज में या अपने सगा वाला में से कोई परलोकवासी हो गए, क्योंकि उसी टाइम सुबह में तो किसी का कॉल आता ही नहीं है। वो मेरे को कॉल आया था, मैंने मेरे ध्रुज हाथ से कॉल उठाया तो वो बोल रहे थे गहना भाई जी आपको अभिनंदन, कॉन्ग्रेचुलेशन बोले थे। तो मैंने सोचा कि अपने को ये कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने वाला कोई है नहीं तो और कुछ होगा, तो थोड़ी देर दरपत हो गई थी। बाद में उन्होंने बोला कि आपको भारत सरकार पद्मश्री से नवाजा जा रही है, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी उसी टाइम, क्योंकि क्या एक गांव के छोटे छोटे किसान के बेटे को पद्मश्री जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की थी, कि क्योंकि वो तो बहुत बड़े पैसों वालों को पद्मश्री सम्मान मिलता है, हमें मालूम ही नहीं था कि हमको पद्मश्री मिलेगा, लेकिन हमारे एक प्रधानमंत्री जी ऐसे है कि उन्होंने एक छोटे किसान को पद्मश्री के रूप में चयन किया था। तो इसी के लिए मैं भी माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत बहुत आभार मानता हूँ और मैं तो अपने बच्चों को भी बोल सकता हूँ कि आप भी बहुत पॉजिटिव थिंकिंग, सभी का अच्छा हो, मेरे से मेरा पड़ोसी का बहुत अच्छा हो, आप ऐसे सोचेंगे तो आपके जरूर भगवान, आपने जैसे पहले ही बोला कि वो फिर घूम के अपने को ये सभी किसानों का आशीर्वाद से ये पद्मश्री मुझे मिला है, नहीं तो मैं एक गांव के छोटे किसान ऐसी सोच ही नहीं रह सकता कि अपने को पद्मश्री मिलेगा। सर
1: इसमें जो आपने बात कही ना कि भारत देश ने आपको नवाजा है,
0: जी
1: वो इसलिए नवाजा क्योंकि यशस्वी भारत यशस्वी लोगों से बनता है।
0: बिल्कुल है सर,
1: तो भारत बनाने वाले आप जैसे योद्धा हैं तभी भारत भारत है। मुझे आपके यहाँ पर ये जानना था कि आपके हिसाब से भारतीयता क्या है, देशभक्ति क्या है, या देश के प्रति उत्तरदायित्व कैसे निभाया जा सकता है?
0: अपने को एक ही सभी को एक ही मन में रखना चाहिए कि हम जिस देश में ऋषियों की भूमि है, ये मुनियों की भूमि है, इस भूमि पवित्र भूमि में जिसमें भगवान के अवतार हुए हैं, जिसमें गंगा जैसी नदी बहती है, जिसमें एक बहुत पवित्र आत्माएं रह चुकी है, तो ऐसी पवित्र भूमि में हमको भगवान ने जन्म दिया है, तो हमें एक तो राष्ट्रवाद हमारे मन में रहना चाहिए कि हमारे राष्ट्र का कैसे कल्याण हो, हमारा राष्ट्र कैसे सबसे ऊंचा हो, पूरी दुनिया में हमारा राष्ट्र का नाम हो, ऐसी एक अपने को सभी को सोच रखनी चाहिए। हमारा देश एकदम सभी दुनिया से अलग हो, हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया बने, ऐसी सोच रखनी चाहिए।
1: ये आपकी सोच भी है और शुभकामना भी और इसके लिए आप प्रयासरत भी है, सब जानते हैं। बाकी मुझे एक और चीज आपसे ये जानना था कि आपने देखा है, सुना भी है कि कई कृषक जो हैं वो रासायनिक कृषि की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान खुद भी सहन कर रहे हैं, समाज पर भी बहुत ज्यादा उसका नुकसान हो रहा है, और जो हमारी धरती माँ है वो धीरे धीरे धीरे धीरे बंजर होती जा रही है। तो आपकी जो कृषि पद्धति, क्या वो रासायनिक है या जैविक है या कैसी कृषि पद्धति है?
0: हमारे तो हमें ऋषि मुनियों की भूमि है और मैंने तो 2007 से ये प्राकृतिक खेती का शुरू कर दिया था। हम यहाँ पे हमारे घर पे गाय रखते हैं और पूरी गाय माता का गोबर और यूरिन यानी उसका जरण हम अलग रखते हैं और उसमें से हम, मैं तो किसान भाइयों को कहना चाहता हूँ कि अपनी जो भूमि है उसमें रासायनिक खाद लगा के उसमें से सब जो जमीन बिगाड़ दी है उसको अच्छी करने के लिए जो हमारी गाय माता है उसका गोबर और उसका यूरिन यानी जरण दोनों का उपयोग करके मैं एक एग्जांपल के रूप में आपको एक बताऊं कि सभी किसान भाइयों को अपनी जो गाय है उसका 10 किलो गोबर लेना है, 10 लीटर जरण लेना है, उसमें 2 किलो गुड़ डालना है, उसमें 2 किलो बेसन यानी चना है या मूंग है, माठ है, अड़द है, उसका आटा डालना है और 200 लीटर पानी लेना है इसमें, और अपने पास में जो कोई खिजड़ा है या कोई बरगद का पेड़ है या कोई पीपल का पेड़ है उसके नीचे से 500 ग्राम उसकी नीचे से माटी लेना है, वो सब एकत्रित करके छांव में प्लास्टिक के ड्रम में रखना है, एक हफ्ता तक रखना है, और फिर वो अपने जमीन में पूरी जमीन में जितना जितना तक आ सके उतने तक पानी के साथ में भी दे सकते हैं या पौधे के मूल में भी दे सकते हैं। तो उसकी वजह से अपना पौधा है वो एकदम हरा हरा हो जाएगा, उसके ऊपर जो फ्रूट आएगा या अपने बाजरी है या कुछ भी आप करो उसी में रासायनिक खाद के अलावा ये कर सकते हैं। रासायनिक खाद बिल्कुल नहीं डालना है और इसमें से बहुत ज्यादा बैक्टीरिया बाहर आ जाएगा और ये सब अपने किसान का मित्र है। मैं एक आपको बात बताऊं कि अपने गाय का जो घन बोलते थे जो नंद बाबा के वहां पे जो गाय लेके जाते थे किशन जी, वैसे ही अपने गांव से गाय निकलती है। तो आपको मैं एक बताऊं कि जो जो जीव है गोबर खाने वाले वो सब नीचे चले गए, लेकिन गाय जब उसका पोटा करती है तो आप देखेंगे सुबह में, रात को उसने पोटा किया है और सुबह में आप देखेंगे उसको हटा के तो इस जमीन में 10-12 छिद्र मिलेंगे। तो वो क्या करते हैं, वो उसके गाय का पोटे की सुगंध लेके वो ऊपर आते हैं उसको खाने के लिए, तो उससे छिद्र हो जाता है। तो वो ऐसी तरह से वो बैक्टीरिया जो है वो जमीन के ऊपर आ जाते हैं और वो किसानों का मित्र है, जो बैक्टीरिया है वो किसानों का मित्र है, वो गाय के गोबर से ही हो सकता है, ये रासायनिक खाद से वो नीचे चले जाते हैं और पूरा एक रासायनिक खाद से जमीन के 1 फीट के नीचे पूरा पड़ बन गया है, एक पत्थर जैसी जमीन हो गई है, तो वो बहुत जमीन बेकार हो गई है। इसमें यही एक जीवामृत डालने के गाय का गोबर से ही ये अच्छा होगा और उसमें कोई खर्चा नहीं लगता है। तो किसानों के, हर किसानों को मैं सभी को बोलता हूँ कि आप अपने घर में गाय रखिए और गाय का गोबर और बलद रखिए, बलद का गोबर भी ऐसे ही काम करता है। सभी किसान भाइयों को उसका कोई खर्च नहीं होगा और गाय और बलद जो अपने किसान उनके मित्र है वो सभी पाल सकेंगे, तो अपनी गाय भी बचेगी, गाय बचेगी तो अपना देश बचेगा और किसान बचेगा।
1: किसान को तो अन्नदाता भी कहा गया है और मैं समझता हूँ कि अन्नदाता को ही पहले ये समझना होगा कि मैं अन्नदाता हूँ और मेरे द्वारा लोगों तक अन्न पहुँच रहा है, तो मुझे वही अन्न उगाना है जिस अन्न से मेरा देश सशक्त बने, देश के लोग सात्विक बने। तो इसलिए गिनाराम जी आपको तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसी बातों बातों में हमारे किसान भाइयों को, हमारे श्रोताओं को इतना सुंदर आपने एक सहज विधि बता दी जिसके द्वारा पथरीली जमीन को या जो हमारे मित्र कीटक होते हैं उनको वापस लाने में आप कैसे मदद कर सकते हैं, आपने ये विधि बताई, इसके लिए बहुत बहुत एक्स्ट्रा धन्यवाद।
0: थैंक यू, धन्यवाद।
1: मुझे आपको अभी आपके साथ एक गेम खेलना है। मैं आपको एक सवाल पूछूंगा और उस सवाल का जवाब आपको एक शब्द में देना है।
0: जी,
1: तो ये रैपिड फायर राउंड है। मैं आपसे फटाफट सवाल पूछूंगा और आपको जो पहला जवाब आता है बुद्धि में आपको वही बताना है। ठीक है?
0: ठीक है।
1: तो सबसे पहला सवाल है मेरा आपसे कि आपने अनार ही क्यों चुना?
0: क्योंकि उसी से पानी की बचत होती है और किसान का भला होता है।
1: वेरी नाइस। मुझे लगा आप कहेंगे एक अनार 100 बीमार, तो मैं 100 बीमार को ठीक कर सकता हूँ, इसलिए शायद अनार चुना। जी, तो पानी की बचत भी होती है और आमदनी भी बहुत अच्छी होती है।
0: जी।
1: दूसरा सवाल है, श्रम क्या है?
0: श्रम एक ऐसा परिबल है जो वो जो श्रम करता है वो कभी पीछे नहीं रहता।
1: संघर्ष क्या है?
0: संघर्ष एक ऐसी वस्तु है जो व्यक्ति को, जो किसान को या कोई भी व्यक्ति को, उसको आगे जाने में मदद करता है।
1: आपके लिए शांति क्या है?
0: मेरे लिए शांति यही है कि बस सभी का अच्छा हो, सभी का कल्याण हो और सभी के ऊपर भगवान की दया हो, ये शांति।
1: अब थोड़ा सा मुश्किल सवाल, भारत क्या है?
0: भारत एक एक युग पुरुष है। भारत एक ऋषि मुनियों की भूमि है। भारत एक दुनिया से सबसे अलग विश्व गुरु, सभी को साथ में लेके चलने वाला एक युग पुरुष है।
1: और आखिरी सवाल, नहीं आखिरी नहीं, एक और सवाल, कृषि क्या है?
0: कृषि एक ऐसी चीज है कि जो करने से पूरे दुनिया को खाना मिलता है, जो सभी को शांति मिलती है।
1: और लास्ट सवाल, गेनाराम कौन है या क्या है?
0: गेनाराम तो कुछ नहीं है, एक किसान है और एक मित्र है सभी लोगों का, कि जिसको एक गेनाराम ऐसा व्यक्ति है जो गरीब हो या पेशेदार हो लेकिन सबसे मदद करने वाली व्यक्ति।
1: बहुत बहुत धन्यवाद गेनाराम जी, आपने इतने सुंदर शब्दों में खुद को विश्वामित्र समझाया, जो सारे विश्व का मित्र है, जो अन्नदाता है, वही देश का गौरव है और यशस्वी भारत को यशस्वी बनाने में वही कदम से कदम मिला के चल रहा है और लोगों को आगे बढ़ाने में भी मदद कर रहे हैं। तो ऐसे हमारे विश्वामित्र गेनाराम भाई जी, आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत और धन्यवाद हमारे स्टूडियो में हमसे जुड़ने के लिए।
0: बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद।
2: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जब तक हम चाहिए चाहिए करते हैं तब तक हम औरों पे डिपेंडेंट हैं। अब हमें समझ में आ गया कि हम खुद भरपूर हैं, हमें उसका सिर्फ ध्यान रखना है। जैसे ये कप है, अब अगर मुझे लगे कि ये जो मेरा कप है ये खाली है, तो आई विल कीप टेलिंग यू कि इस कप को भरिए। तो आई एम डिपेंडेंट, जब आप भरेंगे तब, और अगर आप भर पाए, और अगर आपके पास है उसको भरने के लिए, यू नो यू हैव टू हैव दैट लव टू गिव इट टू मी, नहीं तो आई कैन कीप वेटिंग टिल द एंड ऑफ माई लाइफ फॉर पीपल टू फिल माई कप, इट विल नेवर गेट फिल्ड। एंड राजयोग से हमने ये रियलाइज किया कि मेरा जो कप है ये ऑलरेडी भरा हुआ है, मैं हूं ही प्रेम स्वरूप। अब मुझे सिर्फ ध्यान रखना है कि इसको बहुत संभाल के चलना है, कि आपका कोई शब्द, कोई और परिस्थिति मुझे उस व्यर्थ चिंतन की तरफ ना ले जाए जिससे मेरी खुशी गायब हो। हम ये वर्ड भी ये यूज करते हैं कि मेरी खुशी को वो छीन गई, मतलब वो मेरे पास ऑलरेडी थी। उतना ध्यान हमें रखना है कि इस भरे हुए कप को अंदर भरा हुआ ही रहने देना है। जब तक उसको खाली समझेंगे मांगते रहेंगे, एंड दैट जर्नी जस्ट गोज ऑन लाइक दैट।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: उड़ेरी आवाज 107.8 FM खुश रहो खुशियां बांटो।
1: रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो खुशियां बांटो। नमस्कार रेडियो श्रोतागण, आपके पसंदीदा रेडियो स्टेशन रेडियो पुनेरी आवाज पर प्रस्तुत है ज्ञान चिंतन, एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको ज्ञान और सोच के नए आयामों से रूबरू कराएगा। ज्ञान चिंतन,
2: नमस्ते भाई और बहनों, मेरा नाम मेघा है। मैं आपके सामने आज एक चर्चात्मक विषय लेके आ रही हूँ, वो है होम फूड। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड्स बेस्ट फूड इज द होम फूड, घर का खाना। घर का खाना हम सबको पसंद है, फिर भी हम क्यों जाते हैं बाहर खाने के लिए? इसका आंसर सिंपल है कि आजकल के लाइफस्टाइल के हिसाब से आजकल की जो न्यू जनरेशन है वर्किंग क्लास वाले, उनको लगता है चलो कितना हम बनाए घर पे, चलो लेट्स चिल आउट, इट्स फ्राइडे नाइट, इट्स सैटरडे नाउ, तो बाहर जाते, थोड़ा फ्रेंड्स के साथ मिल जुलते, बाहरी खाना खा के आते, आराम होके आते। बट इट इज नॉट द एक्चुअल रिलैक्सिंग देर। वो हमारे हेल्थ को क्या इम्पैक्ट कर रहा है, इसके ऊपर सोचना चाहिए। पहले जमाने में जो हमारे ओल्ड एज की दादी माँ थे या फिर हमारे एंसेस्टर थे, वो कभी भी होटलिज्म नहीं किया, इसीलिए उनका हेल्थ देखिए, हमको कंपेयर किया तो दे आर मच मोर हेल्थियर देन अस, दे हैव गुड स्टेमिना देन अस। मैं बाहर खाने के खिलाफ नहीं हूँ, द ओनली द थिंग इज व्हाट इज गुड और व्हाट इज रॉन्ग वी हैव टू अंडरस्टैंड। वहाँ पे दो चीज होती है, एक तो वाइब्रेशन के तौर पे ओनर को अंदर से रहता है कि बहुत लोग आए मेरे पास और मैं पैसा कमाऊ और इनको फूड सर्व करू, अंदर जो शेफ खाना बना रहे उनको रहता है कि व्हाट इज द नेक्स्ट ऑर्डर, फटाफट कंप्लीट करो, इसके बाद क्या ऑर्डर। तो उसमें भी क्या है, उन लोग बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स यूज करते हैं कि बहुत दिनों से वो स्टोर किया रहता है, ग्रेवीज रहने दीजिए, कोई भी और चीज फ्रोजन रहती है तो उसको ही फटाफट वो तल के या फिर बना के दे देते, तो विच इंक्रीजेस द फैट इनसाइड अस। वही हम जब घर पे बनाते हैं फ्रेशली, एवरीथिंग वी डू फ्रेश एंड वी कुक इट, तो उससे हेल्थ को बहुत बेनिफिट मिलता है। आई एम नॉट सेइंग लाइक वी शुड बी डाइट कॉन्शियस कि मैं ए नहीं खाऊंगी, मैं ओ नहीं खाऊंगी। मेरे हिसाब से कुछ भी खाइए, घर में बना के खाइए, देन इट विल बी द हेल्थीएस्ट वन। हमने देखा होगा लॉकडाउन में हम खुद अपने घर का सब काम कर रहे, घर का खाना खुद बना रहे, खा रहे, एट दैट टाइम वी यूज टू फील लाइक वेरी लाइट एंड फील गुड। तो इससे क्या होता है, हम लाइट भी फील करते हैं, गुड भी फील करते हैं, एंड वेट लॉस के लिए थोड़ा बहुत एक्सरसाइजेस, वॉकिंग कर दिया तो बस। लाइक कभी कभी आपको लगता है ये तो आप बोल रहे सही, लेकिन इसको हम फॉलो करने में कितना मुश्किल होता है। तो आपको लगता है कभी बोर हो रहे, आज टायर्ड फील हो रहे, तो यू कैन हैव अ फ्रूट्स, आप फ्रूट्स खा सकते हैं, फ्रूट सलाड बनाए, सारा फ्रूट्स कट करके खा लीजिए, विच इज यू फील वेरी लाइट मेंटली एज वेल एज फिजिकली। नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपको सुबह आराम से भूख लगेगी। दिस इज वॉट आई फील कि घर का खाना इज द बेस्ट खाना। थैंक यू सो मच।
1: आशा करते हैं कि आज की ज्ञान चिंतन ने आपके मन में नई सोच और नए विचारों को जगा दिया होगा। अगले ज्ञान चिंतन में हम आपसे फिर जुड़ेंगे, तब तक बने रहें रेडियो पुनेरी आवाज पर, खुश रहो खुशियां बांटो।
3: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
4: जैसे सरकार ने नियम बनाया कि टीचर्स स्टूडेंट्स पर हाथ नहीं उठा सकते, पहले उठा देते थे ऐसे ही, थोड़ा सा रूलर मारा, किसी ने चौक मारा, किसी ने थोड़ा, फिर लॉ बन गया कि नॉट अलाउड, उस दिन के बाद बंद हो गया। तो हम लॉ सरकार क्यों बनाए, हम अपने लिए खुद के लिए लॉ बनाएंगे ना, कि मेरे लिए और जो मेरा एनवायरमेंट है वहां पे ये चीज कितनी हानिकारक है। हम एक दर्द का एनवायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं जहां हीलिंग होनी चाहिए। और फिर जब एक ने दूसरे को डांटा, दूसरे ने तीसरे को डांटा, तीसरे ने चौथे को डांटा, तो फिर पांचवे ने तो इरिटेट होके बात कर ही लेनी है।
3: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: आवाज सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले रेडिओ स्टेशन ऐकत रहा 107.8 FM। आनंदी रहा आणि आनंद लुटा।
1: वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मकुमारीज। वेलकम सिस्टर।
2: ओम शांति।
1: ओम शांति, आपका स्वागत है बीइंग ब्लिस में।
2: थैंक यू।
1: हमने पिछले कई एपिसोड्स में ये बात की कि एडवाइस देना लेना बाप बेटे को दे रहा है, मतलब पेरेंट्स चिल्ड्रन को दे रहे हैं, टीचर अपने स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, लेकिन एक मैंने लाइन पढ़ी जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं मैं।
2: श्योर।
1: नेवर बेस योर लाइफ डिसीशंस ऑन एडवाइस फ्रॉम पीपल हु डोंट हैव टू डील विद द रिजल्ट्स। यानी आप अपनी लाइफ के डिसीशंस, जो इम्पोर्टेंट डिसीशंस है लाइफ के, बहुत ही महत्वपूर्ण आप कोई चीज डिसाइड करना चाहते हो, तो नेवर बेस योर लाइफ डिसीशंस ऑन एडवाइस फ्रॉम पीपल हु डोंट हैव टू डील विद द रिजल्ट्स। वो तो एडवाइस देके हमको चला गया और भुगतना तो मुझे है रिजल्ट का।
2: राइट। तो मतलब जीवन के डिसीशंस जब लेने हैं तो कभी भी वो डिसीशन किसी और की एडवाइस पर बेस्ड डिसीशन नहीं होना चाहिए, एंड डेफिनेटली उन लोगों की एडवाइस पर बेस्ड नहीं जो आपके साथ उस रास्ते पे चलने नहीं वाले हैं। अब ये हम अगर जब सुनते हैं तो लगता है ऐसा कैसे हो सकता है। ऑब्वियसली हम एडवाइस लेते हैं, हम सारी उम्र तो एडवाइस ही लेते आए हैं, पेरेंट्स से, फ्रेंड्स से, संत महात्माओं से, बड़ों से, आसपास जो है उनसे, टीचर्स से, जैसे आपने कहा। और एडवाइस लेना तो अच्छी बात है,
1: जरूरी है,
2: जरूरी है, जो हमारे बड़े हैं उनके पास अनुभव है।
1: ये छोटी छोटी जगहों पे हिंदी में सिखाया भी गया है कि रास्ता पूछ कर जाओ।
2: हाँ।
1: चलो तो फिर गांव जल्दी पहुंचते हैं।
2: हाँ, स्वीट।
1: मतलब
2: हाँ।
1: लोगों से रास्ते पूछते जाओ, नहीं तो फिर गलत रास्ते पे जाओगे, फिर ढूंढते रह जाओगे।
2: बिल्कुल।
1: पर यहाँ बोलते हैं कि जिसको मंजिल का कुछ पता नहीं है, जो आपके साथ एंड में नहीं है रिजल्ट में,
2: इट्स नॉट मंजिल का पता नहीं है, उस रास्ते किसको चलना है, जिस रास्ते जिसको चलना है उसको ही वो रास्ता चूज करना पड़ेगा। चलना आपने है, मैंने नहीं चलना है उस रास्ते। वो परिस्थिति आपकी है, सामना आपको करना है, तो फिर डिसीशन भी किसको लेना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा। क्यों? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज के समय में हम सब की, मेजोरिटी की जो निर्णय शक्ति है वो थोड़ी सी कमजोर है। यू नो, हम डिसीशन लेने से पहले अब थोड़ा सा घबराते हैं। उसमें भी रीजन ये है क्योंकि सिचुएशंस अनसर्टेन हो गई है, जितनी अनसर्टेनिटी बढ़ती जाएगी तो डिसीशंस लेने में थोड़ा सा डर आएगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि मेरे डिसीशन का आउटकम क्या हो सकता है, क्योंकि टाइम्स आर अनसर्टेन। जब सर्टेनिटी थी तो डिसीशन लेना इजी था, क्योंकि इट वॉज ये डिसीशन लेंगे तो ऐसे ऐसे होगा, ये डिसीशन लेंगे तो ऐसे होगा।
1: बड़ी बड़ी रिस्क भी तो नहीं थी ना पहले,
2: वही अनसर्टेनिटी ना, रिस्क मतलब अनसर्टेनिटी बहुत बढ़ गई है ना। अब ये नेसेसरी नहीं है कि जो सोच के मैं डिसीशन आज लूं मेरा आउटकम वैसा होगा जो आज मैं सोचूं, तो ये अनसर्टेनिटी है। अब इसको हमने किस तरह से समझना है, लेट्स से बहुत सारे लोग हमारे पास भी आते हैं, सेंटर्स पर आते हैं, अपनी प्रॉब्लम लेकर आते हैं।

0: चाहिए. नाउ दे वॉन्ट एन आंसर.
1: आंसर भी कैसा, मेरे मन की पसंद का आंसर
0: नहीं, बट आंसर चाहिए.
1: लेकिन आंसर तो मैं यूजुअली मैं जब जाता हूँ किसी डॉक्टर के पास, मैं पूछता हूँ कि भाई इज अल्कोहल गुड और बैड फॉर मी, तो मैं वेट करता हूँ कि ये बोले नहीं थोड़ा एक दो ले लो, कुछ नहीं होता.
0: ट्रू. एक केस में ये कि हम वो आंसर चाहेंगे ताकि जो आंसर मैंने सोचा है उसको कोई और बाहर रिकन्फर्म कर दे तो मुझे करना वो इजी हो जाएगा. लेकिन एक है कि मुझे मुझसे नहीं हो रहा, मेरे से डिसीजन नहीं लिया जा रहा कि कौन सी चीज मेरे लिए राइट है. मैं ये सोचती हूँ कि ये राइट है, फिर थोड़ी देर के बाद मेरा माइंड कहता है नहीं ये भी हो सकता है. जैसे करियर का डिसीजन, जॉब का डिसीजन, बिजनेस करूं या जॉब करूं, बिजनेस करूं किसके साथ करूं, इनके साथ करूं या इनके साथ करूं, ये वाला बिजनेस करूं या ये. रिश्तों में मेरा बच्चा यहाँ शादी करना चाहता है लेकिन मेरे हस्बैंड मान नहीं रहे हैं, क्या करूं, मैं अपने बेटे को सपोर्ट करूं या हस्बैंड को सपोर्ट करूं. ऐसे सारा दिन में बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ रहे हैं जिसके लिए हम चलते चलते थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं. अब जब ये लोग हमारे पास कोई आए ऐसा पूछने के लिए कि शुड आई स्टे विद माई हस्बैंड और शुड आई मूव अवे, सो वी टेल देम बी सॉरी ये डिसीजन आपको लेना है. कि नहीं नहीं नहीं सिस्टर प्लीज आई एम वेरी कंफ्यूज्ड, आप प्लीज बताओ कि मेरे लिए क्या ठीक होगा, आपको क्या लगता है. एंड यू नो दिल से आपको ज्यादा पता है, आप यू नो इस बारे में आपको ज्यादा मालूम है. अच्छा फिर ये भी कहेंगे आपके पास तो कितने लोग आते हैं ना अपनी प्रॉब्लम लेकर, तो आपको पता होगा कौन सा ऑप्शन ज्यादा अच्छा वर्क करेगा, तो आप प्लीज बताइए. अब ये बहुत रिस्की है कि जब कोई हमारे पास आए ऐसा पूछने के लिए, कोई भी, इवन फैमिली में फ्रेंड्स में, हम बहुत जल्दी उस बात के प्रभाव में आकर उन्हें डिसीजन देने के लिए रेडी हो जाते. मतलब क्योंकि इट गिव्स अ सेंस ऑफ पावर. अगर कोई आपके पास आए ना ये पूछने के लिए कि आपको क्या लगता है मैं ये करूं या ये करूं, हमें ये बहुत अच्छी फीलिंग आती है.
1: हम लोगों को फिर मतलब करना क्या चाहिए, कोई एडवाइस
0: मांग रहे हैं तो? ये है कि हमें, क्योंकि जिनसे मांगी जाती है एडवाइस मांगना और डिसीजन पूछना दो बातों में बहुत फर्क है. एडवाइस लेना और डिसीजन लेना, और जो दे रहा है उसको भी बहुत क्लियर होना चाहिए कि वो राय दे रहा है या डिसीजन सुना रहा है, ये बहुत क्लियर होना चाहिए. लेकिन क्योंकि आज हमें यू नो वी हैव दिस नेचर कि हमें कंट्रोल करना है, पावरफुल फील होना है, तो हम बहुत पावरफुल फील करते हैं कि अगर कोई आकर अपने जीवन का बहुत बड़ा डिसीजन हमारे से पूछ रहा है. बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, कभी भी किसी को डिसीजन नहीं सुनाना है. क्यों नहीं सुनाना है? जैसे इस लाइन ने हमें बहुत ब्यूटिफुली बताया, उस रास्ते उनको चलना है. इवन अगर आपका डिसीजन एक्यूरेट है, एक्यूरेट है बिल्कुल डिसीजन, लेकिन वो एक्यूरेट आपके लिए है, आपके संस्कार, आपकी कैपेसिटी, आपकी डिटर्मिनेशन, आपकी विल पावर के अनुसार आप वो डिसीजन लेंगे. लेकिन जो चलने वाला है उस रास्ते, जिसको आप डिसीजन सुना रहे हैं, उसकी कैपेसिटी, उसके संस्कार, उसकी डिटर्मिनेशन, दृढ़ता, शक्ति, वो उसकी अपनी है. तो आपका एक्यूरेट डिसीजन भी एक्यूरेट है, लेकिन वो किसके लिए एक्यूरेट है? वो आपके लिए एक्यूरेट है, उनके लिए एक्यूरेट नहीं है. ये जो कर थिन लाइन समझ में आए, ये नहीं है कि हमारी राय सही नहीं होती, हमारी राय सही होती है, एक्यूरेट होती है, लेकिन वो किसके लिए एक्यूरेट होती है? क्योंकि हम अपने फिल्टर से वो राय देंगे ना, और मेरा फिल्टर किस चीज का होगा? मेरे संस्कारों का. जो एडवाइस देने वाले हैं या बताने वाले हैं, आपको ऐसा करना चाहिए, नहीं आपको ऐसा करना चाहिए, जैसे आपने भी कुछ एपिसोड्स पहले हमें बताया कि मेरे अंदर ये संस्कार था कि मैं दूसरे का कम सुन के सीधा बोल देता हूँ, आपको ये करो, आप ये करो, आपको ऐसा करना चाहिए. वी गिविंग डिसीशंस, हम डिसीशंस दे रहे हैं कि दूसरे, चाहे छोटी बात पे हो, चाहे छोटी बात पे हो, लेकिन आप जो बोल रहे हैं उनको करने के लिए वो 100% एक्यूरेट है, लेकिन वो आपके लिए 100% एक्यूरेट है. ये बहुत, मतलब बहुत डीप है, इसको समझना होगा कि हम कितना इजिली. इट्स लाइक सेइंग गो रन 1 किलोमीटर एंड कम. इफ यू टेल मी दैट गो वॉक दिस 1 किलोमीटर, आप 1 किलोमीटर पैदल चल के आइए, आप एक्यूरेट बात कर रहे हैं, हेल्थ के लिए अच्छा है, मैं अगर 1 किलोमीटर पैदल चल के आऊं तो मेरे लिए बहुत यूजफुल होगा,

0: तो आपने मुझे डिसीशन सुना दिया, आप जाइए 1 किलोमीटर चलकर आइए। ये डिसीशन आपके पर्सपेक्टिव से और आपकी फिजिकल कैपेसिटी के हिसाब से बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा पोटेंशियल, मेरी कैपेसिटी और मेरी हेल्थ अभी मुझे 100 मीटर भी चलने की परमिशन नहीं देती है। मेरी बॉडी में ताकत ही नहीं है अभी वो। और अगर मैं आपका डिसीशन लेकर चलना शुरू कर देती हूँ, आई विल कोलैप्स, मैं गिर जाऊंगी।
1: अगर मेरा बेटा फिल्म इंडस्ट्री के बारे में मुझसे कुछ पूछे, तो मेरा 30-35 साल का जो एक्सपीरियंस है 300-350 पिछले की, तो मैं दूंगा नहीं। कभी तो मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं करना चाहिए आपको ये, क्योंकि मैं समझता हूँ कि he doesn't know yet.
0: Right.
1: तो
0: आप एडवाइस देंगे ना, अनुभव आपका है, लेकिन वो सारे अनुभव को, हर परिस्थिति को आपने जैसा परसीव किया, आज आप उसको जैसा समझ रहे हैं, और जो डिसीशन आप ले रहे हैं वो किसके संस्कारों के थ्रू है?
1: मेरे।
0: लेट्स से अ सिंपल थिंग, चलो आपके यही वाले एक्सपीरियंस को लेते हैं। सपोज आपके अंदर विल पावर बहुत है, ठीक है, ट्रेमेंडस विल पावर। अभी इतनी विल पावर सब में नहीं होती है, ठीक। तो आपका एक संस्कार, एक क्वालिटी जो बहुत स्ट्रांग है, अब इतनी विल पावर आपके पास है, उस कारण से आपने अपना पूरा करियर अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे आप चले। आपने कहा मैं ऐसा ही करूंगा, मैं इतने बजे ही शूट करूंगा, मैं इतने बजे नहीं करूंगा, आपको मुझे लेना है आप लीजिए, नहीं लेना है आई एम फाइन। सब नहीं कर सकते ये।
1: आज सुबह भी मैंने अपने क्रू से बात की थी, कैमरा डिपार्टमेंट से। मैंने कहा इफ यू वांट टू स्टिक टू योर प्रिंसिपल्स, तो फिर जैसे मैं 1 साल घर बैठा, मुझे किसी ने काम नहीं दिया, फिर आपको वो भी करना पड़ेगा।
0: विल पावर अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पर चलने की, फिर 1 साल अगर घर बैठना पड़ा, उस 1 साल में अपने मोटिवेशन लेवल को मेंटेन करके रखा। ऐसा नहीं कि 1 साल काम नहीं मिला तो मैं,
1: कई सारी हॉबीज हैं, अपनी हॉबीज से बिजी रहे,
0: लेकिन वो आपकी चॉइस ना। अगर किसी और को 1 साल घर बैठना पड़ जाए तो उदास हो जाए, वो फियर क्रिएट कर दे कि अब पता नहीं मेरे पास काम आएगा कि नहीं आएगा।
1: जिंदगी बर्बाद कर दी इन्होंने।
0: सो मच, नहीं किसी और की नहीं, आपका ही। आप देखो वो 1 साल अगर आप वेट करते हैं, आपके अंदर वो पावर है। अब डिसीशन आपने लिया था ना कि मैं ये नेगेटिव रोल नहीं करूंगा, क्योंकि डिसीशन आपका था, तो उस डिसीशन के कॉन्सिक्वेंसेस जो आए सारे, कि आपके पास सपोज 1 साल काम नहीं आया,
1: लोग तो बोलने लगे अच्छा था बेचारा,
0: बेचारा मतलब राइट ऑफ करना शुरू कर दिया,
1: नहीं अच्छा था बेचारा, पागल हो गया है।
0: हाँ।
1: करियर को पेपर कुल्हाड़ी मार दी, मेरी वाइफ को जाके बोला।
0: राइट, अब डिसीशन लिया कि मैं इन प्रिंसिपल्स पे काम करूंगा। पहली बात तो वो डिसीशन लेने के लिए विल पावर चाहिए। उसके बाद जो पब्लिक ओपिनियन आया उसके ऊपर, उसको अपने ऊपर इफेक्ट होने
1: नहीं
0: दिया। तीसरा, जो काम नहीं मिला 1 साल उस वजह से, उसको भी अपने एंथुजियाज्म पर हावी नहीं होने दिया। कहा ओके आई विल वेट, आएगा काम, लेकिन मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर। इसका मतलब विल पावर, सेल्फ रिस्पेक्ट कि दूसरे मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, मैं उससे इफेक्ट नहीं होऊंगा। तीसरा, एंथुजियाज्म, कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन। ये आपके पास सपोज 100 में से 90 मार्क्स थे आपके पास इन सारे सब्जेक्ट्स के अंदर, 90 मार्क्स आपके पास थे विल पावर में, सेल्फ रिस्पेक्ट में और सेल्फ कॉन्फिडेंस में, और इसीलिए वो डिसीशन आपके लिए 100% एक्यूरेट है। अब आपका 35 इयर्स ऑफ करियर, आपने ये डिसीशंस इस तरह से लिए एंड वो आपके लिए राइट प्रूफ हो गए। अब आपने कहा आज मेरा बच्चा अगर मुझसे एडवाइस मांगेगा, तो मेरे पास 35 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो मैं उसको एडवाइस नहीं दूंगा उस बेसिस पर। 35 इयर्स का आपका एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन योर 90 मार्क्स इन ऑल दीज क्वालिटीज, तो आपको जो एडवाइस दे रहे हैं, आपके 90 नंबर थे विल पावर, सेल्फ कॉन्फिडेंस और डिटर्मिनेशन में। पहले ये चेक करना पड़ेगा, अगर आप सेम एडवाइस बच्चे को दे दी कि कुछ नहीं होता, डोंट सकम्ब टू प्रेशर, बोलने दो लोगों को जो बोल रहे हैं, तुम अपना करियर अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे चलाओ, तुम्हें झुकने की जरूरत नहीं है, तुम्हें रोल के लिए भी कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है, मैंने किया, देखो मुझे आज मैं कहां पर हूं। लेकिन जो बहुत बड़ा फैक्टर है, आपके 90 आउट ऑफ 100 थे उन 3 क्वालिटीज में, क्या बच्चे के भी 90 out of 100 होंगे इन तीन क्वालिटीज में? हो सकता है किसी में उसके पास 90 से ज्यादा है, क्योंकि उसके अपने संस्कार और क्वालिटीज होंगे, और किसी में उसके पास उससे कम है. हो सकता है उसके पास विल पावर उतनी है कि मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं. एनीबडी, वी आर सेइंग एनीबडी, फ्रेंड हो, रिलेटिव हो, बेटा हो, उसके पास विल पावर है कि मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, लेकिन उसके पास उतने सेल्फ एस्टीम नहीं है कि जब सारी दुनिया मेरे को बोलेगी कि मैंने गलत लिया तब मैं तो भी स्ट्रांग रहूंगा. हो सकता है वो वैल्यू आपकी जितनी ना हो, आपके पास 90 हो, उसके पास 50 हो. हो सकता है आप एक साल बिना काम के रहे लेकिन आपका उमंग उत्साह उतना ही बना रहा. हो सकता है उसका उमंग उत्साह उतना ना बना रहे. तो फिर आपका दिया हुआ डिसीशन उसके लिए राइट नहीं होगा ना. आपके लिए राइट था, आपके लिए 110% राइट था. आज आप जो राय दे रहे हैं वो भी 110% राइट है, लेकिन लेकिन हम, दैट्स व्हाई इट सेज डोंट टेक द डिसीशन ऑफ दोज पीपल हु आर नॉट गोइंग टू वॉक ऑन दैट रोड. आप, अच्छा आपने जब 35 इयर्स में वो किया, परिस्थितियां अलग थी, समय अलग था, लोग अलग थे जिनके साथ आप डील कर रहे हैं. आज परिस्थितियां अलग है, इंडस्ट्री बदल जाती है, लोग अलग है जिनके साथ वो वर्क कर रहा है, और उसके अपने संस्कार अलग है. और एक बहुत बड़ा फैक्टर, आपके पास्ट कार्मिक अकाउंट्स अलग है और उसके पास्ट कार्मिक अकाउंट्स अलग हैं. जो डिसीशन आपकी फेवर में वर्क कर गया वो नॉट नेसेसरी होगा कि किसी और की भी फेवर में वर्क करेगा.
1: उल्टा भी हो सकता है ना, एक साल आप घर बैठे रहो, लोग राइट ऑफ कर दे, भूल जाएं आपको.
0: यस,
1: फिर
0: दिस इज व्हाट, उल्टा भी हो सकता है ना, कंप्लीटली बैकफायर कर सकता है,
1: लोग भूल ही गए, काम ही नहीं करना
0: चाहता. हो सकता है, अच्छा हो सकता है और भी कई गुना ज्यादा अच्छा हो जाए कुछ, वी डोंट नो. हम ये नहीं कह रहे कि हमारा डिसीशन हमेशा दूसरे के लिए गलत प्रूफ होगा. इम्पोर्टेंट है हम डिसीशन अपने संस्कारों की कैपेसिटी से देते हैं, लेकिन जो सामना करना है जिसने उस परिस्थिति का, वो आपसे डिसीशन तो ले लेगा, आपसे ब्लेसिंग्स भी ले लेगा, लेकिन आपसे आपके संस्कार तो नहीं ले पाएगा ना.
1: बट उस डिसीशन का जो रिजल्ट है, जो भुगतना पड़ता है, वो तो मुझे ही करना पड़ेगा ना, जिसने डिसीशन ली.
0: right.
1: भले मैंने 10 आदमी से पूछ के ली.
0: यस, दिस इज इट. भले मैंने 10 आदमियों से पूछ के ली, लेकिन मेरे को डिसीशन लेते समय ये क्लैरिटी होनी पड़ेगी
1: कि मुझे भुगतना है.
0: भुगतना नहीं,
1: गुड और बैड,
0: गुड और बैड
1: रिजल्ट में तो आप नहीं आएंगे ना मेरे.
0: एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, मुझे इस डिसीशन को इम्प्लीमेंट करना है. ये डिसीशन मेरा है. नेवर एवर कैन बी से मैं उनके लिए ये कर रहा हूँ, उन्होंने बोला इसलिए मैं कर रहा हूँ.
1: वाल्मीकि जी की स्टोरीज में भी बचपन में हम पढ़ते थे ये कि भाई जो भी आप कर रहे हो ठीक है, लेकिन इसका जो भुगतान, इसका जो फल है, गुड और बैड, हम उसके साथ भागीदार
0: आपके साथ नहीं आ सकते. राइट, अब इसको हर स्टेप पर देख सकते हैं. जैसे मैंने आपको शुरू में भी शेयर किया कि सपोज कोई आकर हमसे पूछे कि मैं हस्बैंड ऐसे ऐसे हैं, मैं उनके साथ रहूं या अलग हो जाऊं. अब हमने क्या किया, बात सुनी, पर्सपेक्टिव सुना. पहली बात तो एक का पर्सपेक्टिव सुना, वो एक और क्रिटिकल पार्ट कि वाइफ का तो सुन लिया, हस्बैंड का पर्सपेक्टिव तो हमें पता ही नहीं है. हस्बैंड एक्चुअली क्या है, कैसा है, हमें नहीं मालूम. हम तो वो सुन रहे हैं कहानी जो एक तरफ से सुनाई जा रही है. अब सपोज वाइफ के अंदर 80% एडजस्टमेंट पावर है, राइट? मेरे से डिसीशन लेने आई, मेरे पास 60% एडजस्टमेंट पावर है, तो माय डिसीशन वुड बी, आपको ऐसे व्यक्ति के साथ तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, आपको तो बिल्कुल अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि मेरी एडजस्टमेंट पावर, टॉलरेंस पावर कितनी है, 60 है, लेकिन उनकी टॉलरेंस पावर 80 है. अगर वो रहती तो वो कर लेती.
1: यही बात मदर एंड डॉटर, डॉटर अगर आके बोले कि मेरा हस्बैंड ये कर रहे, तो बस देखो मैं भी तो बिना हस्बैंड की जी रही हूँ, पूरी लाइफ जीती हूँ, बिल्कुल झुकना नहीं, अब अटल रहो अपने पॉइंट पर.
0: दिस इज इट, दिस इज व्हाई इट्स वेरी क्रिटिकल.
1: बाद में उसका भी झगड़ा हो जाएगा, मेरी माँ ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी.
0: बिल्कुल, और ये होता है, ये बिल्कुल होता है. अब अगर उस वो बेटी या ये लेडी जो पूछने आई, उसके पास सहन शक्ति थी, उसके पास एडजस्ट करने की शक्ति थी, सब कुछ था उसके पास, रिसोर्सेस था, सिर्फ एक छोटी सी बात की, डिसीशन किसी और से पूछ लिया, अपने रिसोर्सेस नहीं इवैल्यूएट नहीं किए कि मेरे पास कितने रिसोर्सेस हैं। तो अगर मेरी टॉलरेंस पावर 60 है लेकिन सामने वाले की 80 है, तो भी मेरा गलत हो गया डिसीशन। मैंने उनको कहा आप अलग हो जाओ, ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहिए, उनका नुकसान हो गया। अब अगर उनकी टॉलरेंस पावर 80 है लेकिन मेरी 100 है, उनसे ज्यादा है कई गुना, मैंने कहा बिल्कुल रहना चाहिए उनके साथ, आप कैसे अलग होने का सोच रहे हो। लेकिन उसके अंदर है नहीं शक्ति एडजस्ट करने की वो उतनी। अगर ये रहे उनके साथ और एडजस्ट करने की कोशिश करे तो अंदर घुट जाएगी, घुट कर डिप्रेशन में चले जाएगी। तो मेरा ये डिसीशन कि आपको अलग नहीं होना चाहिए, साथ में रहना चाहिए, तो भी गलत हो गया।
1: तो कोई मुझसे अगर डिसीशन लेने आए, मेरी बेटी या बेटा, और इम्पोर्टेंट थिंग्स इन देयर लाइफ, जो आप झगड़े की बात कर रहे हैं या किसी फिल्म करियर की बात कर रहे हैं, तो मैं किस बेसिस पे दूं? मैं यही बोल सकता हूँ बेटा आपको तो सोचना चाहिए ना, आप बताओ।
0: हम ये
1: कहते हैं न्यूट्रल हो जाऊं,
0: नहीं, हम कैसे शेयर करेंगे किसी के साथ? एक, ये सिचुएशन आपकी है, आप बेस्ट इवैल्यूएट कर सकते हैं इस सिचुएशन को, क्यों आप परिस्थिति में हैं, हम परिस्थिति से बाहर हैं। जो सामने आपके व्यक्ति हैं वो भी सामना आप कर रहे हैं। मेरे लिए बहुत इजी है यहाँ बैठकर बोलना कि नहीं आप करो ना उनके साथ, अच्छा क्या प्रॉब्लम है, लेकिन सामना आप कर रहे हो तो इवैल्यूएट आप बेस्ट कर सकते हो। अब जब हमें राय देनी है कि हम क्या करते, वी हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर विच सेज, अगर मैं आपकी जगह होता, वेरी क्लियर, आपको ऐसा करना है नहीं, अगर मैं आपकी जगह इस परिस्थिति में होता तो मैं ऐसा करता, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मैं होता तो मैं ऐसा करता, अगर आप ऐसा करेंगे तो ये कॉन्सिक्वेंसेज आ सकते हैं, अगर आप ये करेंगे तो ये कॉन्सिक्वेंसेज आपके सामने आ सकते हैं, नाउ यू चूज। एक फैसिलिटेटर, एक गाइड, एक पेरेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल ये प्ले कर सकता है कि डिटैच्ड होके सारी ऑप्शंस के प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस क्या आ सकते हैं ये सामने रख सकते हैं।
1: और अगले की सहन शक्ति भी तो देखनी है ना,
0: वो डिसाइड करेंगे, वो डिसीजन वो उनका होगा। हम प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस दे सकते हैं सिर्फ, कोई कहे इस रास्ते जाऊं या इस रास्ते जाऊं।
1: बट कभी कभी बच्चे बोलते हैं ठीक है देखी जाएगी, कॉन्सिक्वेंस होगा तो होगा।
0: हाँ,
1: मैं तो डिवोर्स करके ही रहूंगी,
0: तो डिसीजन उनका है, इट इज एब्सोल्युटली फाइन। सी वन थिंग वी हैव टू ऑलवेज रिमेम्बर, हम किसी के कार्मिक अकाउंट में, अब ये सिर्फ डिसीशंस नहीं होते, ये कार्मिक अकाउंट्स होते हैं एक्चुअली, उस आत्मा के साथ कार्मिक अकाउंट है। लेट्स से मेरा आपके साथ एक कार्मिक अकाउंट है, ऐसे ही एक और आत्मा का भी आपके साथ कार्मिक अकाउंट है, राइट? अब ये पास्ट के कैरी फॉरवर्ड कार्मिक अकाउंट्स हैं। सपोज मेरा आपके साथ पास्ट कार्मिक अकाउंट बहुत अच्छा था, तो मेरा अभी प्रेजेंट भी इंटरेक्शन कैसा होगा? बहुत अच्छा होगा। लेकिन किसी और आत्मा का आपके साथ पास्ट कार्मिक अकाउंट सपोज थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग था, तो उसका प्रेजेंट भी आपके साथ कैसा होगा? कि टक्कर ही आएगी, बार बार संस्कार में टक्कर आएगी। अब अगर ये जो थर्ड है कि मेरे से राय लेने आए कि आपके साथ डील कैसे करना है या आपके साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, तो आई एम गोना से आपको क्या प्रॉब्लम है, इतने अच्छे, किस बात की आपको प्रॉब्लम आ रही है उनसे काम करने के लिए, इज अ वंडरफुल पर्सन, ऑफ कोर्स आपको उनके साथ काम करना चाहिए बेस्ड ऑन
1: माय आइडिया,
0: माय संस्कार्स एंड माय कार्मिक अकाउंट्स, माय कार्मिक अकाउंट।
1: फिर माँ जब बेटी की लाइफ में दखल देती है, तुम ये सब सुन के बर्दाश्त करके बैठी हो, तुम यहाँ ये भी करती हो, वहां भी ये भी करो, बोलो कि नौकर दे, बोलो ये करे, छोटी छोटी बात में जो डिस्टर्बेंस शुरू होता है।
0: yes.
1: अब मेरी बात में समझ में, तब से मैं सोच रहा था ये छोटी सी बात है, लेकिन आपने जो बोला कि छोटी सी लाइन भले छोटी है, बात बहुत डीप है।
0: कई बार ऑपोजिट भी होता है कि पेरेंट्स बोलते हैं नहीं तुम्हें रहना चाहिए वहाँ, ना आपको बनानी चाहिए, क्यों नहीं आप रह सकते हो, हमने आपकी शादी की, आपको जाकर वहाँ रहना है। कैपेसिटी नहीं इवैल्यूएट करते, बेटी की कैपेसिटी अगर नहीं इवैल्यूएट की और जब उसको जो सहयोग की जरूरत थी वो सहयोग नहीं दे पाए, तो भी नुकसान है,
1: बहुत डिफिकल्ट। अगर हमने बोल दिया कि वहीं रहना है, जीना है, मरना है, और वो वापस गई और सुसाइड कर ली, तो
0: दिस इज व्हाट ना, तो सहयोग नहीं
1: दिया, वो भी दुख है और रख

0: दिया
1: यस
0: और वो बोला कि अच्छा ठीक है मैं लेने नहीं आऊंगा, रखो अपने माँ बच्ची को। तो
1: राइट, हमारा रोल है पहले उनको उनकी कैपेसिटी दिखाना जो वो खुद अभी यूज नहीं कर रहे हैं। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है कि उनको उनके ही संस्कार की अवेयरनेस दिलाना। यू नो कभी कभी लेट्स से आई विल से नो आई कांट वॉक दैट मच, नहीं मेरे से ये नहीं हो पा रहा है, आप मुझे मोटिवेट करेंगे, आप मुझे मेरे ही संस्कारों से जागृत कराएंगे क्योंकि आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, आपको पता है मेरे पास वो संस्कार है लेकिन उस संस्कार को मैं इस टाइम यूज नहीं कर रही हूं। तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो होता है आसपास के लोगों का, स्पेशली व्हेन दे आर क्लोज पीपल, यू नो फैमिली फ्रेंड्स जो हमें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, उनका सबसे इम्पोर्टेंट रोल है हमें हमारे संस्कार की अवेयरनेस दिलाना कि तुम्हारे अंदर इतनी कैपेसिटी है, यूज दिस, आप ये टूल यूज करो, आप ये टूल यूज करो, आप ये टेक्निक यूज करो, अपने संस्कार की अवेयरनेस दिखाना। सेकेंड, कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में डिस्कस करना कि ये करेंगे ये हो सकता है, सेकेंड ये हो सकता है, थर्ड ये ऑप्शंस। नॉर्मली क्या होता है जो सिचुएशन में होता है ना वो ऑप्शंस नहीं एक्सप्लोर करता क्योंकि वो अपने आइडिया से अटैच्ड होता है। जो डिटैच्ड होगा वो बहुत सारे ऑप्शंस देख सकता है, जो अटैच्ड होता है वो कुछ नहीं देख सकता, उसको सिर्फ एक ही चीज दिखती है, नहीं मेरी नहीं बनती इनसे, नहीं मेरी नहीं बनती, मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, उसको सारी बाकी ऑप्शंस नहीं दिखाई देती।
0: ये अटैच्ड किससे है?
1: अपने हर्ट से, अपने आइडिया से। आप मुझे दर्द देते हैं जीवन में, ये मेरा आइडिया है, आई एम हर्ट, पहली बात तो मैं दर्द में हूँ तो मुझे कुछ भी और ऑप्शंस दिखाई ही नहीं देते।
0: रॉन्ग हो,
1: यस
0: यू आर अटैच्ड,
1: आई एम हर्ट ना, आई एम सो हर्ट राइट नाउ। जैसे कुछ लोग आते हैं हमारे पास, वो कहेंगे नहीं मेरी बनती इनके साथ, मैं सोच रही हूँ अलग हो जाए, या पेरेंट्स बोलते हैं हम सोच रहे हैं अब हमारा बच्चा इनसे अलग हो जाए, हम उनकी शादी कहीं और करा देंगे। वो एक चीज देख रहे हैं सिर्फ, अभी सिर्फ एक ही चीज देख रहे हैं कि इनसे नहीं बनती हम अलग हो जाते हैं। उनसे सिर्फ दो मिनट भी अगर बात की जाए कि हाँ इनसे क्यों नहीं बन रही, क्योंकि इनके और इनके संस्कार में ट्यूनिंग नहीं है, एडजस्टमेंट नहीं हो रही, लेकिन आपका बच्चा यही संस्कार लेकर नेक्स्ट रिश्ते में जाएगा ना, यही संस्कार लेकर जाएगा। अच्छा, दूसरा जिसके साथ आप सेकेंड टाइम रिश्ता जोड़ेंगे वो अपना बंडल ऑफ संस्कार लेकर आएगा, वो ये नहीं होंगे जो एग्जिस्टिंग स्पाउस के हैं, लेकिन वो कुछ और होंगे, डिफरेंट, अच्छे होंगे बुरे होंगे नहीं, डिफरेंट होंगे। फिर वो नए संस्कार के सेट के साथ अब फिर से एडजस्टमेंट पावर करना। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपका बच्चा भी एक पास्ट लेकर आ रहा है, जिनके साथ आप दूसरी शादी कराने जा रहे हैं वो भी एक पास्ट लेकर आ रहा है, तो पहले ही दोनों आत्माओं की शक्ति तो नॉर्मल से अपने कम
0: लो है।
1: दोनों कंपैरिजन करेंगे अपने पास्ट के साथ, दोनों अपना हर्ट लेकर आएंगे। अब इन दोनों की एडजस्टमेंट पावर पहले से कई गुना कम है, तो द प्रोबेबिलिटी फैक्टर कि अब ये कितना एक दूसरे के साथ मोल्ड कर पाएंगे ये तो पहले से कम होने वाली है। इतनी शक्ति नई एडजस्टमेंट में लगाने की बजाय,
0: हाँ इससे आधी शक्ति, उससे कम शक्ति पुरानी एडजस्टमेंट में लगा लें,
1: हो जाएगा।
0: तो सिस्टर मैं ये चाहूंगा कि इसे हम अगले एपिसोड में कंटिन्यू करें।
1: डेफिनेटली,
0: थैंक यू सो मच, वेरी इंटरेस्टिंग, थैंक यू, नमस्कार।
2: व्हेन वी टेक अ डिसीजन इट हैज टू बी अकॉर्डिंग टू आवर कैपेसिटी टू फेस द सिचुएशन। वी नीड टू टेक द डिसीजन विद फुल अवेयरनेस ऑफ आवर संस्कार्स which can make it easy or difficult to implement the decision. When we give decisions or ask others for decisions, it may go wrong. The one giving the decision is giving according to their sanskars, which may be completely different from the sanskars of the one implementing the decision. The right decision of the giver may be a failure for the one to whom it has been given. Do not take decisions for others. Be detached and see all the probable consequences of their decisions. Show them all the options possible and leave the decision to them. make others aware of their sanskars, which they are not using. Empower them to use their positive sanskars to face the situation. Then they will take the right decision.
3: गाण्यांच्या सुरात दडलेली संस्कारांची गोडी, पिढ्यानपिढ्या चालत असलेल्या परंपरेचा गंध आणि मनाला स्पर्श करणारी भावांची संगती, आणि हे सगळं ऐका फक्त आपल्या पुणेरी आवाज 107.8 FM वर. आनंदी रहा, आनंद लुटा.

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अभी कोई चाहे तो हमसे कुछ भी करवा सकता है, या हम खुद चूज करते हैं उठना है या उठना है, बैठना है, खड़े होना है, हाथ ऊपर करना है, नीचे करना है। ये शरीर हमारी मर्जी से चलता है या औरों की मर्जी से चलता है? हमारी मर्जी से चलता है। हमारे मूड आजकल किसकी मर्जी से चलते हैं? कोई हमसे प्यार से बात करे, हमें रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे, आगे रखे, हमसे पूछे हर चीज, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? और कोई हमसे नहीं प्यार से बात करे, रूडली बात करते, इरिटेट करे, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हमारा मूड, हमारी मन की स्थिति किसके कंट्रोल में है? किस किसके पास हमारी मन की स्थिति का कंट्रोल है आजकल?
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर खाबों का सफर। इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और आज हम लोग कुछ खास गाने लेकर आपके साथ जुड़ेंगे और आज के इस विशेष शो में जो गाने हम लोग चलाएंगे वो डी अक्षर से होगा, यानी दिल से। जी हाँ, दिल से गाने होंगे और आपके दिल तक पहुंचेंगे। और आज का ये कलेक्शन है गानों का वो विद्या चौधरी ने किया है। तो आइए, आप सभी की तरफ से विद्या का भी बहुत बहुत स्वागत है। और कहते हैं रिश्ते एहसास के होते हैं, अगर एहसास हो तो अजनबी अपने जैसे लगते हैं। कहते हैं कुछ मीठे पल याद आते हैं, पलकों पर आंसू छोड़ जाते हैं, कल कोई और मिल जाए तो हमें न भूल जाना, दोस्ती के रिश्ते जिंदगी भर काम आते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर खाबो खास सफर, मैं हूँ आपका हम सफर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत में विद्या से जानने की कोशिश करते हैं कौन सा एक गीत शुरुआत में आप सुनाने वाले हैं हमारे श्रोताओं को।
1: मेरे सभी दोस्तों, आपको मेरा यानी कि विद्या चौधरी का बहुत ही बड़ा प्यार भरा नमस्कार। हम आज जैसे कि आज फिर से डी अक्षर के ऊपर हम गाने सुनेंगे जो कि 50s और 60s के सॉन्ग है। तो आज हम सुनेंगे डी के ऊपर से कुछ चुनिंदा सॉन्ग जो स्पेशली है दिल के ऊपर। जी हाँ, दिल के ऊपर। क्यों सर, बहुत इंटरेस्टिंग है ना आज का सब्जेक्ट, जो दिल के ऊपर ये सॉन्ग है। जैसे कि हमारे हर फीलिंग्स में जो भी फीलिंग्स होती है हमारे अंदर, वो सब दिल से ही निकलती है, चाहे वो प्यार हो, गुस्सा हो, नफरत हो, दोस्ती हो, सब कुछ, सब एवरी फीलिंग, सब फीलिंग निकलती है हमारे दिल से। दिल हमारी जिंदगी से ही जुड़ी होती है, अगर ये बंद हो जाए तो जिंदगी ही ना रहे। तो बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है आज का, हम दिल के ऊपर गाने सुनेंगे। तो हमारा पहला सॉन्ग है दिल के ऊपर। अभी दिल का हाल तो दिल वाला ही सुनता है, तो यही है हमारा अगला गाना जो श्री 420 फिल्म का है, 1955 का है वो सॉन्ग। राज कपूर जी के और नरगिस के ऊपर फरमाया गया है, मन्ना डे ने गाया है, उनकी आवाज में है, शंकर जयकिशन जी का संगीत है इसका। तो कुछ लाइनें आपको इसकी सुना के दिखाना चाहूंगी मैं।

0: सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना, जी हाँ, दिल का हाल सुनाए दिल वाला। जी हाँ, ये बहुत ही प्यारा सा गीत आपने मन्नाड़े की आवाज में सुना, शंकर जयकिशन का संगीत, फिल्म श्री 420 का। जी हाँ, राज कपूर पर पिक्चराइज किया गया था ये खूबसूरत गाना, आपको अच्छा लगा होगा। और विद्या, बहुत ही प्यारा सा कलेक्शन आपने सुनाया शुरुआत में ही, तो लगता है ऐसे ही अच्छे अच्छे गाने आप सुनाते रहिए, हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लगेगा। तो आइए, ये कहते हैं ये प्यारा सा जो रिश्ता है, कुछ मेरा है कुछ तेरा है, कहीं लिखा नहीं कहीं पढ़ा नहीं, कहीं देखा नहीं कहीं सुना नहीं, ये प्यारा सा जो रिश्ता है कुछ मेरा है कुछ तेरा है। आप सुना है रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर खाबो खास सफर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और विद्या मैं चाहूंगा कि एक और खूबसूरत गाना जो आप सुनाना चाहते हैं वो कौन सा है बताइए।
2: अभी हमारा अगला गाना जो है वो है, इसे गाना बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि दिल का और हमारी आंखों का, नजरों का बहुत ही प्यारा रिलेशन है जो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, वो सबको पता है कि बहुत ही अनोखा रिश्ता है दिल का और आंखों का। इसीलिए बोलते हैं कि जब दिल को दर्द होता है तो आंखों से आंसू निकल आते हैं। तो यही ये गाना इसी तरफ इशारा करता है हमारा अगला गाना, जो कि है जो कि आवाज सुन ले तू भी मेरे, मतलब मेरी नजरों की तरफ देखने क्या है इन नजरों में, ना कि जमाने की बातें सुनकर उन पर भरोसा कर तुम मेरे बारे में सुनो, ऐसा है ये गाना। तो अभी अगला गाना है हम साया फिल्म का, जो 1968 में है। ये गाना मोहम्मद रफी जी की आवाज में है, माला सिन्हा जी के ऊपर पिक्चराइज है। ये गाना है, दिल की आवाज भी सुन मेरे फसाने पर न जा, मेरी नजरों की तरफ देख जमाने पर न जा। तो आइए सुनते हैं हमारा डी अक्षर के ऊपर से ये।

0: ओके विद्या, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया। आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को अच्छा लग रहा होगा ख्वाबों का सफर। बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना, दिल की आवाज भी सुन। जी हाँ, रिजवी साहब ने ये गीत लिखा था और मोहम्मद रफी साहब ने इसे गाया था। ओपी नैयर साहब का संगीत और फिल्म था हम साया। जी हाँ विद्या, बहुत ही प्यारा सा कलेक्शन आपने सुनाया है। और कहते हैं जीवन में कई रिश्ते ऐसे होते हैं, और कहते हैं ये प्यारा सा जो रिश्ता है, कुछ मेरा है कुछ तेरा है, फिर भी जाना पहचाना है, कुछ मेरा है कुछ तेरा है, कुछ मासूम सा कुछ अलबेला सा, कुछ अपना कुछ बेगाना, ये प्यारा सा जो रिश्ता है, कुछ मेरा है कुछ तेरा है। आप सुनाए हैं रेडियो पुनी आवाज। तो आइए आगे बढ़ते हैं ख्वाबों का सफर में गानों का सिलसिला, यानी 50s एंड 60s के ओल्ड मेलोडीज का बहुत ही अच्छी तरह से आप एंजॉय करते हैं। तो आइए एक और खूबसूरत गाना कौन सा है विद्या, बताइए।
1: अभी हमारा अगला गाना जो है, इस गाने ने बहुत फिल्म फेयर अवार्ड जीता है, फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुआ है और जीता भी है। तो इस गाने के बारे में बताने की किसी को जरूरत नहीं है शायद, क्योंकि सुनकर ही सबको पता चल जाएगा कि ये अभी भी बहुत ही ज्यादा हिट गाना है। ये मूवी भी बहुत हिट हुई थी, ब्रह्मचारी फिल्म का है ये गाना, कि तुझको हमने जो 1968 में आई थी, शम्मी कपूर जी के ऊपर पिक्चराइज है ये गाना। तो कुछ लाइनें आपको सुनाना चाहूंगी मैं इसकी।

0: मनन से मनोबल तक, आस्था से अस्तित्व तक। पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर, खाबों का सफर। जी हाँ, ये बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना, दिल के जेरोखों में तुझको बिठाकर। बहुत ही पॉपुलर था 1968 में जब ये रिलीज हुई थी। उसके बाद बहुत समय तक ये गाना जो है रेडियो सेट पे या फिर लोगों के, जब उस समय बड़े बड़े स्पीकर लगाकर, जो साउंड स्पीकर्स वगैरह लगा के शादी या फिर कोई भी फंक्शन होता था, उसमें ये गाना जरूर बजता था। हसरत जयपुरी साहब का लिखा हुआ ये खूबसूरत नगमा मोहम्मद रफी साहब की आवाज में आपने सुना। शंकर जयकिशन का संगीत, जी हाँ, फिल्म था ब्रह्मचारी, जो विद्या जी ने बताया आपको अच्छी तरह से। आइए आगे बढ़ते हैं विद्या, और बहुत ही अच्छे अच्छे कलेक्शन आज आप लेकर आई हैं। तो ये प्यारा सा जो रिश्ता है, कुछ मेरा है कुछ तेरा है, कुछ चंचल सा कुछ सुलझा हुआ, कुछ मस्ती भरा कुछ खफा खफा, कुछ मेरा है कुछ तेरा है, ये प्यारा सा जो रिश्ता है। आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज। चलिए आगे बढ़ते हैं कावों का सफर इस कार्यक्रम में। विद्या, आप कौन सा गीत आप सुनाने वाली है?
2: एक शेर याद आ रहा है सर, जो अभी सभी दोस्तों के साथ मैं शेयर करना चाहूंगी। हमारी दुनिया उनके बिना वीरान है, हमारी दुनिया उनके बिना वीरान है, दुखों की दुकान है, हमें तो जानता ही कौन है, उन्हीं से तो

0: हमारी पहचान है। तो अभी जब प्यार की बात और दिल की बात हो रही है, तो जब भी कोई हमारे दिल के करीब रहता है तो हमें लगता है कि वो कभी हमसे दूर ना ही हो, हमारी नजरों से ही ना दूर हो, हमारी जिंदगी से ही ना दूर हो, वो बस हमारे दिल के करीब ही रहना चाहिए, नहीं तो फिर सब बिखर जाता है। तो यही थोड़ा सा अगला हमारा गाना है, सैड सॉन्ग है, जो अमरदीप फिल्म से है, 1958 का, लता मंगेशकर जी की आवाज में है, देवानंद जी के ऊपर पिक्चराइज है। तो आइए सुनते हैं डी अक्षर के ऊपर से हमारा ये अगला गाना, दिल की दुनिया बसा के सावरिया तुम ना जाने कहाँ खो गए।
1: ओके विद्या, बहुत ही खूबसूरत गाना आपने फिर से याद दिलाया, 1958 का, अमरदीप फिल्म का। तो चलिए इस गाने का आनंद उठाते हैं। आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर, खाबो खास सफर, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की डोर में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर खाबो खास सफर। मैं हूँ आपका हम सफर सनी। जी हाँ, बहुत ही प्यारे प्यारे गाने आप सुन रहे हैं, वो भी अक्षर दिल से। डी अक्षर वाले खूबसूरत गाने वो दिल से जो शुरू होते हैं दिल तक पहुंचते हैं। कहते हैं रिश्ता बनाना इतना आसान है जैसे मिट्टी पे मिट्टी से मिट्टी लिखना, और रिश्ता निभाना उतना ही मुश्किल है जैसे पानी पे पानी से पानी लिखना। आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। चलिए विद्या, आगे बढ़ते हुए आप कौन सा गीत आपके पिटारे में है जो हमें सुनाने वाली हैं आप?
2: तो जैसे कि हम अभी दिल की बात कर रहे हैं, तो दिल जितना हमें सच्चा लगता है, मतलब है, उतना ही वो धोखेबाज भी होता है। कभी कभी दिल गलत बात भी हमको बता देता है। जैसे कि अभी हमको अपन लोगों को फीलिंग आती है कि अरे दिल ये बात कर रहा है, पर दिमाग कह रहा है नहीं नहीं ये बात गलत है। तो ऐसा ही होता है कि दिल कभी कभी धोखा भी दे देता है। तो और प्यार में तो हमेशा ऐसा ही होता है, कुछ मतलब प्यार के बारे में ऐसा होता है कि दिल हमेशा धोखा दे देता है। तो यही हमारा अगला गाना है कि दिल का एतबार ना करना और भूले से भी कभी प्यार ना करना। तो ये गाना हलाकू फिल्म से है जो कि 1956 में आया था। मोहम्मद रफी जी ने गाया है ये गाना, और मोहम्मद रफी जी और लता जी की आवाज में गाना है। शंकर जयकिशन जी का म्यूजिक है। तो थोड़ा सा सुना के दिखाती हूँ मैं गाना आपको।

बहुत ही प्यारा सा गीत का आपने याद दिलाया है, और बहुत ही प्यारा सा ये गीत है, उस समय का हिट गाना है। शैलेंद्र साहब का लिखा हुआ ये गाना अभी हम लोग सुनेंगे। आप सुनाए हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM, खाबो का सफर, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर खाबों का सफर। मैं हूं आपका हम सफर सनी। कितना अजीब जिंदगी से हमारा रिश्ता निकला, बटी हर तरफ खुशियां, फिर भी तकदीर से दर्द का रिश्ता निकला। हमने तो हर वक्त खुदा से तेरे ही लिए दुआ मांगी थी, फिर भी हमारे प्यार के साथ तेरा जुदाई का रिश्ता निकला। आप सुना है रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर खाबों का सफर। आइए आगे बढ़ते हैं। विद्या, आप कौन सा गीत आप सुनाने वाले हैं?
1: क्यों ना उस दिल पर ही कुर्बान हो जाए सहे लिए जिसने गम भी खुशी से। क्यों ना उस दिल पर ही हम कुर्बान हो जाए सहे लिए जिसने गम भी खुशी से। ये गम को सहने वाले दिल की बात है। तो अगला गाना इसी के ऊपर है हमारा, जो कि गूंज उठी शहनाई फिल्म से है, 1959 का। दिल का खिलौना है टूट गया, ये गाना है वो, तो लता जी की आवाज में है। थोड़ा सा सुना के दिखाना चाहूंगी मैं। दिल

के विद्या, बहुत ही प्यारा सा सैड सॉन्ग है लेकिन बहुत ही प्यारा सा है। आइए सुनते हैं इस गीत का भी आनंद उठाते हैं। गुन जुटी शहनाई फिल्म से भरत व्यास साहब का लिखा हुआ ये खूबसूरत नगमा अभी आपके लिए। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: लोग रिश्ते भी फायदा देकर निभाते हैं, जिनकी जरूरत नहीं तोड़ दिए जाते हैं। ये मोम से रिश्ते हैं, ये गर्मी से पिघल जाते हैं। जब जरूरत हो जला लेते हैं, ना हो तो बुझा देते हैं। बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना, आशा करता हूँ ये जो मैंने चार लाइनें कही इस गीत के साथ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। और मैं चाहूंगा विद्या, अब एक ऐसा दिल का साथ जुड़ा हुआ कोई गाना आपके पास हो तो जरूर सुनाइए हमें।
2: जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं दिल के ऊपर, तो कभी कभी ऐसा होता है कि दिल में आकर दस्तक कौन दे जाता है, पता भी नहीं चलता हम लोगों को। तो यही है कि मतलब जैसे कि हम बैठे हैं और अचानक से कुछ दस्तक हो गई और हमको पता भी नहीं चलता, होता है ना सर ऐसा कभी कभी। तो यही है ये हमारा अगला गाना, जो कि आकाशदीप फिल्म से है, 1965 में आई थी ये फिल्म। लता मंगेशकर जी की आवाज में है ये गाना, चित्रकूट जी का म्यूजिक है और धर्मेंद्र जी के ऊपर पिक्चराइज है ये गाना। दिल का दिया जला के गया ये कौन मेरी तन्हाई में, सोए नग्ने जाग उठे होठों की शहनाई में।
1: ओके, बहुत ही प्यारा सा गीत आकाश दीप फिल्म का 1965 का आपने याद कराया है और मजरू सुल्तानपुरी साहब ने इसे लिखा है, तो क्यों ना इस गीत का आनंद उठाया जाए। चलिए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। आप सुना है रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर। खाबो हर सफर के आखिरी मोड़ पे हम लोग पहुंचे हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे गाने आपने सुने, दिल अक्षर वाले। बहुत ही अच्छा लगा हुआ, दिल वाले गाने दिल तक पहुंचे हुए होंगे आपके साथ में। तो आइए कहते हैं, सबसे प्यारा है प्यार का रिश्ता, जान से जान निसार का रिश्ता, हमसे रिश्ता हुजूर वो रखिए जो गले से है हार का रिश्ता। आरजू ने तेरी निभाया है उम्र भर इंतजार का रिश्ता, जिसकी तस्दीक दिल भी करता है वही ऐतवार का रिश्ता, हम जिसे दोस्ती समझ बैठे था फक्त कारोबार का रिश्ता। आप सुना है रेडियो पुनीरी आवाज। तो चलिए विद्या, आखिरी गाना कौन सा आप सुनाने वाले हैं?
1: अभी लास्ट में हम सबका सबसे फेवरेट गाना है ये, जैसे अभी भी है फेवरेट सबका, पहले भी था, पहले तो बहुत हिट हुआ था ये गाना। एस डी बर्मन जी का म्यूजिक है। इस बारे में, गाने के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है किसी को, जो भी सुनेंगे ना जो प्यार में, उनको अपने आप ही सब समझ में आ जाएगा कि क्या है फीलिंग ये गाने की। जो हम लोग शब्दों में कुछ गानों की फीलिंग नहीं बयां कर सकते ना शब्दों में, तो वैसा ही है ये गाना। तो ये तेरे घर के सामने फिल्म का है, 1963 का, मोहम्मद रफी जी की आवाज में ये गाना, देवानंद जी के ऊपर पिक्चराइज है। थोड़ा सा ये गाना सुना के दिखाती हूँ मैं। दिन का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे हाँ। तो दोस्तों, ये थे हमारे सारे आज के गाने, जो कि डी अक्षर से थे और दिल के ऊपर थे। तो आगे भी आप सुनते रहिए, और ये मैं आपके चुनिंदा, मैं मेरे पिटारे से चुनिंदा गाने लाते रहूंगी और आपको ऐसे ही सुनाती रहूंगी। आशा है आपको सारे गाने पसंद आए होंगे अभी आज के, और आगे भी आएंगे जो मैं सुनाऊंगी वो। तो बहुत ही शुक्रिया आप सब लोगों का ये प्रोग्राम सुनने के लिए। थैंक यू सर, आपने मुझे ये चांस दिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।
0: तेरे घर के सामने 1963 वाला ये खूबसूरत नगमा, ये भी बहुत हिट रहा उस जमाने में, और हसरत जयपुरी साहब ने इसे लिखा था, मोहम्मद रफी साहब ने गाया था। जी हाँ, तो चलिए जाते जाते आपके लिए ये प्यारा सा नगमा, दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो रे। तो चलिए इसी राग के साथ हम चाहेंगे आपसे इजाजत, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे इसी वादे के साथ। सलाम नमस्ते, खम्मा गणिसा, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जैसा अन्न वैसा मन, तो तामसिक भोजन का पर्यावरण पे तो असर हो रहा है, लेकिन तामसिक भोजन का हमारे मन पर क्या असर हो रहा है? अगर उस भोजन में नफरत की, क्रोध की, दर्द की ऊर्जा है, तो हमारी मन की स्थिति भी वही हो जाएगी उसको ग्रहण करने के बाद। तो अगर आज हम सिर्फ दो प्रतिज्ञा ले, एक हमारा अन सात्विक हो और दूसरा हम सिर्फ आज एक संस्कार का त्याग करें, वो है क्रोध, तो सही मायने में हमने आज इस यज्ञ में आहुति डालकर विश्व में शांति लाने की सेवा की, वो सच्ची सेवा है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। नमस्कार, मैं हूँ अमोल। आप सभी रेडियो पुनेरी आवाज सुनने वालों को मेरे ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: हम जब कहते हैं ना क्षमा करना तो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं कर सकते हम, उनकी गलती इतनी बड़ी थी, और अगर हम क्षमा कर देंगे तो वो रियलाइज कैसे करेंगे, और अगर वो रियलाइज नहीं करेंगे वो उसी गलती को दोबारा करेंगे। ये सब चीजें सोचकर हम उस बात को, उस घाव को, उस दर्द को पकड़ते रहते हैं। जितना हम किसी भी घाव को पकड़ के रखेंगे और हम कहेंगे मैं इसको ठीक नहीं

0: करने वाला हो। सपोज पांव पे चोट लगे, दीक्षित जी ने हथौड़ा लिया, जोर से मारा, चोट लग गई, फिजिकल घाव लग गया, और मैंने कहा इस घाव को मैं जीवन भर भरने नहीं दूंगे, ये कहा। तो फिर उस घाव के पांव को लेकर चलते गए जीवन में। कई और लोग मिलेंगे जो हथौड़ा मारेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। जितना घाव को नहीं भरेंगे तो अगला वाला हथौड़ा, अगली वाली चोट और जोर से लगेगी। जितनी और जोर से लगेगी, दर्द और जोर से होगा। हम कहेंगे इस बात को भी मैं नहीं भूलूंगा, अगली बार कोई मारेगा तो क्या होगा, और जोर से लगेगी। तो घाव को रहने दे या भरते जाएं? घाव को रहने देना चाहिए या भरना चाहिए? भरना चाहिए, ऑब्वियस है। हर चीज फिजिकल तो ऑब्वियस होती है और हर चीज इमोशनल इम्पॉसिबल होती है। फिजिकल चीज को भरना है, ऑब्वियस है। आप शाम को चाय पी रहे हैं, चाय पीते पीते सोफे पर आप बैठे हैं, सोफे पे चाय गिर गई, तुरंत क्या करेंगे? तुरंत क्या करेंगे? चाय गिर गई चाय पीते पीते, अभी कप में चाय है, लेकिन तुरंत क्या करेंगे? उठकर साफ करेंगे। ये ऑब्वियस है, ये बात ऑब्वियस है, नेचुरल है। क्यों तुरंत उसी टाइम बैठ उठकर साफ करना है? कल सुबह भी तो साफ कर सकते हैं। इसका मतलब अगर सोफे पे कुछ गिरा उसी टाइम साफ करना है। अगर उसी टाइम साफ नहीं किया तो क्या हो जाएगा? दाग लग जाएगा। और यहां कुछ गिरा, यहां कुछ गिरा, कोई आया कुछ कह दिया, दूसरा कोई आया कुछ और कह दिया, तीसरा कोई मिला उसने और कुछ कह दिया, चीजें गिरती गई गिरती गई गिरती गई। लास्ट कब साफ किया? और धीरे धीरे धीरे इतने दाग पड़ते गए, इतने दाग पड़ते गए कि क्या हो गया कि ओरिजिनल कलर ही भूल गया।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में। जीवन कौशल कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को सुनते रहते हैं आप और अलग अलग विषय को लेकर हम आपके बीच में आते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे साइंटिस्ट बनने का। जी हाँ, साइंटिस्ट बनने के लिए आपको 10+2 विज्ञान स्ट्रीम PCM PCB से अच्छे अंकों में पास करना होगा। फिर विज्ञान यानी BSc या BTech की डिग्री लेनी होगी, जिसके बाद मास्टर डिग्री MSc MTech और फिर PhD करनी होगी। एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें विज्ञान में गहरी रुचि और शोध क्षमता विकसित हो जाती है और ये जरूरी भी है। अब आपको एजुकेशन की बात करें तो 10+2 विज्ञान विषय जैसे रसायन विज्ञान, गणित या फिर जीव विज्ञान के साथ 12वीं कक्षा पास करना चाहिए। इसके साथ ही आप रसायन विज्ञान, गणित या जीव विज्ञान जैसे विषय में BSc या BTech जैसी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। फिर उसके बाद MSc MTech जैसे मास्टर डिग्री अगर होती है तो और अच्छा आपका काम शुरू हो जाता है। इसके बाद किसी एक विषय को लेकर अगर आप PhD करते हैं, शोध और वैज्ञानिक बनने के लिए PhD सबसे महत्वपूर्ण कदम है, जहां आप एक विशेष विषय पर विशिष्ट विषय का गहन शोध करते हैं। तो इसमें जैसे कि प्रवेश प्रक्रिया की बात करें तो आपके पास जब डिग्री आ जाती है उसके बाद कुछ अनुभव आप जैसे कि किसी अच्छे साइंटिस्ट के साथ असिस्ट होके या फिर कुछ बच्चों को आप PhD करने के लिए हेल्प करके अपना अनुभव भी साझा कर सकते हैं। और आपको विशेष जैसे संस्थान है IITS, NIITS, IISER आदि में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना पड़ सकता है। PhD या शोध के लिए आपको गेट या फिर SEIR, नेट जैसी परीक्षाओं को पास करना होगा। और इसके बाद जिज्ञासा और विश्लेषण क्षमता, धैर्य और लगन, समस्या समाधान और विश्लेषणात्मक सोच, संचार और टीम वर्क कौशल आपके पास होना चाहिए, जिससे आप शोध कार्य में वैज्ञानिक के तौर पे अच्छा काम कर सकते हैं। करियर के बहुत सारे अवसर हैं, जैसे कि सरकारी संस्थान है, अनुसंधान संस्थान जैसे DRDO, CSIR, BARC, ISRO आदि, और कुछ निजी संस्थान भी हैं जिसमें आप काम कर सकते हैं। तो आइए आगे और भी बहुत सारी बातें जानेंगे और कुछ एग्जाम्पल या कुछ सफल वैज्ञानिक की कहानी भी आपको सुनाएंगे, ताकि आपको समझ आ जाए कि इस मार्ग में आगे बढ़ने से इतना बड़ा व्यक्ति हम बन सकते हैं। तो आइए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, अभी सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत। आप सुना है रेडियो 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ढेर सारी खुशियों के साथ। आज हम लोग बात कर रहे हैं एक साइंटिस्ट बनने के लिए क्या क्या जरूरी है, इस विषय को लेकर बात हो रही है। जब एक वैज्ञानिक के रूप में करियर की बात आती है तो व्यक्ति इस हर संभव क्षेत्र में काम करता है। एक वैज्ञानिक कई तरह के चीजों को लेकर काम करता है। बड़ी और छोटी कंपनियां शोध उत्पादन परियोजना पर काम करते हैं। वैज्ञानिकों को नियुक्त कर दी जाती है सरकार। विश्वविद्यालय शोध करने या पढ़ने के लिए वैज्ञानिकों को विशेष रूप से याद किया जाता। सरकारें और हॉस्पिटल अनुसंधान ऐसी जगह पे विशेष वैज्ञानिक का बहुत ज़रूरत होती है और इस पर ज़्यादा काम होता है। पोषित परियोजनाओं पर काम करने के लिए वैज्ञानिकों को नियुक्त किया जाता है। एक वैज्ञानिक के करियर पथ की बात करें तो अंतिम लक्ष्य तक विशाल वैज्ञानिक समुदाय में ज्ञान और समझ का संचार करना और भविष्य के बारे में नई खोजों को प्रकाशित करने में मदद करना। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक साइंटिस्ट की जो कागजी काम है वो तो आपको आ गया, लेकिन फिर भी आप तब सफल होते हैं जब आप अपने शोध के माध्यम से, अपने कार्य के माध्यम से किसी समस्या का समाधान करते हैं। तो अब इस बात को ठीक करने के लिए सबसे पहले समस्याओं की पहचान होना बहुत जरूरी है। एक वैज्ञानिक के रूप में करियर में व्यक्ति अनुसंधान के किसी विषय को लेकर या किसी क्षेत्र में समस्याओं को पहचान कर लेता है और पहचान करने के लिए जिम्मेवार होता है। वो किसी उपकरण या मशीनरी के

समुचित संचालन में उत्पन्न होने वाली किसी विशिष्ट समस्या का समाधान करने के लिए विभिन्न उपकरणों का विश्लेषण करता है। एक वैज्ञानिक उपकरणों की विफलता या मुश्किलों की जांच करता है, वो दोषपूर्ण संचालनों का निदान करके समाधान सुझाता है। तो ये बहुत जरूरी है कि एक वैज्ञानिक बनने के लिए आपको समस्याओं को ढूंढ और फिर उसके बाद काम करके उसको समाधान में परिवर्तन करें। तो यहाँ आपकी जो है एक नई पहचान बनती है। आइए आगे बढ़ते हुए मैं आपको एक वैज्ञानिक की बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने वाला हूँ, एक सफल वैज्ञानिक की कहानी। तो आइए बात करते हैं स्टीफन हॉकिंग की। सितारों की दुनिया का रहस्य समझ जाने वाला, सितारों की दुनिया का रहस्य समझाने वाला भौतिकी शास्त्र का एक चमकीला सितारा इस सितारों की ही दुनिया में विलीन हो गया है। लेकिन हम बात कर रहे हैं उस प्रसिद्ध भौतिकी शास्त्री स्टीफन हॉकिंग की। आज हम इस महान वैज्ञानिक के विषय में अपने श्रोताओं को जरूर बताएंगे, अपने विद्यार्थियों को, और हम चाहते हैं कि हमारा जो लिसनर है, जो विद्यार्थी है, इसके माध्यम से धीरे धीरे पढ़े और समझे ये संसार जिन अमर व्यक्तियों में सज्जित होता है। एक ऐसे ही महा व्यक्तित्व की कहानी बताती है। माना जाता है कि स्टीफन हॉकिंग आइंस्टीन की तरह ही प्रतिभाशाली थे। और एक बात उनका यहाँ पर आता है कि उनके दिमाग को छोड़कर हर अंग से अपंग हर वैज्ञानिक की खोजें चमकृत करने वाली थी। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम बताती है एक बुक, इसमें इनके बारे में जिक्र किया है कि वे विज्ञान की प्रसिद्ध शख्सियत बन गए। इस पुस्तक की अब तक 1 करोड़ से अधिक कॉपियां बिक चुकी हैं और सर्व अधिक बिक्री वाली पुस्तक में शामिल भी। किंतु मजे की बात यह है कि बहुत कम लोग हैं जो इस पुस्तक को पूरी पढ़ पाए। आज लगभग सभी वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड की रचना महाविस्फोट बिग बैंग से हुई है। किंतु प्रश्न तो फिर भी है कि ब्रह्मांड बनने से पहले क्या था, शून्य या बिना सितारों वाला आकाश? किंतु यदि खाली जगह भी थी तो वहां कहां से आई? जिस सूक्ष्म कण में विस्फोट हुआ वो कहां से आया? अगला प्रश्न है कि भविष्य में यदि ब्रह्मांड नष्ट हो जाए तब क्या बचेगा? वैज्ञानिकों को सबसे अधिक डर लगता है कि रहस्यमय कृष्णा पिंडो ब्लैक होल से, जो कि दिखाई नहीं देते, वे प्रकाश तक को सोख लेते हैं और आसपास से गुजरने वाली ग्रहों और नक्षत्रों को भी अपने उधार में समा लेते। वैज्ञानिकों का मानना है कि सूर्य जैसे तारों में जब ईंधन समाप्त हो जाएगा तब वे कृष्ण पिंड ब्लैक होल से ब्लैक होल में तब्दील हो जाएंगे और सिकड़ते जाएंगे। इसीलिए एक विस्फोट के साथ होगा और वे कई नए सितारों को जन्म दे देंगे। हॉकिंग्स के मशहूर होने का कारण भी यही था कि उन्होंने बहुत ही मूल प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश की। ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई? हम जानते हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार मनुष्य की कल्पना से बिल्कुल परे है। यदि मनुष्य कल्पना लोक में हजारों वर्षों तक भी उड़ता रहे तब भी वह इस ब्रह्मांड की था नहीं पा सकता, क्योंकि स्टीफन हॉकिंग कहते हैं कि ब्रह्मांड की ना तो कोई सीमा है और ना कोई किनारा। ऐसे में यदि यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति या रचना के बारे में तार्किक या वैज्ञानिक दृष्टि से कुछ समझाने का प्रयास या समझने का प्रयास करते हैं तो वे साधारण मनुष्य नहीं हो सकते। हॉकिंग्स के अनुसार यदि बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड के विस्तार की दर 1 सेकंड के खरबे हिस्से से भी छोटी है, इससे पहले कि ब्रह्मांड अपने वर्तमान आकार पर पहुंच पाता वह पुनः संकुचित होकर शून्य हो जाए। दूसरी तरफ अगर विस्तार की दर 1 सेकंड के 10 लाखवें अंश से थोड़ी भी अधिक होती है तो ब्रह्मांड में सितारों और ग्रहों को बनाने के लिए जो समय चाहिए वो नहीं मिलता, अर्थात बिग बैंग का विस्फोट अकल्पनीय रूप से शुद्ध और सटीक था जिसने ब्रह्मांड को वर्तमान स्वरूप दिया। आइंस्टीन ने पहले भी अति सूक्ष्म कणों

के गुणधर्म पर रिसर्च की, उन्हें क्वांटम फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार भी मिला, किंतु जब उन्होंने देखा कि अति सूक्ष्म कण विज्ञान के नियमों का पालन नहीं करते, तब उन्होंने इस विषय को छोड़कर ब्रह्मांड के नियमबद्ध विशाल पिंडों पर काम करना शुरू कर दिया और दुनिया को प्रसिद्ध सापेक्षवाद का सिद्धांत दिया। किंतु स्टीफन हॉकिंस ने क्वांटम भौतिकी और सापेक्षवाद में रिश्ता जोड़कर समझाया कि जिस सूक्ष्म कण के विस्फोट ने ब्रह्मांड को जन्म दिया वो विज्ञान के नियमों में बंधा हुआ नहीं था। दूसरा, उन्होंने कहा कि ब्लैक होल्स मृत्यु होते हुए भी ऊर्जा के विकिरण छोड़ते हैं जिन्हें वह हॉकिंग्स रेडिएशन के नाम से जाना जाता। दुनिया का हर वैज्ञानिक हॉकिंग्स की खोज से सहमत होते हुए भी ये विडंबना रही है कि हॉकिंग्स नोबेल पुरस्कार से वंचित रहे, क्योंकि उनकी खोज को प्रयोगों के आधार पर सिद्ध नहीं किया जा सका। उसे सिद्ध करना अगले कई दशकों तक आसान भी नहीं हो, दशकों बाद यदि किसी तरीके से प्रयोग कर पाए तब कहीं जाकर उनका नाम नोबेल पुरस्कार की सूची में आएगा। ठीक उसी तरह जिस तरह आइंस्टीन द्वारा 100 वर्षों पूर्व गणित के माध्यम से प्रतिपादित नियम अब कहीं जाकर प्रयोगों द्वारा सिद्ध हो गए। साथियों, ऐसे देखा जाए तो विषय बड़ी गंभीर है और बहुत रोचक और रुचिकर भी, लेकिन हमें सीमित समय में अपने आप को समझना है कि अगर एक वैज्ञानिक बनना हो तो उसके लिए कोई समय या फिर कोई मापदंड रोकता नहीं उसे। स्काई इज द लिमिट कह सकते हैं या उससे पार भी जा सकते हैं, बस उतनी बड़ी सोच और उतनी बड़ी क्षमता और उतना सहनशील व्यक्ति होने की भी जरूरत पड़ती है। ईश्वर ब्रह्मांड के साथ फंसे नहीं खेलता, ये आइंस्टीन की प्रसिद्ध उक्ति है। और किंतु स्टीफन ने जवाब में ये कहा कि ईश्वर फांसे खेलता ही नहीं बल्कि कभी कभी तो ऐसी जगह फेंक देता है जहां वो दिखाई भी नहीं देते। आइंस्टीन को ऐसा सुंदर जवाब स्टीफन हॉकिंस ही दे सकते हैं, हम तो केवल इन्हें चमत्कृत होकर देख और पढ़ सकते हैं। जब भी वैज्ञानिक ऊपर सितारों को देखेंगे तो शायद उनमें उन्हें हॉकिंस भी दिखाई देंगे, तो जो अब सितारों के बीच अमर हो चुके हैं। तो चलिए साथियों, आज मैंने कहा कि वैज्ञानिक पर बात हो रही है तो एक वैज्ञानिक की कहानी भी आपको सुनाते हैं। तो ये थी कहानी हॉकिंग्स की और आइंस्टीन की। आप सुनाए हैं रिजुमत 107.8 FM पर। जी हाँ, जीवन कौशल इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको हम वैज्ञानिक बनने के कुछ रुचिकर पहलुओं को सुनाएंगे। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: एक वैज्ञानिक के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि वो सवाल करना कभी बंद ना करे। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, और आज हम इसी भावना की मतलब गहराई में उतरने वाले हैं।
1: हाँ।
0: आज की हमारी ये खास चर्चा हमारे एक लिसनर के भेजे हुए सवालों और सोर्सेस पर आधारित है।
1: अच्छा।
0: उन्होंने भारत में साइंटिस्ट बनने के करियर पाथ पर कुछ बेहतरीन आर्टिकल्स और करियर गाइड्स भेजे और पूछा कि इन सब में से वो कौन सी बातें हैं जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती हैं।
1: बहुत दिलचस्प सवाल है।
0: हाँ, वो छुपी हुई सच्चाइयां क्या हैं? तो चलिए इन सोर्सेस को खंगालते हैं और देखते हैं कि लैब कोट और डिग्री के पीछे की असली कहानी क्या है।
1: बिल्कुल, और यह सवाल शानदार है क्योंकि वैज्ञानिक बनना सिर्फ एक कोर्स पूरा करने जैसा नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक नजरिया अपनाने जैसा है। हमारे लिसनर ने जो जानकारी भेजी है वो दिखाती है कि ये जिज्ञासा, गहरी रिसर्च और असल दुनिया की मुश्किलों को सुलझाने का एक लंबा सफर है।
0: सही है।
1: आज हम स्कूल के पहले कदम से लेकर एक प्रोफेशनल साइंटिस्ट बनने तक के पूरे रास्ते को समझेंगे, पर उन पहलुओं पर ज्यादा ध्यान देंगे जिनके बारे में अक्सर बात नहीं होती।
0: तो सबसे पहले उसी बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं जो अक्सर बहुत सीधा मान लिया जाता है, एक वैज्ञानिक आखिर होता कौन है?
1: हाँ,
0: सोर्सेज में लिखा है कि वो प्राकृतिक दुनिया को देखते, खोजते और समझाते हैं, पर ये तो एक किताबी परिभाषा लगती है। असल में इसका मतलब क्या है?
1: इसका असल मतलब परिभाषा से कहीं ज्यादा गहरा है। एक वैज्ञानिक सिर्फ वो नहीं है जो नई चीजें खोजता है, बल्कि वो भी है जो ये पूछता है कि ये चीज काम क्यों नहीं कर रही।
0: अच्छा,
1: हमारे सोर्सेज में एक बहुत दिलचस्प बात लिखी है कि उनका एक बड़ा काम है समस्याओं को पहचानना।
0: मतलब ट्रबल शूटिंग।
1: बिल्कुल, किसी उपकरण या मशीनरी की विफलता की वजह जांचना। मतलब वे सिर्फ क्रिएटर नहीं बल्कि ट्रबल शूटर भी हैं।
0: ये ट्रबल शूटर वाली बात वाकई दिलचस्प
1: है ना?
0: हम अक्सर वैज्ञानिकों को नई खोजों से जोड़ते हैं, कोई नई वैक्सीन या कोई नया ग्रह खोजना, लेकिन ये भूल जाते हैं कि विज्ञान का एक बहुत बड़ा हिस्सा मौजूदा चीजों को बेहतर बनाने में भी है।
1: एकदम सही। उनका अंतिम लक्ष्य सिर्फ अपनी जिज्ञासा को शांत करना नहीं है, बल्कि पूरे वैज्ञानिक समुदाय के ज्ञान को आगे बढ़ाना है ताकि आने वाली पीढ़ियां उस ज्ञान पर कुछ नया बना सकें।
0: ये सब सुनने में तो बहुत रोमांचक है, लेकिन मुझे लगता है कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि इन वैज्ञानिकों की रोजमर्रा की जिंदगी कैसी होती है।
1: हाँ, ये सवाल आता है दिमाग में।
0: क्या वो हमेशा लैब में ही बंद रहते हैं जैसा फिल्मों में दिखाते हैं?
1: ये एक बहुत बड़ा मिथक है। हाँ, उनका ज्यादातर समय लैब या ऑफिस में गुजरता है, लेकिन उनका काम सिर्फ बीकर में केमिकल मिलाना नहीं है। आज के वैज्ञानिक अपना काफी समय कंप्यूटर पर डेटा एनालाइज करने, रिसर्च पेपर लिखने और दुनिया भर के दूसरे वैज्ञानिकों से वीडियो कॉल पर आइडिया डिस्कस करने में बिताते हैं।
0: मतलब लैब से ज्यादा लैपटॉप का काम हो गया है।
1: हाँ,
0: और यात्रा के बारे में क्या?
1: यात्रा आमतौर पर नहीं, ज्यादातर रिसर्च एक ही जगह पर होती है।
0: अच्छा,
1: पर इसके कुछ मजेदार अपवाद भी हैं, जैसे एक फोरेंसिक साइंटिस्ट को सबूत इकट्ठा करने के लिए क्राइम सीन पर जाना पड़ सकता है।
0: हाँ, ये तो होता है।
1: या एक पर्यावरण वैज्ञानिक को किसी जंगल या नदी के सैंपल लेने के लिए फील्ड पर जाना पड़ सकता है। तो ये पूरी तरह से आपके स्पेशलाइजेशन पर निर्भर करता है।
0: और काम के घंटे? क्या वैज्ञानिकों की जिंदगी में घड़ी का कोई मतलब होता है?
1: ये एक फुल टाइम जॉब है, पर ये टिपिकल 9 to 5 वाली नौकरी नहीं है।
0: अच्छा।
1: विज्ञान में यूरेका मोमेंट घड़ी देखकर नहीं आता। कई बार किसी एक्सपेरिमेंट के नतीजे के लिए घंटों या पूरी रात इंतजार करना पड़ता है।
0: दबाव होता होगा।
1: बहुत, डेडलाइन का दबाव बहुत होता है। तो हफ्ते में 40 घंटे तो मानकर चलिए, लेकिन ये अक्सर उससे कहीं ज्यादा हो जाता है।
0: और भारत में ये अवसर कहाँ मिलते हैं? अपने बैंगलोर, हैदराबाद जैसे शहरों का जिक्र किया था, पर क्या इसका मतलब ये है कि छोटे शहरों में विज्ञान से जुड़ने के अवसर बिल्कुल नहीं है?
1: ये बहुत अच्छा सवाल है। ये सच है कि टेक्नोलॉजी और बायोटेक के बड़े हब बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे जैसे शहरों में हैं।
0: हाँ,
1: लेकिन भारत जैसे देश में कृषि विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान का भविष्य तो छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों से ही जुड़ा है।
0: सही बात है।
1: मिट्टी की गुणवत्ता जांचने से लेकर पानी के संरक्षण तक इन क्षेत्रों में वैज्ञानिकों की बहुत जरूरत है। तो हाँ, अवसर हर जगह है, बस उनका रूप अलग अलग है।
0: ठीक है, तो अब उस रास्ते पर आते हैं जो किसी को वैज्ञानिक बनाता है। शुरुआत स्कूल से होती है, 10+2 में विज्ञान, ये तो सीधी सी बात है।
1: हाँ, ये तो नींव है। भौतिकी, रसायन, गणित और जीव विज्ञान, ये विज्ञान की भाषा के अक्षर हैं, कह सकते हैं। इसके बाद आता है अगला पढ़ाव, बैचलर्स डिग्री, जैसे बीटेक या बीएससी। यहाँ छात्र अपनी रुचि के हिसाब से एक खास दिशा चुनते हैं।
0: और हमारे सोर्सेज में मास्टर्स डिग्री को रिसर्च करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। ऐसा क्यों है? बैचलर डिग्री काफी क्यों नहीं है?
1: देखिए, बैचलर डिग्री आपको विज्ञान के मैदान में खड़ा करती है, आपको सभी जरूरी औजारों का इस्तेमाल सिखाती है।
0: ओके।
1: लेकिन मास्टर्स डिग्री आपको सिखाती है कि किसी एक औजार का उस्ताद कैसे बना जाए।
0: अरे वाह।
1: ये आपको किसी एक विषय में इतनी गहराई तक ले जाती है कि आप सिर्फ ज्ञान का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि नया ज्ञान बनाने की दहलीज पर पहुंच जाते हैं।
0: ये बहुत अच्छी तरह से समझाया। मतलब मास्टर्स डिग्री जिज्ञासा को एक खास आकार देती है।
1: बिल्कुल।
0: अच्छा, सोर्सेज में कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज का भी जिक्र है, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स या लेटेक्स, ये क्या है?
1: ये आपकी स्किल किट में कुछ खास औजार जोड़ने जैसा है। जैसे लेटेक्स को आप वैज्ञानिकों के लिए एक सुपर एडवांस्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड समझ सकते हैं।
0: अच्छा।
1: हाँ, जब आपको बहुत जटिल गणितीय समीकरण या फॉर्मूले लिखने होते हैं तो साधारण वर्ड प्रोसेसर जवाब दे जाते हैं, लेटेक वहीं काम आता है।
0: तो ये छोटे छोटे सर्टिफिकेशंस आपके दूसरों से अलग खड़ा करते हैं।
1: हाँ बिल्कुल।
0: शिक्षा के अलावा स्किल्स की भी बात हुई है, हार्ड स्किल्स तो समझ आते हैं जैसे डेटा एनालिसिस, लेकिन सॉफ्ट स्किल्स जैसे विस्तार पर ध्यान देना या संवाद कौशल एक वैज्ञानिक के लिए इतने जरूरी क्यों है?
1: Yes, ये एक ऐसा पहलू है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। सोचिए, विज्ञान में एक छोटी सी दशमलव की गलती किसी दवाई के फॉर्मूले को जहर बना सकती है।
0: बाप रे।
1: या किसी रॉकेट को रास्ते से भटका सकती है।
0: बिल्कुल।
1: इसीलिए अटेंशन टू डिटेल सबसे जरूरी है।
0: और संवाद कौशल?
1: वो भी उतना ही जरूरी है। अगर आप अपनी शानदार खोज को दुनिया को या अपनी टीम को ठीक से समझा ही नहीं पाए
0: तो उसका कोई फायदा नहीं।
1: बिल्कुल।
0: हाँ।
1: उस खोज का क्या फायदा? विज्ञान अकेले में नहीं होता, ये एक टीम गेम है।
0: आपने हार्ड स्किल्स में HPLC का जिक्र किया, ये सुनने में काफी जटिल लगता है।
1: हाँ, नाम थोड़ा मुश्किल है। HPLC मतलब हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी।
0: ओके।
1: पर इसका काम बहुत मजेदार है। इसे ऐसे समझिए कि ये वैज्ञानिकों के लिए एक सुपर फिल्टर जैसा है।
0: सुपर फिल्टर?
1: हाँ। मान लीजिए आपके पास फलों के जूस का एक सैंपल है और आप जानना चाहते हैं कि उसमें कौन कौन से विटामिन और कितनी चीनी है। HPLC उस जूस में से हर एक केमिकल को अणु के स्तर पर अलग अलग करके बता सकता है।
0: अच्छा।
1: इसी तकनीक की वजह से हम दवाइयों की शुद्धता, खाने में मिलावट या खून में किसी ड्रग का पता लगा पाते हैं।
0: बहुत खूब, ये तो कमाल की तकनीक है। अब आते हैं इंटर्नशिप पर। किताबी ज्ञान और असल दुनिया के काम में जो फर्क होता है, क्या इंटर्नशिप उसी को मिटाती है?
1: बिल्कुल। इंटर्नशिप एक रियलिटी चेक की तरह है। यहाँ पहली बार पता चलता है कि थ्योरी असल में प्रैक्टिकल में कैसे काम करती है।
0: सही।
1: आप सीखते हैं कि लैब में प्रेशर कैसे झेलना है, टीम के साथ कैसे काम करना है, और जब कोई एक्सपेरिमेंट फेल हो जाए तो निराश हुए बिना फिर से कैसे शुरू करना है। और जैसा कि हमारे सोर्सेज बताते हैं, एक अच्छी इंटर्नशिप अक्सर उसी कंपनी में पक्की नौकरी का रास्ता भी खोल देती है।
0: यहाँ से हमारी बातचीत एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आती है। वैज्ञानिक कोई एक ही तरह का काम नहीं है, है ना?
1: सही कहा। और ये जानना बहुत जरूरी है ताकि लोग अपनी रुचि के हिसाब से सही रास्ता चुन सकें। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं।
0: हाँ, बताइए।
1: पहले है फूड साइंटिस्ट। इनका काम सिर्फ ये जांचना नहीं है कि खाना सुरक्षित है या नहीं।
0: अच्छा।
1: सोचिए, जब आप महीनों तक चलने वाला कोई पैकेज फूड या चिप्स का पैकेट खरीदते हैं तो उसके स्वाद, रंग और कुरकुरेपन को वैसे ही बनाए रखने का विज्ञान इन्हीं के हाथ में होता है।
0: ये तो हमने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं। मतलब अगली बार जब मैं चिप्स खाऊंगा तो उसके पीछे के फूड साइंटिस्ट को जरूर याद करूंगा।
1: बिल्कुल।
0: और दूसरे प्रकार, एटमॉस्फेरिक साइंटिस्ट के बारे में बताइए, ये बहुत दिलचस्प लगता है।
1: एटमॉस्फेरिक साइंटिस्ट असल में जलवायु के जासूस होते हैं।
0: जासूस?
1: हाँ, ये सिर्फ मौसम का पूर्वानुमान लगाना नहीं है। सोचिए, ये वैज्ञानिक अंटार्कटिका में बर्फ की हजारों साल पुरानी परतों को ड्रिल करके उसमें फंसी हवा के छोटे छोटे बुलबुलों का विश्लेषण करते हैं।
0: अरे वाह।
1: उन बुलबुलों में उस समय का वायुमंडल कैद है। इससे पता चलता है कि औद्योगिक क्रांति से पहले हमारी हवा कैसी थी और आज हमने उसे कितना बदल दिया है।
0: पेड़ों के छलनों से इतिहास का पता लगाना, ये तो किसी नॉवेल जैसा लगता है। क्या भारत में भी इस तरह का कोई काम हो रहा?
1: हाँ बिल्कुल। भारत में मौसम विज्ञान विभाग और कई रिसर्च संस्थान हिमालय के ग्लेशियरों का अध्ययन करके भारतीय मानसून के हजारों साल पुराने पैटर्न को समझने की कोशिश कर रहे हैं।
0: अद्भुत। अब आते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक साइंटिस्ट पर। ये नाम सुनने में बहुत मॉडर्न और तकनीकी लगता है।
1: और उनका काम भी वैसा ही है। बायो इन्फॉर्मेटिक साइंटिस्ट को आप एक तरह से बायोलॉजिकल डेटा जासूस कह सकते हैं।
0: बायोलॉजिकल डेटा जासूस?
1: हाँ, हमारे डीएनए में अरबों अक्षर होते हैं। किसी एक इंसान के डीएनए का डेटा इतना ज्यादा होता है कि उसे प्रिंट करने पर हजारों किताबें भर जाएंगी।
0: बापरे।
1: इनका काम है कंप्यूटर प्रोग्राम और एआई की मदद से इस विशाल डेटा में छुपे पैटर्न को खोजना, ताकि कैंसर जैसी बीमारियों के राज खुल सकें।
0: और आखिर में वो वैज्ञानिक जो टीवी शो की वजह से सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, फोरेंसिक साइंटिस्ट।
1: हाँ, फोरेंसिक साइंटिस्ट। टीवी पर ये काम बहुत ग्लैमरस दिखता है, लेकिन असलियत में ये बहुत ज्यादा धैर्य और सटीकता का काम है। वे अपराध स्थल से मिले सबूतों, जैसे खून के धब्बे, बाल या फाइबर का विश्लेषण करते हैं। उनका काम किसी की बेगुनाही साबित कर सकता है या किसी अपराधी को सजा दिला सकता है।
0: तो ये सब जानने के बाद अब करियर की प्रगति पर बात करते हैं। एक युवा वैज्ञानिक जब इस दुनिया में कदम रखता है तो उसका सफर कैसा होता है?
1: करियर की शुरुआत आमतौर पर जूनियर साइंटिस्ट के पद से होती है। इसे आप एक तरह की अप्रेंटिसशिप समझ सकते हैं।
0: ओके।
1: उनका मुख्य काम है सीनियर वैज्ञानिकों के निर्देशन में प्रयोगों की योजना बनाना, उन्हें करना, और फिर जो भी डेटा मिलता है उसे रिकॉर्ड और एनालाइज करना।
0: और सैलरी, सोर्सेज में इसका क्या जिक्र है?
1: सोर्सेज के मुताबिक भारत में एक जूनियर साइंटिस्ट का औसत मासिक वेतन लगभग 25,000 रुपए हो सकता है।
0: 25,000 रुपए की शुरुआती सैलरी, वो भी इतनी लंबी पढ़ाई के बाद, शायद कुछ लोगों को कम लग सकती है।
1: आपका कहना सही है और ये एक व्यवहारिक सवाल है। हाँ,
0: विज्ञान में करियर एक स्प्रिंट नहीं बल्कि एक मैराथन है। शुरुआती सैलरी शायद बहुत आकर्षक ना लगे, लेकिन यहाँ अनुभव और विशेषज्ञता के साथ ग्रोथ बहुत तेजी से होती है।
1: तो जब आप सीनियर साइंटिस्ट बनते हैं तो भूमिका में क्या बदलाव आते हैं?
0: एक सीनियर साइंटिस्ट सिर्फ एक रिसर्चर नहीं बल्कि एक लीडर, एक मेंटोर और एक स्ट्रेटेजिस्ट होता है।
1: वे जूनियर वैज्ञानिकों की टीम को गाइड करते हैं, रिसर्च की नई दिशा तय करते हैं, अपनी खोजों पर रिसर्च पेपर लिखते हैं।
0: और उनकी सैलरी भी काफी बढ़ जाती होगी।
1: हाँ बिल्कुल, जैसा कि हमारे सोर्सेज बताते हैं, एक सीनियर साइंटिस्ट का औसत मासिक वेतन 65,000 रुपए या उससे ज्यादा हो सकता है, और सालाना पैकेज अनुभव और संगठन के आधार पर 4.5 लाख रुपए से लेकर 25-25.5 लाख रुपए या उससे भी ज्यादा तक जा सकता है।
0: और भारत में नौकरी का बाजार कैसा है? क्या ISRO जैसे बड़े नाम ही एकमात्र विकल्प हैं?
1: ISRO, DRDO जैसे प्रतिष्ठित सरकारी संगठन तो हैं, लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अवसर हैं।
0: जैसे कि
1: फार्मास्यूटिकल कंपनियां, बायोटेक स्टार्टअप्स, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, और यहां तक कि IT कंपनियां भी डेटा साइंटिस्ट और बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक्सपर्ट्स को नियुक्त कर रही हैं।
0: अच्छा।
1: सफलता का मूल मंत्र एक ही है, लगातार सीखते रहना। जो नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखता है वही आगे बढ़ता है।
0: तो संक्षेप में कहें तो वैज्ञानिक बनना सिर्फ डिग्री हासिल करना नहीं है, ये लगातार सवाल पूछने, सीखने और खोज करने की एक लंबी लेकिन बेहद फायदेमंद यात्रा है।
1: बिल्कुल।
0: इसके लिए एक मजबूत शैक्षिक आधार, खास स्किल्स और सबसे बढ़कर जुनून की जरूरत होती है।
1: और ये एक ऐसा करियर है जो आपको सिर्फ एक नौकरी नहीं देता बल्कि समाज और दुनिया की वास्तविक समस्याओं को सुलझाने में सीधे तौर पर योगदान देने का मौका देता है।
0: हमने देखा कि वैज्ञानिक भोजन से लेकर वायुमंडल तक और DNA से लेकर क्राइम सीन तक हर चीज का अध्ययन करते हैं। ये मुझे सोचने पर मजबूर करता है।

अपने करियर की उड़ान को दे नई दिशा, क्योंकि आ गया है करियर ऑप्शन सिर्फ रेडियो मधुबन पर।

0: मधुबन पर आरजे रमेश के साथ, क्योंकि आपकी सफलता हमारा मिशन है।
1: चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में जीवन कौशल कार्यक्रम में बस इतना ही। आशा करूंगा बिल्कुल अच्छे फील कर रहे हैं, सुनकर आपको पता चल ही गया एक वैज्ञानिक बनने के लिए किस तरह का कौशल, किस तरह की पहल जरूरी है। तो चलिए आप अपना पहल शुरू रखिएगा और अपने लिए और अपने देश के लिए जरूर एक वैज्ञानिक के तौर पर काम जरूर कीजिएगा। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर से जाते जाते, कई बार कुछ पुस्तकें ऐसी भी वैज्ञानिक शोध पर लिखी जाती है या वैज्ञानिकों के शोध को लेकर भी लिखी जाती है। तो ऐसे ही हरिशंकर परसाई जो वैज्ञानिक शोधों पर किताबें लिखती रहे, और बहुत ही अच्छी किताब उनकी है वैज्ञानिक कहानियां, जो 1964 में पब्लिश हुई थी। उसमें उन्होंने कुछ रुचिकर चीजों को लेकर काम किया है और उसमें उनका विषय कुछ इस तरह के था, यूरेका यूरेका, ये एक भाग रहा, एक चैप्टर उसमें आता है। दूसरा, वो अभी भी घूमती है, ये दूसरा चैप्टर था। बाप की कथा, ये भी एक तीसरी जो कहानी है वो उसमें मिलती है। तो इस तरह के बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने इस किताब को कंपाइल किया, कुछ वैज्ञानिक और उनके शोध पर, बहुत सारे, बिजली का जादूगर नाम से एक लेसन लिखा है जिसमें एक वैज्ञानिक की बात वहां पर बताई गई। तो मैं चाहूंगा कि आप इस तरह की किताबें भी पढ़ सकते हैं, ताकि आपका माइंड जो है एक वैज्ञानिक के रूप में अपने आप को एस्टैब्लिश करने में आपको मदद कर सके। इन शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले कड़ी में एक नए विषय को लेकर। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते खमा गणिसा, जय हिंद जय भारत, ओम शांति।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: तो हमारे थॉट्स का सोर्स है, स्रोत है, संकल्प भी किस आधार पर उठ रहे हैं। एक है पास्ट एक्सपीरियंसेस, कोई बीती हुई बातें, दूसरी इन्फॉर्मेशन जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, और तीसरी हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारी मान्यताएं ये हैं। तो वो मान्यता के आधार से, जैसे कभी खुशी कभी गम, जीवन ही ये है, तो ये एक मान्यता है। तो थॉट ऑटोमेटिकली गम की थॉट, उदासी की थॉट क्रिएट करने की आप अपने आप को परमिशन दे देते हैं। जहां आपने अपनी बिलीफ सिस्टम को चेंज किया कि खुशी इज एवर लास्टिंग, तो फिर आपकी थॉट प्रोसेस ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रेडियो पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंद रहा आनंद लुटा।
1: चल चल चल मेरे कंप्यूटर, चल चल चल मेरे कंप्यूटर, कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुणेरी आवाज 107.8, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: गई बाबा। इन हाथों से सबकी गाड़ी चल रही है
1: बाबा।
0: हाथ लाओ स्वाद क्यों कैसी कही है
1: बाबा।
0: इन हाथों से सबकी गाड़ी चल रही है
1: बाबा।
0: अरे वाह अरे वाह।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: तो वो लोग जो हमें छोटी छोटी बातों पे डांटते हैं, जो हमारी गलतियां निकालते हैं, जो हमारी निंदा करते रहते हैं, जो हमारी की हुई मेहनत का क्रेडिट ले लेते हैं, जो हमें धोखा दे देते हैं, जो हमारे पीठ पीछे गलत फैलाते हैं, कुछ भी लोग, वो छोटी ब्लैक बॉल हो सकती है, ग्रे हो सकती है या बहुत बड़ी ब्लैक बॉल हो सकती है, क्या हमारे पास पावर है कि हम ब्लैक का रिटर्न व्हाइट से भेजेंगे? वो हमारे साथ गलत करेंगे, हम उनको दुआएं भेजेंगे, इज दैट पॉसिबल? पहली बात, ये मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने कभी ना कभी वो बॉल भेजी थी, तो गलती इनकी या मेरी? मेरी। तो इनके ऊपर से जो मैंने ब्लेम लगाया हुआ था वो पहले खत्म, वन। सेकंड, अब मैं अगर व्हाइट भेजूंगी तो किसके फायदे के लिए? उनके ऊपर एहसान नहीं, अपने फायदे के लिए व्हाइट भेजने में भी सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। उनके लिए नहीं भेज रहे, अपने फायदे के लिए भेज रहे हैं। क्योंकि अब जब हम व्हाइट एनर्जी भेजेंगे, मतलब दुआएं देंगे अपने फायदे के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: पुनेरी आवाज 107.8 FM, वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: मुझे मत दुआ दे कि मैं बद्दुआ हूं, नहीं तेरे काबिल कि मैं बेवफा हूं।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: छोटी छोटी बातों में अपनी एनर्जी को डिप्लीट नहीं करना, क्योंकि हम हीलर्स हैं, हम एंजल हैं, और हमारी एनर्जी का असर हमारे आसपास के लोगों पर एंड ऑफ कोर्स फिर हमारे पास जो हीलिंग के आ रहे हैं उनके ऊपर पड़ने वाला है। आई कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट माई एनर्जी लाइक दिस। माई एनर्जी इज फॉर अ पर्पज ऑफ हीलिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल। एंड जब हम उस इंटेंशन से अपनी एनर्जी को बचाएंगे, सबसे पहले कौन बच जाएगा? हम खुद। हम काम करेंगे, काम करवाएंगे, डिसिप्लिन करेंगे, डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेंगे, लेकिन हिले बिना। इट्स ओनली अ लाइफस्टाइल चेंज। दीज आर लाइफस्टाइल चेंजेस। एनर्जी लाइफ है, ये निकल जाए तो लाइफ खत्म हो जाती है।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।
3: बात पुरानी बड़ी सुहानी, मनात खोलवर रुजलेल्या चित्रपट, साहित्य, संगीत, गाणी यांच्या आठवणींचा नॉस्टैल्जिक खजिना।
4: बात पुरानी बड़ी सुहानी,
3: फक्त रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM वर। संकल्पना आणि सादर करते श्री धनंजय कुलकर्णी।

0: ख्यालों में जय हंगामा, कहाँ भाग रही तू मैं?
1: या अल्लाह,
0: काले से डर गए क्या?
2: हमें काले हैं।

पाका नारंगी की पाका पाता चूचा रंगी चालान जैसे मस्त शराबी हालत रंग बिरंगी।

ಇನ್ನಾಯ ಇದು

0: या घोड़ा चतुरा घोड़ा ये क्या रहा घोड़ा चतुरा घोड़ा चतुरा एक पे रहना या घोड़ा बोलना या चतुर बोलना गा
1: एक चतुर नार करके सिंगार एक चतुर नार बड़ी होशियार मेरे मन के द्वार ये घुसत जात अपने ही जाल में फंसत जात हम मर

ख्वाब और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

आकाश पर दमकते हुए उस प्रकाश पुंज में भी ईश्वर का अंश है और धरती की धूल के कणकण में भी वही समाया है। सच तो ये है कि हम प्राणियों को भी बस उसी शक्ति का साया है।

मैं हूँ गीतांजलि राव, फिल्म एंड टेलीविजन एक्ट्रेस। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एंगर इज अ वेपन जिसको हमने हर परिस्थिति में यूज करना शुरू कर दिया है। व्हाट वी आर नॉट रियलाइजिंग दैट वेपन डजंट वर्क, इट्स नॉट प्रोवाइडिंग एनी रिजल्ट, लेकिन फिर भी हम उसी शस्त्र को बार बार यूज करे जा रहे हैं और उससे चोट दूसरे को नहीं लगती उतनी ज्यादा, वो भूल जाएगा। बॉडी के अंदर भी उसका इफेक्ट होता है, माइंड पर भी होता है। तो अगर हम ये याद रख लें कि ये एक हथियार है मेरे हाथ में जिससे मैं दूसरों को मारने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका किसी और पर कोई अच्छा इफेक्ट नहीं होने वाला है, वो सिर्फ मेरा ही नुकसान करे जा रहा है, तो हम उसको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली खत्म कर देंगे। बहुत ईजी है खत्म करना, इट्स जस्ट दिस अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। कि दूसरा, सबसे पहला निवारण यही होगा कि दूसरा मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, ये खुद मेरे हाथ में। तो आधा तो इसी से खत्म हो जाता है, क्योंकि अभी तक हमेशा कोई और मुझे गुस्सा दिला रहा। ये अंडरस्टैंडिंग ही अपने आप, क्योंकि मैं खुद से गुस्सा नहीं करना चाहूंगी जब मुझे समझ में आ गया कि उसका इतना डैमेज है, लेकिन मैं खुद से नहीं कर रही ना, आप मुझे दिला रहे हैं, तो देन आई फील कि नथिंग इज इन माई कंट्रोल। सो दैट इट सेल्फ चेंजेस सो मच ऑफ द पर्सपेक्टिव देखने का।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आप एकताहित रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आप उन्हें कहता है रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: दीवाना।
5: एक दीवाना शहर में।
4: एक दीवाना नहीं, एक दीवानी भी।
5: दो दीवाने शहर में।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नो स्मोकिंग जोन जैसे बन गए हर जगह, वैसे नो एंगर जोन। इधर गुस्सा नहीं कर सकते, आया है तो बाहर जाओ, कर क्या, यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ नहीं कर सकते। क्यों स्मोकिंग के लिए क्यों अलग जगह बनाई, क्यों नहीं कर सकते सबके बीच? क्योंकि कर आप रहे हैं, नुकसान हमारा हो रहा है। इसी तरह गुस्सा कर आप रहे हैं, सारे वातावरण में और सब लोगों का नुकसान हो रहा है। तो आप जाइए, वहां वो कमरा है, उधर गुस्सा करिए, वापस आइए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रेडियो कुनेरी आवाज 107.8 FM, आनंद रहा आनंद लो।
1: खुशियों की पुहार लाएगी हर दिन त्योहार, अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। सेल्फ मैनेजमेंट की इस पूरी श्रृंखला में खुद को मैनेज करते हुए जब खुद को एक नए अंदाज से देखा तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी सामने आई, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जब देखा तो सबसे पहले अपने प्रति थी। और साथ ही हम बात कर चुके हैं रिलेशनशिप्स की। अब आगे बढ़ते हैं और रोल्स के बारे में जानते हैं कि कितने तरह के रोल्स हम हर रोज निभा रहे होते हैं और कैसे उनको मैनेज करना है। हमसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। अगर पीछे मुड़कर देखते हैं तो रिलेशनशिप्स भी समझ में आए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब समझ में आई, और सेल्फ के साथ रिश्ता कैसे जोड़ना है, खुद के प्रति जो जिम्मेवारी है वो। अब रोल की बारी आती है, तो क्या मैं अपने रोल्स को देखूंगा, किस तरह से मैं रोल्स को आगे मैनेज कर सकता हूँ।
1: सेल्फ मैनेजमेंट मीन्स कि एक अवेयरनेस के साथ अब जीवन जीना शुरू करें कि ये हर दिन जो बीत रहा है, हर दिन में जो हर पल बीत रहा है, इट इज लाइक अ सीन ऑफ द ड्रामा। एक सीन, नेक्स्ट सीन, नेक्स्ट सीन, सीन्स आफ्टर सीन्स आफ्टर सीन्स इज अ सीक्वेंस ऑफ ऑल द टाइम पुट टुगेदर इन द होल डे। एंड हर सीन में व्हाट एम आई डूइंग? आई एम जस्ट प्लेइंग अ रोल, बिकॉज हमें समझ में आ गया कि आई एम द एक्टर एंड दिस इज माय रोल। लेकिन एम आई कॉन्शियस व्हाइल प्लेइंग द रोल?
0: आई थिंक नेवर। और एक यहाँ से मुझे एक और बात समझ में आ रही कि जैसे ही मेरी सिचुएशन चेंज होती है मेरा रोल भी तो चेंज हो जाता है। कितनी बार, मतलब मैं पहले अगर हस्बैंड था, उसके बाद जब मैं फादर बना, सडनली देयर इज अ मेजर रोल चेंज, यू नो। और अगर मैं पहले बैचलर था और फिर मेरी शादी हुई तो मेरे और कितने सबके साथ रिश्ते जो है वो चेंज, उसकी कॉन्शियसनेस तो कभी भी नहीं रही।
1: So one is all these roles that I play, लेकिन ये जो आपने नाम भी लिए कि मैं हस्बैंड था, मैं फादर हूँ, मैं कल को ग्रैंडफादर भी बनूंगा, all these roles that I play, इसमें भी I play roles. You see, role means कि हर सीन जो आई उस सीन में मैंने कैसे इनैक्ट किया, दैट इज माई रोल इन दैट पर्टिकुलर सीन। अब एक है अगर बिना सेल्फ अवेयरनेस के चल रहे हैं, कोई कॉन्शियसनेस नहीं है कि आई एम द एक्टर, तो हर सीन जो आती जाती है एंड एवरी रोल दैट आई प्ले, आई एम नॉट अवेयर कि मैं अपना रोल क्रिएट कर रहा हूँ। आई फील कि मेरा रोल ये क्रिएट हो रहा है आपकी वजह से, सिचुएशन की वजह से। क्यों? इट कम्स बैक टू द बिगिनिंग ऑफ आर सीरीज कि जब हम कह रहे थे कि माई रिस्पॉन्सेस आर बेस्ड ऑन द सिचुएशन, या मेरा जो रिस्पॉन्स है वो परिस्थिति या लोगों पर बेस्ड है। इसका मतलब मैं जो अभी इनैक्ट कर रही हूँ वो किस पर बेस्ड है,
0: क्योंकि जैसे सिचुएशन आती गई मैं उस पर।
1: सो इट वॉज एज इफ सिचुएशन एंड लोग आर रिस्पॉन्सिबल जिसके कारण आई एम प्लेइंग दिस रोल लाइक दिस।
0: ओके, दे आर इंस्टिगेटिंग मी टू बिहेव लाइक दिस और एक्ट लाइक दिस,
1: राइट? तो फिर हम समझते थे कि मेरा रोल ऑलरेडी फिक्स।

0: फिक्स्ड है। हम ये कहते थे कि डेस्टिनी ऑलरेडी फिक्स्ड है, भाग्य मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, मैं तो सिर्फ उसको प्ले कर रहा हूँ ना। इसमें फिर कोई क्रिएटिविटी नहीं चाहिए कि मेरा रोल ऑलरेडी फिक्स्ड है और ये तो मैं सिर्फ करता जा रहा हूँ, ये मेरे हाथ में नहीं है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग।
1: दिस इज एक्सपेक्टेड ऑफ मी एज अ ग्रैंडफादर, एज अ फादर, दिस इज एक्सपेक्टेड ऑफ मी
0: एंड दिस इज फिक्स्ड एंड आई एम प्लेइंग इट लाइक दिस बिकॉज ऑफ यू। आई एम इनएक्टिंग दिस पर्टिकुलर सीन लाइक दिस बिकॉज ऑफ यू। जो भी मेरा अभी रिस्पॉन्स है, जो मेरा व्यवहार है, जो मेरा बात करने का तरीका है, इट इज बिकॉज ऑफ यू। तो इसलिए मेरे पास बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी नहीं थी कि अपने रोल को कैसे प्ले करना है, क्योंकि हमने सोचा डायरेक्टर कोई और है, क्रिएटर कोई और है, मैं तो सिर्फ एक एक्टर हूँ और मैं वो जो किसी ने फिक्स किया हुआ मेरा रोल, मैं उसको प्ले कर रहा हूँ। लेकिन जैसे जैसे हमें ये अवेयरनेस आती गई कि एवरी रिस्पॉन्स स्टार्ट्स विद माय थॉट, सिचुएशन आई, मैंने थॉट क्रिएट किया, तो जब ये फर्स्ट फंडामेंटल रिस्पॉन्स समझ में आया कि मेरी थॉट मेरी चॉइस है, इसका मतलब मेरा रोल मुझे कैसे प्ले करना है वो
1: मेरी अपनी चॉइस है,
0: मेरी चॉइस है। सो बेसिकली सेम लाइफ, सेम रिलेशनशिप, सेम सो कॉल्ड रोल्स, बट नाउ आई विल क्रिएट द रोल
1: The way I want
0: to do it.
1: But we always say the director is one.
0: Who's the director?
1: He is directing, you know.
0: Now again, we understood what's God's role. हमने पिछले एपिसोड में देखा कि परमात्मा का क्या रोल है हमारे जीवन में। जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं आज व्यवहार कर रहा हूँ, क्या उसको परमात्मा कंट्रोल कर रहा
1: है? नहीं, that is not there.
0: Yeah, no. That is not there. So I cannot say he is creating the role for me. He can give me the wisdom and the power, लेकिn who creates my role?
1: I create
0: my role. तो अगर मैं एक दिन भी इस अवेयरनेस के साथ चलूं कि सीन आफ्टर सीन आई नॉट ओनली प्ले द रोल बट आई क्रिएट द रोल,
1: आई क्रिएट द नेक्स्ट सिचुएशन, आई क्रिएट द एंड आई स्टार्ट एक्टिंग इट दैट वे, आई कैन एक्ट दिस वे, आई कैन एक्ट दिस वे।
0: हाँ, सी ना, फिक्स्ड नहीं है, फिक्स्ड नहीं है। हर सिचुएशन में, कोई भी परिस्थिति में, आज आपसे किसी ने बुरा भला कह दिया, वो एक सीन है। You can act this way, you can act this way, you can, there will be at least five different ways जिसमें आप act कर सकते हैं। इसका मतलब as an actor आपका role fixed नहीं है, आपके पास choice है कि आप किस तरह से उसको enact करना चाहते हैं। आपकी script already लिखी हुई नहीं है। This is a very big thing. ये बहुत बड़ी realization हो जाती है। और उससे क्या होगा अगर हम उस अवेयरनेस से चलेंगे?
1: Oh, it's so beautiful. Only the situation comes. See, अगर हम थिएटर में भी है, अगर मैं प्ले कर रही हूँ और मेरे पास प्री जो रिटन डायलॉग्स नहीं है, इट्स ओनली द सिचुएशन, देन हाउ आई हैंडल इट, इट्स माय चॉइस।
0: तो कितना क्रिएटिव हो जाएगा ये सर।
1: इट्स अमेजिंग।
0: फिक्स्ड नहीं है कि आपने लाइंस पूरी याद की हुई है, आपको सिर्फ बोलना है। नहीं, उसमें कोई अवेयरनेस नहीं चाहिए, वो तो एक ऑटोमेटिक जो याद किया हुआ बोल रहे हैं। लेकिन एक है सिचुएशन आई, आपने परिस्थिति को परसीव किया, अपनी क्रिएटिविटी को यूज किया कि इस सिचुएशन में मुझे कैसा रोल प्ले करना है और उसको प्ले किया। अब वही सिचुएशन में डिफरेंट एक्टर्स विल प्ले डिफरेंटली,
1: बट आई कैन देन टेक द प्ले इनटू अ डिफरेंट डायरेक्शन।
0: एब्सोल्युटली, एंड दैट इज व्हाई वी सेड यू क्रिएट योर डेस्टिनी। व्हेन वी सेइंग आप अपना भाग्य, अपनी डेस्टिनी खुद क्रिएट करते हैं, दैट मींस यू कैन टेक द प्ले
1: इनटू अ डिफरेंट डायरेक्शन, इनटू अ डिफरेंट, ओह कंप्लीटली
0: डिफरेंट, बेस्ड ऑन हर सीन में आप क्या क्रिएटिविटी यूज करेंगे। अगर कोई अपनी क्रिएटिविटी को नहीं यूज कर रहा, तो दैट पर्सन इज वर्किंग इन अ वेरी ऑटोमेटेड मोड। वो आया, मैंने ऐसे बोल दिया, वो सीन आई, मैंने ऐसे कर दिया, उसने गुस्सा किया, मैंने कर दिया, उसने इंसल्ट की, मुझे बुरा फील हुआ। क्रिएटिविटी नहीं है, ऑटोमेटेड है। तो उसमें फिर जीवन कैसे हो जाएगी? इट बिकम्स बोरिंग। इट इज ऑटोमेटिक, अपने आप ही चल रहा है, मुझे कुछ बहुत ज्यादा उस पर सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस दिन मैंने जीवन को इस तरह से देखना शुरू किया कि हर सीन में मेरा क्या रोल होने वाला है, मुझे कैसे रिएक्ट करना है, दैट्स टोटली माय चॉइस, माय होल वे ऑफ लुकिंग एट इट इज गोइंग टू चेंज।
1: इनफैक्ट इससे पता है क्या, एक बहुत बड़ी बात और क्या हो सकती है कि हमारा जो माइंड है, जो अभी ऑलरेडी जो जो चीजें मेरे साथ हो चुकी हैं, उन्हीं पे अपना टाइम वेस्ट करता रहता है कि मेरे साथ ऐसा हो गया, उसने ऐसा किया, उसकी बजाय विल बी नाउ वर्किंग कि मैं कैसे सिचुएशन
0: इन द प्रेजेंट।
1: यस,
0: इतनी सारी जो आज हम मैनेजमेंट वर्कशॉप सुनते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, व्हाट इज इट अबाउट? प्रेजेंट में कैसे जीतें, पास्ट और फ्यूचर को फिनिश करें, लेकिन प्रेजेंट में क्यों नहीं जी पा रहे, क्योंकि प्रेजेंट में क्रिएटिविटी की जरूरत ही नहीं है, ये ऑटोमेटिक मोड में चल रहा है, ये ऑटोमेटिक मोड में चल रहा है। आप देखो, जब एक लेट्स से कि हम एक रास्ते पर जाते हैं घर से ऑफिस, अब घर से ऑफिस रोज जाते हैं, घर से ऑफिस रोज जाते हैं, यू नो आफ्टर सम टाइम आप पूरा रास्ता कवर कर सकते हैं बिना कोई अवेयरनेस के, बिना मतलब आप बिल्कुल कुछ कुछ कुछ और सोचते सोचते आपको पता ही नहीं चलेगा आप एक घंटे में ऑफिस पहुंच गए, राइट? लेकिन एक नए रास्ते पर जाना है तो आप कितनी अवेयरनेस से चलते हैं, अच्छा अब यहाँ जाना है या यहाँ जाना है, यहाँ जाना है फिर यहाँ टर्न करना है, आप रास्ते में चीजों को देखेंगे, लेकिन जहां आप उसी पैटर्न पर रोज जा रहे हैं doesn't require any awareness. That means आपने वो पूरा एक घंटा जर्नी की लेकिन you were not present. आप किसी और चीज के बारे में सोच रहे थे. इसी तरह आप जीवन की पूरी यात्रा में जर्नी कर रहे हैं, आप रास्तों पर जा रहे हैं, आप सीन्स में आ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन I am not there because I'm not needed there, because मैं अपना response choose ही नहीं कर रही, fixed किए हुए responses. कोई गुस्सा करेगा तो मुझे गुस्सा करना ही है, तो उसमें क्रिएटिविटी की क्या जरूरत है अभी? तो विदाउट अवेयरनेस आई वॉज गोइंग थ्रू द जर्नी ऑफ लाइफ, कुछ और सोचते सोचते, तो इधर द पास्ट और द फ्यूचर, एंड उसमें प्रेजेंट वाला मिनट कब निकल गया पता ही नहीं चला. अब जैसे ये अटेंशन आ जाएगी कि हर मिनट एक नया सीन, नया सीन, नया रोल, एंड माई चॉइस हाउ टू प्ले, फिर टाइम है पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचने का.
1: दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, देन यू नो लाइक अवेयरनेस में फिर हम एक्टिव रहेंगे, हम एक्चुअली यू नो ऑल हमारी सेंसेस जो हैं वो तैयार रहेंगे कि हाउ कैन वी इनोवेटिवली डू.
0: एब्सोल्युटली. तो फिर जो बात हो रही है बार बार, हाउ टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, यू नो द क्वेश्चन इज कि हर एक को ये पता है कि पास्ट और फ्यूचर इज वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी, लेकिन हाउ टू डू इट, क्यों हमारा मन बार बार पास्ट में जा रहा है? क्योंकि उसके पास प्रेजेंट में करने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग है नहीं. अनलेस आई हैव समथिंग इंटरेस्टिंग टू डू. ऑफिस में देखो, काम हम करते हैं, कई लोगों का काम होता है जो बहुत मोनोटोनस होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत मोनोटोनस है. थोड़े समय के बाद करने के बाद आप वो काम करते जा सकते हैं विदाउट बीइंग देयर. आपका मन घर बैठ सकता है और आप अपना सारा यहाँ काम खत्म कर सकते हैं. लेकिन अगर आपका कोई काम है विच रिक्वायर्स अ कंटिन्यूस अवेयरनेस, डिसीशन, एक्यूरेसी, फिर आपके पास टाइम नहीं है यहाँ और वहां की बातें सोचने के लिए, क्योंकि मन फुल कॉन्सेंट्रेशन से उस मोमेंट के ऊपर है. नाउ लेट्स जस्ट लुक एट आवर लाइफ लाइक दैट, कि एवरी मिनट अवेयरनेस, हाउ टू चूज द रोल, जीवन कैसे हो जाएगी. एंड मेन चीज उसमें जो आएगी, इट विल बिकम फन,
1: इट विल बी एक्साइटिंग.
0: एक्साइटिंग, या इट्स गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ
1: फन. जो एक वो थकान से हम भर चुके होते हैं, बिकॉज़ देयर इज नथिंग एल्स टू डू, देयर इज नथिंग.
0: अगर आपको मोनोटोनस काम करना हो तो उसके एंड ऑफ द डे कैसे फील होता
1: है?
0: लेकिन अगर क्रिएटिव काम करना हो, यू एंजॉय, आप कितना भी काम कर सकते हैं सारा दिन, एंड येट यूल से मोर मोर,
1: आई कैन, ऊर्जा बची रहती है,
0: क्योंकि क्रिएटिविटी इज द नेचर ऑफ द सोल. हर आत्मा का जो हमने देखा था पर्पज ऑफ लाइफ है, इज टू एक्सप्रेस एंड एक्सपीरियंस, लेकिन वो कब होगा? व्हेन आई एम क्रिएटिव, कि हर रोल मुझे कैसे प्ले करना है. तो अपने रोल्स को देखें. आज क्या हुआ, हमने कहीं ना कहीं फिक्स कर दिया, हमने ये सोचा आई हैव टू प्ले द रोल. टुमोरो पूरा दिन बिताएं, आई हैव टू क्रिएट द रोल, नॉट प्ले द रोल. प्ले द रोल ऐसे लगता है किसी और ने लिखा हुआ है, आई हैव टू प्ले. अगर हम इस कॉन्शियसनेस से चलते हैं कि मैं क्रिएटिव नहीं हूं, मुझे तो सिर्फ रोल प्ले करना है, तो मेरी दो चीजें बहुत लिमिट हो जाती हैं, एंड वो है फ्लेक्सिबिलिटी एंड क्रिएटिविटी. मेरे पास कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, I am going to respond only in that very fixed, rigid way. And kyunki flexibility nahi hai, creativity nahi hai, meri andar ki jo anubhuti hai, jo experience hai, it's going to be very, because stagnant ho jayenge, hum wohi cheez, you know, same cheez roz play kar rahe hain. To aap life ko jo enjoy karna hai, isi liye aaj kisi se bolo, kaisa hai, chal rahe hai, ho raha hai, enjoyment wali feeling, excitement wali feeling, नो, बिकॉज उनके लिए हर दिन वो सेम बन चुका है. सेम उसी तरह उठना, उसी तरह बच्चों को उठाना, उसी तरह ऑफिस जाना, वापस आना, मोर और लेस एवरी डे इज बिकमिंग लाइक सिमिलर. फिर हम कहते हैं कुछ चेंज चाहिए, यू नो दैट इज व्हाई देयर इज दिस डीप डिजायर कि कुछ चेंज चाहिए, चलो हॉलीडे पे जाके।
1: हाँ, मैं वही कहने लगी थी कि स्ट्रेट हॉलीडे पे ले जाते हैं, वहां पे भी बैठे रहते हैं या स्विमिंग पे चले जाते हैं जनरली अगर हम देखें
0: तो। चेंज की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि यहाँ कोई भी चीज अगर हम बार बार करेंगे तो उसके बाद उसके अंदर कुछ एक्साइटमेंट नहीं रहता, सो वी लुकिंग फॉर अ चेंज। लेकिन इफ वी लुक फॉर दैट एक्साइटमेंट एवरी डे, यू रियली वुडंट नीड अ सेपरेट हॉलीडे, बिकॉज एवरी डे वुड बी एक्साइटिंग के हर रोज कुछ नया करना है। हम नया फिर से सिचुएशंस में ढूंढ रहे हैं। सी, हम नया कहाँ ढूंढ रहे हैं कि कहीं सिचुएशन चेंज हो तो कुछ नया हो। अब सिचुएशन हर टाइम नहीं चेंज हो सकती। आप कितनी बार ऑफिस से हॉलीडे पर जाएंगे? फाइनली आपको 365 डेज में से 11 महीने या 11.5 महीने तो ऑफिस में ही काम करना है ना। आप साल में 15-20 दिन ही हॉलीडे जा सकते हैं। डज दैट मीन कि नया विल बी जस्ट फॉर 15 डेज and the rest 11.5 months the same boring way? No. Why not make every day exciting? And वो तब होगा कि situation नई हो वो नहीं, उसी situation में मैं कोई नया response create करूँ,
1: मैं नहीं हो जाऊँ।
0: हाँ, creativity here, not necessarily creativity in event, creativity in situation, creativity in responses. Is that possible? A creativity in a response? कि वो ही situation, वो ही बॉस, वो ही पेरेंट, वो ही हस्बैंड, बट आई विल लुक एट अ डिफरेंट वे ऑफ रिस्पोंडिंग
1: एंड आई सडनली बिकम वेरी नाइस।
0: हां, व्हाटएवर यू कैन चूज
1: दैट, अदरवाइज नाइस से अगर इफ आई सडनली बिकम वेरी बैड,
0: क्रिएटिविटी बट विच विल गिव यू अ फीलिंग ऑफ
1: हैप्पीनेस,
0: सैटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट। अभी क्या हुआ, हम बहुत सारे रोल्स प्ले करते हैं लेकिन मेजरली हमने दो रोल्स में अपने आप को फिक्स किया हुआ है। वन इज एट वर्क, वन इज एट होम। ये दो रोल्स हैं जिसमें हम एकदम से अपने आप को टाइट पकड़ लेते हैं लेकिन हम उसमें क्रिएटिविटी नहीं ढूंढते और हम बहुत सीरियसली उन रोल्स को प्ले करना शुरू कर देते हैं। दिस इज माय रोल, यू नो, एंड इस रोल को मैंने इस तरह से प्ले करना है। और जहां उस रोल में हम बहुत सीरियस हो जाते हैं वो मजा खत्म हो जाता है। दैट फन ऑफ प्लेइंग द गेम इज ओवर। जैसे जो आपने कहा पोजिशन, यू नो आई एम अ मदर या आई एम अ मैनेजर, ये फिक्स्ड हो गई है तो पोजिशन को ही रोल समझ लिया। अब क्या होगा, एक ऑफिस का लीडर है या मैनेजर है या चेयरमैन है जो भी, इफ ही सेज आई एम द मैनेजर दैट्स इट, देन वो अपने रोल को हर रोज किस तरह से प्ले करेंगे,
1: मैनेजर के रूप में या चेयरमैन के रूप में।
0: परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, इम्प्लॉइज कितना भी उतार चढ़ाव से गुजर रहे हो, मैं तो बॉस हूँ। तो अगर मैंने अपने आप को सिर्फ उसी पोजीशन में
1: क्रिएट दैट इमेज, यू नो आई हैव टू कंटिन्यू टू मेंटेन दैट इमेज ऑफ बीइंग अ बॉस,
0: तो मैंने अपनी पोजीशन को सिर्फ अपना रोल बना लिया कि दिस इज माय रोल, आई हैव टू बी द बॉस। सामने आपके एम्प्लॉय बैठा है, वो उदास है, वो परेशान है किसी बात से, लेकिन मैं तो बॉस हूँ। आई कैन नॉट सडनली बिकम वेरी फ्रेंडली विद हिम और समथिंग बिकॉज हु एम आई, आई एम द बॉस। नाउ व्हाट इफ टुमारो द बॉस गोज टू द ऑफिस with this awareness कि yes ये मेरी position है लेकिन ये मेरा role नहीं है। role could be different in different situations। मैं कभी boss का role play करूँ लेकिन position boss की है, कभी मैं एक motivator का role play करूँ, कभी मैं counselor का role play करूँ। कोई दर्द में है, कोई confusion में है, कोई दो लोगों की आपस में कुछ conflict हो गई है, कभी मैं एक mediator का role play कर दूँ उन दोनों के बीच में, कभी मैं इवन एक पेरेंट का रोल प्ले कर सकती हूँ ऑफिस के अंदर। इज दैट पॉसिबल? बट दैट विल ओनली हैपन व्हेन आई लुक एट द रोल विद क्रिएटिविटी। लेकिन अगर मैंने सोचा
1: ऑन द अदर हैंड आई हैव टू बी वेरी वेरी यू नो लाइक, क्योंकि मैं बहुत फियरफुल होता हूँ, मुझे ये डर होता है कि एक बार मैंने गिव इन किया तो वो दिल स्टार्ट टेकिंग मी फॉर ग्रांटेड, यू नो मैं उनके साथ उस लेवल पर बात अगर करने लग गया तो फिर तो यू नो,
0: तो दैट इज द फियर। बट वी आर नॉट रेडी टू एक्सपेरिमेंट। जस्ट Try and imagine कि अगर एक बॉस सिर्फ एक पोजिशन को नहीं स्टिक करके इस तरह से अलग अलग रोल्स प्ले करे तो वर्क एनवायरमेंट कैसा हो जाएगा?
1: वेरी स्मूथ एक्चुअली,
0: वेरी लाइट, वेरी लाइट, एंड जो आपस की सबकी बॉन्डिंग होगी बहुत कंफर्टेबल हो जाएगी। सेम विद अ पेरेंट एंड अ चाइल्ड। मैं फादर हूँ, मैं मदर हूँ सिर्फ नहीं, मैं एक फ्रेंड भी हो सकता हूँ। अगेन अ पेरेंट कैन बी अ काउंसलर। हमें स्कूल में काउंसलर की क्यों जरूरत है? हमें स्कूल में हाउ कैन वी नीड अ काउंसलर इन स्कूल? एक पेरेंट एक काउंसलर हो सकता है, एक पेरेंट एक फ्रेंड हो सकता है, पेरेंट एक मोटिवेटर हो सकता है। लेकिन अगर वो सिर्फ पेरेंट है देन बहुत रिजिडिटी आ जाएगी.
1: इनफैक्ट पेरेंट एक टीचर हो सकते हैं. पेरेंट एक
0: टीचर हो सकते हैं.
1: टॉक अ लॉट, यू नो, कि बहुत सारे पेरेंट्स ये कहते हैं कि बच्चा हमसे नहीं पढ़ता है इसीलिए मुझे एक ट्यूटर चाहिए, कि मुझसे तो पढ़ेगा ही नहीं, मेरी तो बात ही नहीं सुनता वो. मतलब इट्स अमेजिंग.
0: एंड टीचर नॉट नेसेसरी ओनली इन सब्जेक्ट्स बट टीचर इन सो मेनी थिंग्स. आजकल हम पेरेंट्स से बात करते हैं कि बच्चे यू नो इमोशनली थोड़े से वीक हो रहे हैं, वी नीड टू मेक देम स्ट्रॉन्गर. दे'ल से दैट इज द रोल ऑफ द टीचर, दैट्स द रोल ऑफ द स्कूल. व्हाई इज दैट नॉट माय रोल? हमने सोचा हमने तो उनको इतने अच्छे स्कूल में भेज दिया, बाकी सारा काम वहां होना चाहिए. तो कल अपनी पोजिशन से हटकर उसको एक रोल की तरह देखें. पोजीशन से अटैच हो जाते हैं कि मैं बॉस हूं और फिर मुझे बॉस ही बनकर रहना है. तो हम उससे हम भी सफोकेटेड हो जाते हैं. इफ यू सी सर्टेन पीपल एट अ वेरी सीनियर पोजीशन, वो हंसेंगे भी नहीं खुल के. दे विल सिट सो अथॉरिटेटिवली क्योंकि दे वॉन्ट टू रिमेन इन दैट पोजिशन, क्योंकि उन्होंने सोचा यही पोजिशन है और यही बना के रखना.
1: अच्छा, ये पर कई लेवल्स पर सिखाया भी जाता है. ट्रेनिंग का भी तो पार्ट है. समवेयर वी आर सो मच स्टक विद द ट्रेनिंग पार्ट कि हमें इसको मेंटेन करके रखना है, तो उसे अनडू करने की कितनी जरूरत है.
0: एवरीवन हैज टू आस्क देमसेल्फ्स, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग राइट फ्रॉम चाइल्डहुड ज्यादा इसी प्रकार की रही है, पोजीशन ओरिएंटेड. आपको ये बनना है, आपको ये बनना है. क्रिएटिविटी कभी उसका बहुत ज्यादा हिस्सा रही नहीं है. और इसीलिए हमने कहा कि हमें लोगों ने सिखाया क्या पढ़ना है, क्या बोलना है, कैसे चलना है, लेकिन क्या सोचना है वो कभी टॉपिक में था ही नहीं. आर्ट ऑफ थिंकिंग वो नहीं था. तो जब आर्ट ऑफ थिंकिंग नहीं था तो आर्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग नहीं होगा. वो एक सेट पैटर्न था कि आप मदर हैं तो ऐसी मदर होनी चाहिए, फादर हैं तो ऐसे. बट नो, इट्स द सेम थिंग. आई कैन जस्ट प्ले इट इन डिफरेंट वेज. एंड जितना हम उसको क्रिएटिवली प्ले करेंगे, हम उसको एंजॉय करेंगे, उस रिलेशनशिप को भी एंजॉय करेंगे. क्योंकि आज आप देखो, एक पेरेंट और चाइल्ड, एक चाइल्ड अपने पेरेंट के अंदर कन्फाइड क्यों नहीं कर पा रहा है? अगर एक बच्चे की कोई भी इश्यू है वो बाहर वालों को अगर बता सकता है, पेरेंट को क्यों नहीं बता सकता है? क्योंकि वो पेरेंट सिर्फ पेरेंट है. वो पेरेंट अगर फ्रेंड भी बन जाए तो एक बच्चे को बाहर किसी फ्रेंड को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
1: और पेरेंट को भी किसी फ्रेंड की जरूरत नहीं पड़ेगी. यू नो व्हाट, समवेयर पेरेंट्स घर जब आ जाते हैं तब भी वो अपने दोस्तों से या मित्रों से उतने फोन पे बात कर रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि बच्चा मेरा दोस्त बन सकता है. यू नो, यू कैन एक्चुअली, बच्चा बहुत अच्छा दोस्त बन सकता है आपका. आई हैव एक्सपीरियंस इट कि वो आपको इतनी अच्छी सलाह दे सकता है जो कहीं बाहर का कोई मित्र नहीं दे सकता.
0: नाउ दिस इज क्रिएटिविटी. इसलिए इसको एक्सपेरिमेंट करना है. नॉट नेसेसरी कि पहले हमने जो पढ़ा है वो गलत है या जो हम यहाँ अभी शेयर कर रहे हैं वो नॉट नेसेसरी. उसको करके देखना है कि हाउ डू यू फील. लेकिन वो तभी होगा व्हेन वी आर वर्किंग विद द राइट कॉन्शियसनेस कि आई एम एन एक्टर, दिस इज जस्ट अ पोजिशन बट एक्चुअली इट्स अ रोल एंड आई एम प्लेइंग द रोल एंड आई एम नॉट प्लेइंग इट बट आई एम क्रिएटिंग द रोल. हर सीन में सिर्फ ये याद रखना है, How do I want to create my role in this scene? तो आपको कैसे भी सीन मिले, कहीं बहुत उतार चढ़ाव की भी सीन मिले, तो you still have a choice. It's again going back to that fundamental line, I have a choice. Her situation में I will choose how to play the role. So first thing that we have to try, position consciousness, नहीं, actor consciousness, कि मैं actor हूँ, I'm playing the role. दूसरी रीजन जो हम बहुत सीरियस हो जाते हैं ये करते करते इज बिकॉज हम रोल से ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं
1: और रिस्पॉन्सिबिलिटी मान लेते हैं अपने, मेरा कर्तव्य है ये.
0: लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी ज्यादा आइडेंटिटी बन जाती है वो,
1: यही मैं हूँ.
0: तो यही मैं हूँ तो फिर फ्लेक्सिबिलिटी की मार्जिन नहीं आती, क्योंकि हमने देखा कि अपना परिचय न होने के कारण हम रोल से आइडेंटिफाई कर लेते हैं. और जैसे ही हम रोल से आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो फिर हम हर सीन में उसको वैसे ही प्ले करेंगे क्योंकि यही मैं हूं. तो फ्लेक्सिबिलिटी का क्वेश्चन ही नहीं होता. आई एम अ पेरेंट, इट्स नॉट आई एम अ सोल प्लेइंग द रोल ऑफ अ पेरेंट.
1: एक्चुअली डजंट कम, यस, यू नो, उस वक्त आपको वो छोड़ देता है थॉट कि आई एम अ सोल, यू नो.
0: व्हेन आई अंडरस्टैंड दैट आई एम द सोल प्लेइंग दिस रोल, तो एक डिटैचमेंट आ जाएगी फर्स्ट. एंड डिटैच्ड होके जो भी रोल प्ले करेंगे वो रोल पहले से भी
1: अच्छा
0: ज्यादा होगा. जब रोल में फिक्स होकर प्ले करते हैं तो कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी होती है. देखो, व्हेन आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद द रोल, तो उस आइडेंटिटी को बचाने के लिए, जितने फियर्स है मेरे मन में उस आइडेंटिटी को बचाने के लिए, आई कैन बी अग्रेसिव, आई कैन बी डिफेंसिव. इफ लेट्स से माय आइडेंटिटी इज मैं बॉस हूँ, अब आप मेरे से जरा हंस के बात करो थोड़ा सा, तो मुझे डर लगने लगेगा कि वो जो मेरा बॉस का इमेज है वो कहीं यू नो कहीं ये मुझे जैसे आपने कहा फॉर ग्रांटेड ना ले ले, तो फिर मैं तुरंत अग्रेसिव हो जाऊंगा क्योंकि मैंने सोचा आई हैव टू गिव यू द मैसेज प्लीज रिमेम्बर, यस प्लीज रिमेम्बर हु एम आई, आई एम द बॉस एंड यू बेटर टॉक टू मी जस्ट लाइक अ बॉस. सेम विद द पेरेंट एंड द चाइल्ड, पेरेंट इमिजिएटली वो सिग्नल कन्वे करेगा बच्चे को, यू प्लीज रिमेम्बर आई एम द पेरेंट. That doesn't mean कि हम rudeness आने दें या you know misbehavior आने दें, लेकिन कोई हल्कापन, एक you know lightness relationship के अंदर, that's a part of the you enjoy that relationship. लेकिन जहाँ हर relationship को उतना tightness से पकड़ा कि ये how could he talk to me like this, how could he behave with me like this, because who am I, I am this. तो कहीं ना कहीं हमारा फिर जो बिहेवियर होता है वो अग्रेशन की तरफ या यू नो वो विड्रॉल की तरफ चला जाता है, जस्ट बिकॉज मैं इनसिक्योर हूँ अपनी वो आइडेंटिटी.
1: इनफैक्ट अगर हम देखें तो अगर क्रिएटिविटी है उस रिश्ते में, फन है, वी लुक फॉरवर्ड टू यू नो बीइंग
0: विद दोस पीपल, यस एब्सोल्युटली.
1: आप उनसे कन्नी नहीं काट रहे होते बिल्कुल.
0: तो जो हमने पहले डिस्कस किया रिलेशनशिप्स में कि आज हम कट रहे हैं एक दूसरे से, हम कटेंगे नहीं जब हमें ये लगेगा कि एवरी रिलेशनशिप इज अ चांस फॉर मी टू एक्सप्लोर न्यू एवेन्यूज ऑफ माय क्रिएटिविटी, इट विल बिकम अ लॉट ऑफ फन.
1: और जहां जहां थोड़ी मुश्किल भी है वहां पर, मतलब कहीं कुछ खटास या पहले से कुछ थोड़ा डिस्टेंस आया हुआ है, आई कैन ऑलवेज स्टार्ट डूइंग इट नाउ.
0: एब्सोल्युटली, क्योंकि अब आपके पास चॉइस है कि वो रिश्ते में बहुत खटास है लेकिन आप अपने रेगुलर जो मेथड ऑफ एक्टिंग है, प्लेइंग द रोल, उस पे नहीं जाओ. मेक इट क्रिएटिव, क्रिएट अ ब्यूटिफुल न्यू थॉट उस आत्मा के प्रति, जस्ट गो एंड इनएक्ट इट द वे यू नेवर थॉट यू कुड हैव डन इट. अभी मैंने सोचा कि वो मेरे से ठीक से नहीं बात कर रहे तो मैं ठीक से क्यों बात करूं, फिक्स्ड वे ऑफ एक्टिंग द रोल. कल मैं सोचा कम ऑन फॉरगेट ऑल दिस,
1: कंसंट्रेट ऑन योर परफॉर्मेंस,
0: लेट मी गो एंड प्ले इट इन अ वे दैट इवन आई विल सरप्राइज माई सेल्फ. मैं आपको क्या सरप्राइज करूं, मैं तो खुद ही सरप्राइज हो जाऊं कि वो मैंने कैसे कर लिया ये. दैट इज क्रिएटिविटी.
1: एंड कंसंट्रेट ऑन योर परफॉर्मेंस,
0: ओनली माई परफॉर्मेंस. वैसे भी आपके परफॉर्मेंस पर मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मैं सिर्फ कंप्लेन कर सकती हूँ या जजमेंटल हो सकती हूँ. बट इफ आई जस्ट फोकस ऑन माइन, you see how much fun we are going to have in the whole day.
1: Oh, wonderful. Spirituality teaches you fun.
0: Yes. Spirituality is a lot of fun.
1: Yes. That's what we are understanding. Thank you so much, Sister Shivani, aaj ki is puri baatcheet ke liye. Om Shanti.
0: Om Shanti.
1: Ab apne roles पर काम करना शुरू करें, आई थिंक इट विल बी रियल फन. और जो हमारे अंदर का एक्टर छुपा है अपनी परफॉर्मेंस को, जैसे कि सिस्टर शिवानी ने एंड में आई थिंक यू गिवन द पंच लाइन कि अपनी ही परफॉर्मेंस से अपने आप को चकित करते, एक नए अंदाज से खुद हम एक्ट करना शुरू करें, तो वो और वो एक्टिंग जितनी नेचुरल होगी, जितनी हमारी अपनी होगी, उतना हम उसे एंजॉय करेंगे. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में हम हर बार की तरह आपसे यही कहेंगे, ये प्रोग्राम आपका अपना है, ये मंच आपके लिए है. कोई बात, कोई सवाल आपके मन में उठता है, आपका हम स्वागत करते हैं. आप हमें फोन पर या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर है 0999-344-555, 0999-344-666, 0987-366-555, 0999-744-555. हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@bkmail.org. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज इतना ही, लेकिन सेल्फ मैनेजमेंट का ये पूरा सिलसिला आगे भी चलता रहेगा. आप हमारे साथ जुड़े रहिए. आज आपसे विदा लेते हैं. ओम शांति.
2: ब्रह्मा कुमारीज के प्रत्येक सेवा केंद्र पर राजयोग मेडिटेशन निशुल्क सिखाया जाता है. ये कोर्स 7 दिन प्रतिदिन 1 घंटे का है. भारत में बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गाँवों में हमारे 8,000 से अधिक सेवा केंद्र हैं. राजयोग सीखने के लिए और अपने नजदीकी सेवा केंद्र का पता जानने के लिए संपर्क करें

0: साथ हमारे गोरी दूर चली चल जी मैं सा करू रामा।
1: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: ये गुस्से वाले हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। तो मैं तो बच गई, लेकिन आप अपने आप से दूर कैसे रहेंगे? आप सारा दिन अपने आप को कितना चीट कर रहे हैं। किसी को चीट करना क्या होता है कि किसी का नुकसान करना ना, किसी के साथ धोखा करना, किसी का गलत करना, उसी को आप चीटिंग कहेंगे। अपने मन का पल पल पल नुकसान करना, अपनी फीलिंग्स का नुकसान करना, अपनी खुशी को, अपनी शांति को हर थॉट में खत्म करते जाना। दूसरा अगर चीट करता भी, किस चीज के लिए चीट कर लेती? पैसों के लिए कर लेती, बिजनेस में कर लेती, कुछ आप मेरे पे विश्वास करते मैं झूठ बोल देती, इतना ही तो चीट कर सकते हैं। सामने वाला कितना चीट करेगा, हमें क्या चीट करेगा? दूसरे तो हमसे बच गए, दूसरे हमसे डर गए, दूसरे हमसे दूर रहने लगे, लेकिन हमें तो अपने साथ रहना है। द पर्सन हु आई हैव टू लिव विद 24/7, आई नीड टू बी कम्फर्टेबल विद दैट पर्सन। आई हैव टू लिव विद माई सेल्फ। दूसरे तो अपना संभाल लेंगे, सो वी नीड टू से।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

अफवाह और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुणे की आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। अब हम कह सकते हैं कि हमने लाइफ की स्किल्स के बारे में जान लिया है। अब जितना अभ्यास करते जाएंगे, जैसे भी किसी भी स्किल को सीखते हैं तो कहा जाता है कि उसको आप जितना अभ्यास करेंगे, जितनी बार उसको यूज करेंगे, आप उसमें परिपक्व होते जाएंगे, पारंगत हो जाएंगे। तो लाइफ स्किल्स को हम समझ रहे हैं, जान लिया है। अब अभ्यास पर निर्भर करेगा कि हम कितने पारंगत होंगे। कुछ और बातें मेडिटेशन से जुड़ी हुई, अपने आप से जुड़ी हुई जानते हैं। हर बार की तरह हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आप दोनों का स्वागत। ओम शांति। डॉक्टर पटेल, ये पूरी श्रृंखला में बहुत सारे पड़ाव, बहुत सी नई बातें, ऐसी बातें जो सचमुच अभी नहीं पता थी। मेडिटेशन का जो प्रभाव है उसके बारे में हमने बात की। मेडिटेशन पर ही कोई और अगर रिसर्च की गई है तो उसके बारे में भी हमें बताएं।
1: नहीं, जरूर, बहुत अच्छा। मैंने आपको ईईजी स्टडीज के बारे में बताया था, एमआरआई स्टडीज के बारे में बताया था। ऐसे ही मेडिटेशन की जो इमीडिएट इफेक्ट है वो हमारे ऑरा पर है, क्योंकि आत्मा से जो विचार निर्माण होते हैं वो एक सूक्ष्म रूप लेते हैं। हमेशा तीन लेवल है, एक तो आत्मा का लेवल, दूसरा फिजिकल, और उसके बीच में एक लेवल है जिसको हम ऑरा कह सकते हैं। और ये ऑरा को फोटोग्राफ भी किया जा सकता है। और ऐसी भी रिसर्च जो मैंने बताया आपको सर गंगाराम हॉस्पिटल में की थी, वैसे ही ईईजी के साथ साथ एक पीआईपी कैमरा होता है जिसका नाम है पॉली कॉन्ट्रास्ट इंटरफियरेंस फोटोग्राफी। क्यों? पॉली कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करता है और जो हमारा ऑरा है उसको हम फोटोग्राफ कर सकते हैं। उसमें बॉडी में भी डिफरेंट पैटर्न्स निर्माण होती है, साथ साथ में साइड में भी ऑरा के डिफरेंट कलर्स आते हैं,
0: जिसे जिसे हम वो कहते हैं तेज मंडल जो है अपना।
1: हाँ, बिल्कुल। जो, हाँ, जो देवताओं के भी हम दिखाते हैं वह भी उनका एक आभा मंडल ही है। और सेम चीज की गई जो ईईजी रिसर्च में की गई थी, कि कुछ लोगों ने सिर्फ म्यूजिक सुना और दूसरों को मेडिटेशन का अभ्यास कराया गया, और पहले और बाद में उनका ये पीआईपी स्कैन हुआ, उसमें भी जो रिजल्ट्स आए सचमुच बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स थे। जिन्होंने म्यूजिक सुना है उनमें पहले और बाद में पीआईपी स्कैन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, आप चित्र में भी देखेंगे। जिन्होंने मेडिटेशन का अभ्यास किया था उनका जो साइड का ऑरा है वह भी लाइट होने लगा है। अगर रेड कलर है तो पिंक होने लगा है, पिंक से येलो होने लगा, येलो से कुछ लोगों का व्हाइट भी होने लगा। साथ साथ बॉडी में भी जो ब्लॉक्स क्रिएट होते हैं उसमें भी परिवर्तन आया, क्योंकि कोई जो बीमारी होती है पहले तो वो ऑरा में शुरू होती है, फिर शरीर के ऑर्गन्स पर आती है।
0: तो मतलब पहले सूक्ष्म रूप से आ जाती है,
1: फिर बॉडी पर वो रिफ्लेक्ट होती है। उसको कई साल लग सकते हैं। ये पीआईपी स्कैन में भी आप देख सकेंगे कि गले में पूरा रेड पैच है, और मेडिटेशन का अभ्यास किया उसके बाद वो रेड पेज काफी कम हो गया है।
0: एक बार की उतनी देर की मेडिटेशन?
1: हाँ, 20 मिनट की मेडिटेशन में जो सिद्ध करता है कि भले अभी कोई बीमारी नहीं है परंतु आने वाले 3-4-5 साल में उस व्यक्ति को गले की कोई ना कोई बीमारी होगी। और ऐसे अगर वो मेडिटेशन के द्वारा उस ऑरा को क्लियर कर सकता है तो वह बीमारी को भी प्रिवेंट कर पाएगा। एक बहुत बड़ी प्राप्ति है।
0: तो ये सिस्टर शिवानी, मतलब एक बार मेडिटेशन का अनुभव और बार बार हम जो ऑरा क्लिंजिंग पूरा टाइम अल्टरनेट हीलिंग में आजकल हम करते हैं कि ऑरा क्लिंजिंग की बहुत जरूरी है, ऑरा जो है वो क्लियर होना चाहिए, तो मेडिटेशन का आपने कहा 15 मिनट का अभ्यास अनुभव।
2: ऑरा इज व्हाट इट्स लाइक एन एक्सरे ऑफ आवर थॉट्स। जिस क्वालिटी की थॉट्स है उस क्वालिटी के कलर, उस क्वालिटी की इमेज हमें दिखाई दे रही है। एक जिस पर्टिकुलर ग्लैंड पे एक इलनेस आने वाले समय में मैनिफेस्ट होने वाली है, लेकिन वो शुरू तो हो चुकी है, इसलिए उस पर्टिकुलर ऑर्गन के पास जो ऑरा है उसका कलर थोड़ा सा टुवर्ड्स द डार्क है। इस पूरी सीरीज में हम देखते आए हैं जो थॉट्स हम क्रिएट करेंगे वो एनर्जी उस पर्टिकुलर ऑर्गन के उधर यू नो टारगेट होती है, और वहां या तो डिजीज क्रिएट हो सकता है या फिर उस डिजीज को हील भी कर सकते हैं। तो जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं, हम अपनी थॉट्स की क्वालिटी को चेंज कर रहे हैं, तो हमने अपना हीलिंग का प्रोसेस शुरू कर दिया है। एंड दिस पिक्चर इज अ प्रूफ ऑफ दैट कि यहाँ आपने थॉट्स चेंज की, यहाँ आपका उस रीजन के पास का ऑरा चेंज हो गया। लेकिन अब सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि फिर से नहीं वो डाक की तरफ जाए, क्योंकि नॉर्मली ऑरा क्लेंजिंग में भी होता है, ऑरा क्लेंजिंग कराते हैं, थॉट्स को नहीं चेंज करते, तो फिर धीरे धीरे धीरे वो फिर से इमोशनल ब्लॉक्स क्रिएट हो जाते हैं, वो ऑरा फिर से डार्क कलर की तरफ जाता। जो रेगुलर मेडिटेशन प्रैक्टिस करेंगे और सारा दिन में भी अपने थॉट्स पर अटेंशन रखेंगे, तो फिर वो कलर परमानेंटली लाइट की तरफ चला जाएगा। अगर 20 मिनट्स में ये हो सकता है तो डेली करेंगे तो वी कैन इमेजिन व्हाट द मिरेकल विल बी।
0: आई थिंक
1: मेंटेन करने के लिए डेली जरूरी है,
2: डेली करना पड़ेगा।
0: हमने पहले भी जो कितनी बातें की हैं, हर बार हर एफर्ट को हमने एक महीने का टाइम दिया है, तो आई थिंक वी शुड गिव अस वन मंथ
1: और मेबी टू मंथ्स,
0: एक महीना दो महीना, और फिर वो देखें। इनफैक्ट वो तब तो हमें महसूस भी होने लगेगा, पीआईपी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, कि जिस भी बीमारी का अगर है या असंभावना है वो दूर हो सकती है।
1: दिस इज अ साइंटिफिक प्रूफ कि नहीं, हमारे दर्शक भी उस बात को समझे कि अगर इतनी इफेक्ट होती है तो नियमित मेडिटेशन करने से सदा के लिए वो चेंज हो जाएगा।
2: साइंटिफिक प्रूफ इसलिए इज गुड क्योंकि कई बार जैसे हमने जो विजुअलाइजेशन टेक्निक्स भी की, दे विल ओनली वर्क इफ यू हैव कंप्लीट फेथ। अब कई बार साइंटिफिक प्रूफ के बिना आपका कंप्लीट फेथ नहीं डेवलप होता, बीच बीच में आपको थोड़ा सा डाउट आ सकता है। अब वो थोड़ा सा डाउट आपकी पॉजिटिव एनर्जी की बजाय नेगेटिव क्रिएट करेगा, तो आपका सारा वो एफर्ट, इट वोंट गेट द रिजल्ट। इसलिए इस तरह की साइंटिफिक रिसर्च हमारे वो फेथ को कम्प्लीट कर देती है, फिर हम एक्सपेरिमेंट को भी शुरू करते और फिर एक्सपीरियंस हो जाता है।
0: और जो आपने अभी इमोशनल ब्लॉक्स की बात की है, इनफैक्ट अगर हम इसी श्रृंखला में पीछे जाते हैं तो आपने कहा था कि इमोशनल ब्लॉक्स जो है उन्हें रिजोल्व करना, क्योंकि वो अवेयरनेस भी नहीं है। यहाँ तो दिख गया कि अगर पीआईपी करवाया और उसमें दिखा कि ये एक इमोशनल ब्लॉक हो सकता है जो बीमारी में मैनिफेस्ट होगा और सालों साल मेरे साथ दर्द के रूप में भी तो रहा, तो मेडिटेशन ही वो माध्यम था। हाउ डज इट साइंटिफिकली ओपन द ब्लॉक, इमोशनल ब्लॉक कैसे खुलता है?
1: ब्लॉक्स जो है उसमें दो चीजें होती है, एक तो वो उस घटना की याद है वहां पर, और दूसरा उसकी इमोशंस भी है। किसी ने विश्वासघात किया आपके साथ, तो विश्वासघात के समय जो आप में इमोशंस क्रिएट हुए धैर्य, क्योंकि बहुत स्ट्रांग थे, और वह मेमोरी भी है उस घटना की। अब यह दोनों को रिमूव करने की जरूरत है। मैंने साइकोथेरेपी में देखा है कि कई बार वो व्यक्ति थोड़ा इमोशंस को तो समझ जाता है, कुछ हद तक वो रिलीज हो जाता है, परंतु कंप्लीटली वो इरेज नहीं होते हैं। परंतु मेडिटेशन के अभ्यास में न केवल मेमोरी उसकी इरेज होती है, परंतु वो ब्लॉक के साथ जो रिलेटेड इमोशंस है वह भी रिलीज हो जाते हैं। क्योंकि एक तो व्यक्ति एक्सेप्ट करता है कई बार, या उसे माफ कर देता है, जो हमने आगे भी डिस्कस किया था। साथ साथ परमात्मा से जो शक्ति मिलती है, हम सभी संबंध परमात्मा से जुड़ाते हैं, तो वह संबंधों का जो प्यार है, जो सेटिस्फेक्शन है, जब परमात्मा से प्राप्त हो जाता है, तब भी उस ब्लॉक के इमोशंस को इरेज करना संभव है। और जो टेक्निक्स है कि हम रिलैक्सेशन करते हैं, साइकोथेरेपी करते हैं, तो ब्लॉक्स कम तो होंगे, परंतु मैंने अनुभव भी किया कि पूरी तरह से वह नहीं जाते। परंतु अगर मेडिटेशन का अभ्यास रेगुलर किया जाए, मैं तो कहूंगा कि कम से कम 3 मास करना चाहिए। 3 मास आप नियमित मेडिटेशन का अभ्यास करो और जितना हो सके उसकी डेप्थ में जाओ। 3 मास अगर अभ्यास करो तो ब्लॉक्स के अंदर इमोशंस भी है, मेमोरी भी है, तो इमोशंस को भी कम्प्लीटली इरेज करने में मेडिटेशन बहुत मदद करता है।
0: इसी को अगर आगे बढ़ाते हैं तो मैं एक आत्मा, ये हम बार बार कह रहे हैं, तो उसके भी कुछ साइंटिफिक प्रूफ्स हमारे सामने आए हैं, अब इतनी रिसर्चेस हो रही है।
1: बिल्कुल, ये बात अच्छे से समझनी चाहिए। जब हम साइंटिफिकली उसको एक्सेप्ट करेंगे तो फिर अभ्यास भी करेंगे, जब तक एक्सेप्ट नहीं किया अभ्यास भी नहीं करेंगे। और मैं आपको मुख्य रूप से 3 बातें बताना चाहता हूँ। एक बात तो कि जो आज न्यूरोलॉजी भी एक्सेप्ट करने लगी है, ओपन माइंडेड न्यूरोलॉजिस्ट, आज कई लोग तो कंजर्वेटिव होते हैं, उनको जो 30 साल पहले सिखाया गया है वो चेंज ही नहीं करना चाहते हैं, परंतु आज बहुत सारे ओपन माइंडेड न्यूरोलॉजिस्ट भी है जो इस बात को स्वीकार करने लगे कि ब्रेन के किसी भी हिस्से में थॉट्स या इमोशंस प्रोड्यूस नहीं होते, वो बल उसके साथ रिलेटेड है। जैसे हाइपोथैलेमस, वो इमोशंस के साथ रिलेटेड है, परंतु हाइपोथैलेमस में इमोशंस प्रोड्यूस नहीं होते।
0: ओ अच्छा, इमोशंस कहीं और प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उससे इफेक्ट होता है हाइपोथैलेमस।
1: डॉक्टर वेल्डर पेनफील्ड की, जो बहुत ही फेमस न्यूरोसर्जन हुए, तो उन्होंने ऐसी रिसर्च की है और एक किताब भी छपी है, इसका नाम है अंडरस्टैंडिंग ब्रेन, जिसमें उन्होंने माइक्रो इलेक्ट्रोड्स इम्प्लांट किए ब्रेन में, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में भी किए, हाइपोथैलेमस में भी किए, और वो लोकल एनेस्थेशिया में हुए थे, जिसके कारण पेशेंट भी कॉन्शियस थे, अपना अनुभव भी वो सुना सकते थे। जब वेल्डर पेनफील्ड ने माइक्रो इलेक्ट्रोड्स इम्प्लांट किए हाइपोथैलेमस में भी जब किए, तो उन्होंने ये देखा कि एक अजीब से इमोशंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो रियल नहीं है। जब कोई चीज को आप देखते हो तो हमारे में रियल इमोशंस होते, फियर होगा, क्रिटिसिज्म हो सकती है, जेलसी हो सकती है, परंतु उनमें ऐसे नहीं हुए। इवन कुछ पेशेंट्स ने भी कहा, वेल्डर पेनफील्ड ने लिखा भी है कि पेशेंट ने कहा कि डॉक्टर साहब लगता है कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी मेरे इमोशन से ज्यादा पावरफुल है, मेरी विल से ज्यादा पावरफुल है, मैं चाहता हूं कि नहीं हो तो भी ऐसा हो रहा है, और वो रियल इमोशंस नहीं है। और भी कुछ साइंटिस्टों ने इस प्रकार की रिसर्च की है और यह ओपन माइंडेड न्यूरोलॉजिस्ट एक्सेप्ट करने लगे। प्रोफेसर जेसी एकल्स की, जिन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था, उन्होंने तो पूरी किताब इस पर लिखी है जिसका टाइटल ही सिद्ध करता है। उसका टाइटल है सेल्फ एंड इट्स ब्रेन, कि सेल्फ और उसका दिमाग, मतलब सेल्फ अलग है, दिमाग अलग है। तो एक तो ये बात, दूसरी जो बात है कि जो क्रिलियन फोटोग्राफी की हम बात कर रहे थे, कि एक सूक्ष्म विशेष प्रकार की क्रिलियन फोटोग्राफी से जब रशिया में कम्युनिस्ट रूल था तब भी ये रिसर्च हुई और एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है साइकिक डिस्कवरीज बिहाइंड एन आयरन कर्टन, क्योंकि लोहे की दीवार थी वहां, कम्युनिस्ट रूल था, और उस किताब में ऐसी रिसर्च हुई कि जो लोग मृत्यु के बहुत ही नजदीक पहुंच गए थे उनके ऊपर ये रिसर्च हुई, और उस रिसर्च में देखा कि कुछ हर 2-3 सेकंड में उनके फोटोज लिए, काफी जो शुरू के फोटोज लिए गए हैं उनमें ऑरा भी दिखाई देता है और एक प्रकाश भी दिखाई देता है, उसके बाद बस 2-3 सेकंड के बाद जो फोटो लिए गए हैं उसमें वो लाइट गायब हो गई।
0: अच्छा,
1: तो रिसर्चर लिखते हैं कि यह जो प्रकाश था वह शायद कोई फिजिकल नहीं था, अगर वो बायोलॉजिकल प्रकाश होता तो धीरे धीरे मृत्यु के बाद कम होता, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटे के बाद वो कम होता जाता, लेकिन विद इन सेकेंड वो डिसअपियर हो गया, विच शोज दैट दिस इज समथिंग स्पिरिचुअल। तो इससे मुझे भी प्रेरणा मिली कि दिस इज सम डायरेक्ट एविडेंस इज देयर कि आत्मा का अस्तित्व है,
0: और यहीं पे लाइट थी वो।
1: हाँ, यहीं पर लाइट थी ना, बिल्कुल।
0: ओके, और बाकी ऑरा उसके बाद,
1: बाकी ऑरा धीरे धीरे कम
0: मेंटेन
1: हुआ,
0: रहा,
1: मेंटेन रहा, स्लोली कम होता गया, लेकिन दिस लाइट डिसअपीयर्ड विद इन सेकंड।
0: ओके,
1: और जो तीसरा है कि जिन बच्चों को अपना पूर्व जन्म याद आया है, या तो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी, जो मृत्यु के करीब के अनुभव है, उनको भी अगर हम गौर से देखें तो पता चलता है कि दे आर रियल। जैसे कि भी जिन बच्चों को अपना पूर्व जन्म याद आया है, अगर एक एग्जाम्पल भी सही हो, मैं मानता हूं कि कुछ मेडअप स्टोरीज भी है, कोई स्वार्थ के कारण किसी ने कह दिया कि मैं वो व्यक्ति था, परंतु ये सारे किस्सों में एक एग्जाम्पल भी सही हो तो वो प्रूव करता है कि आत्मा का अस्तित्व है।
0: नहीं, वो तो बहुत सारे
1: हाँ प्रूवन है, लेकिन फिर भी आज जो स्केप्टिक्स कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो मेडअप स्टोरीज है, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी बात हो सकती है। और जो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस है कि जो मृत्यु के बहुत करीब पहुंच गए थे, जिसको टनल एक्सपीरियंस भी कहा, कि जैसे लाइट शरीर से निकल गई, हम अपनी बॉडी को ही देख रहे थे, एक टनल से बहुत तेज गति से गुजरे और फिर हमने कोई प्रकाश को देखा, यह जो यूनिफॉर्मिटी है, भल उनकी धार्मिक मान्यताएं अलग अलग थी, फिर भी सभी को एक जैसा अनुभव हुआ,
0: नियर डेथ एक्सपीरियंस।
1: और साथ साथ में जो लोग वो सारे सर्जिकल ऑपरेशन को डिस्क्राइब कर पाए, वह नहीं हो सकता है। अगर वो ड्रीम लाइक स्टेज है तो एग्जैक्ट ऑपरेशन में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज किए, यहां तक कि डॉक्टर्स ने क्या कॉन्वर्सेशन की, वह भी उन्होंने बताया। तो डॉक्टरों को भी आश्चर्य हुआ कि भाई ये तो अनकॉन्शियस था, उसको कैसे याद है कि हमने आपस में क्या बातें की। तो तीन चीजों से भी हम बुद्धि को एक कन्विंस कर सकते हैं कि सचमुच वी आर सोल, और वो अभ्यास हमें नियमितता से करना चाहिए।
0: बिल्कुल, आपने जैसा कहा कि एक जहां एक साइंटिफिकली कई बार मन नहीं मानने को तैयार होता, अगर आप जैसा बार बार हम कह रहे हैं कि अब ट्रस्ट है, अब कंप्लीट ट्रस्ट है, अब मेरा मेडिटेशन में मेरे इस ज्ञान को इम्प्लीमेंट करने में जो स्पीड होगी वो कितनी तेज होगी।
2: अब उसको प्रोसेस को शुरू करने की स्पीड फास्टर हो जानी चाहिए एटलीस्ट, कि जो एक्चुअल एक्सपीरियंस है वो तो हमें खुद को ही मिलेगा। अध्यात्म, आत्मा, परमात्मा, ये वो शक्तियां हैं कि जब तक हम उनको अनुभव नहीं करेंगे, इवन इफ आई हैव सीन अ पिक्चर ऑफ इट और आई हैव सीन द इमेज, इवन दो नॉट द इमेज बट लाइक दिस, आई स्टिल कांट एक्सपीरियंस इट। सो द प्राप्ति तो तभी होगी व्हेन आई विल एक्सपीरियंस इट, लेकिन एविडेंस लाइक दिस मोटिवेट्स मी टू एक्सपेरिमेंट विद इट। तो एक्सपेरिमेंट शुरू किया, एक्सपीरियंस हो जाएगा। वेट सिर्फ ये हो रही है कि एक्सपेरिमेंट ही नहीं शुरू कर रहे, ये एक्सपेरिमेंट ट्राइड एंड टेस्टेड है। इसलिए जो एक्सपेरिमेंट करेगा डिसिप्लिन से और विधि पूर्वक एक्यूरेट, एक्सपीरियंस तो जरूर होगा और वो एक्सपीरियंस फिर आपको वो प्राप्ति कराएगा। लेकिन साइंटिफिक एविडेंस हमारा मोटिवेटिंग फैक्टर बन जाता है, डेफिनेटली।
0: आपके लिए क्या रहा? बिकॉज अगर हम देखते हैं आपसे तो हम जान चुके सिस्टर शिवानी कि आपको कैसे मोटिवेशन मिला, बिकॉज एक लॉजिकल और पूरा साइंटिफिक बेस को मानने वाले, साइंटिफिक एस्पेक्ट्स को मानने वाले, आपके लिए ये कौन से एस्पेक्ट्स थे जो मोटिवेटिंग फैक्टर बने?
1: सबसे पहले तो जब मैंने शुरुआत की तब फर्स्ट MBBS में पढ़ता था, तो वो साइंटिफिक फ्रेम तो था ही पूरा, मुझे कोई भी स्पिरिचुअल बातों में इंटरेस्ट नहीं था इतना। मेरा इंटरेस्ट तो यही था कि मेडिटेशन करने से कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा और कॉन्सेंट्रेशन इम्प्रूव होगा तो पढ़ाई में मैं अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। जो मेडिकल का कॉम्पिटिटिव था अब सारा, उस कॉम्पिटिशन में मैं एक्सेल कर पाऊंगा, और सचमुच वो बेनिफिट हुआ। शुरू में कहूंगा करीब करीब 5 मास तक तो मैं बस जाके मेडिटेशन करता था, आध्यात्मिक बातों में सचमुच रुचि नहीं थी, और तो भी फायदा होता था जब कर रहे थे।

0: को आत्मा समझो। देखो दादी कहती है ना, उनकी स्टाइल थी सचमुच बोलने की, कि दादी कहती है प्रयोग करो, अपने आप को आत्मा समझो और मैंने ध्यान से सुना। बस 15-20 मिनट शायद यही बात उन्होंने बार बार रिपीट की होगी, मैंने एकदम ध्यान से सुना और फिर वहां से जब जाने लगा तब ऐसा अनुभव हुआ कि भी शरीर है ही नहीं। इतने दिनों नहीं हुआ था कि बस मैं आत्मा ही हूं। रास्ते में भी जा रहा था तो लगता है कि सब आत्मा ही दिखाई दे रही है, शरीर दिखाई नहीं दे रहा है। वो जो दिन सारा दिन इतना अच्छा अनुभव हुआ, तब एक बात मुझे कन्विंस हो गई कि भी दादी का प्रवचन सुन के इतना अच्छा अनुभव हो सकता है, अगर मैं खुद करूं तो कितना होगा। तो बस उससे फिर मैंने ये बात पक्की कर ली कि अब इसकी गहराई में जाना है, अपने आप करना है इसका, और फिर इसको अलग अलग तरीके से अभ्यास किया कि कैसे मैं अपने आप को आत्मा समझूं। अलग अलग रूपक लिए और कुछ प्रैक्टिस की और सचमुच डीप एक्सपीरियंस हुआ, तो उससे फिर मैं और भी आगे बढ़ा। और तब भी निर्णय नहीं किया था कि भी सचमुच इस प्रकार का जीवन जीना है। करीब मैंने 1.5 साल लिया कहूंगा कि भी 1.5 साल तक ये अभ्यास तो करता रहा, परंतु 1.5 साल के बाद जब तीसरी बार माउंट आबू गया तब मुझे और भी डीप एक्सपीरियंसेस हुए और तब मैंने ये निर्णय लिया कि बस ऐसा ही जीवन जीना है। ये बहुत अच्छी चीज है, जो मुझे प्राप्ति हो रही है वो सबको हो। और विशेष तो मेरे मन में तो ये था कि भी डॉक्टर्स को होनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स आज साइंटिफिकली एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और उस समय बहुत कम डॉक्टर्स भी आ रहे थे सेंटर पर। तो तब ये मन में आया कि साइंटिफिकली इस बात को समझाना है, और फिर उसमें रिसर्च करके सारा जीवन ऐसा बन गया।
1: और सचमुच वो जो आपका एक थॉट था, वो रिसर्च के रूप में आज कितने ही डॉक्टर सिस्टर शिवानी जुड़े हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ। अगर डॉक्टर्स, साइंटिस्ट या वो लोग जो डिसीजन मेकिंग जगह पर हैं, वो अगर मेडिटेशन का अनुभव और ज्ञान का जो हर परिपेक्ष है वो देख सकते हैं, तो ये दुनिया कैसे हो गई।
2: अगर जैसे डॉक्टर्स के लिए कहा ना, डॉक्टर्स, नर्सेस, इवन द एडमिन स्टाफ इन अ हॉस्पिटल, ये सभी वो आत्माएं हैं जो हीलिंग इंडस्ट्री में हैं। लेकिन जब हमें समझ में आ गया अब इफेक्ट ऑफ थॉट्स, अब इफेक्ट ऑफ थॉट्स ऑन माई माइंड, इफेक्ट ऑफ थॉट्स ऑन माई बॉडी, इफेक्ट ऑफ माई थॉट्स ऑन योर माइंड, इफेक्ट ऑफ माई थॉट्स ऑन योर बॉडी ऑल्सो। अब जब एक पेशेंट जो बीमार है एक डॉक्टर के संपर्क में आता है, वो पेशेंट तो ऑलरेडी दर्द में है, अब डॉक्टर भी स्ट्रेस में है, तो पेशेंट दर्द में है और डॉक्टर की भी कौन सी एनर्जी जाती, तो वो जो पूरा इंटरेक्शन है इट्स नॉट इन अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी लेवल। लेकिन जब डॉक्टर्स मेडिटेशन का प्रयोग करते हैं तो पेशेंट को उनसे मिलते ही एक बहुत अच्छी फील गुड फैक्टर जो है, यू नो, उसे आपसे मिलके ही बहुत अच्छा लगा, मेरी आधी बीमारी तो वैसे ही ठीक हो गई, क्योंकि इतनी अच्छी वाइब्रेशन हमें डॉक्टर से आती है। फिर डॉक्टर्स हमें, यू नो, जो हमारा पूरा इंटरेक्शन होता है एक ऐसे डॉक्टर से जो रेगुलर मेडिटेशन कर रहे हैं, वो हमें पैनिक नहीं होने देते, हमें भी रिलैक्स कर देते हैं, एकदम काम कर देते हैं, वो बात को बड़े से बहुत छोटा कर देते हैं, डिसीशन मेकिंग बहुत एक्यूरेट होती है, एंड अपने प्रैक्टिस को वैल्यूज एंड एथिक्स पे करते हैं। सो फिर ऐसे डॉक्टर के पास जाने का किसका मन नहीं करेगा।
1: और खुद डॉक्टर के लिए भी,
2: उनके लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही। बट यू नो, जैसे कई बार डॉक्टर्स कहते हैं कि टाइम नहीं है, बट एक्चुअली इफ दे जस्ट अंडरस्टैंड दैट बाय डूइंग दिस देयर व्हाटएवर देयर प्रैक्टिस इज एक्चुअली गोइंग टू इवन फ्लरिश मोर, because the healing takes place very beautifully and a very beautiful patient doctor relationship gets developed, and kyunki medical industry mein working hours sara din pain se ghire rehna doctors ke upar bahut stress ho jata hai, so the doctor ke liye to definitely it's very very very useful.
1: bahut sare jo ab parivar ke sadasya hain, awakening parivar ke sadasya, wo anubhav karna chahte hain, nahi samajh pa rahe hain, sirf abhi tak yahan ka program को देखकर ही अनुभव जो होता है उसे ही ले रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे उनको कि वो खुद कैसे करें।
0: पहले तो मेरा जो अनुभव है उसको और थोड़ा मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि कैसे वो फेथ डेवलप हुआ। एक बात तो मैंने बड़े क्लोजली बहनों के जीवन को ऑब्जर्व किया, क्योंकि मैं यही सोचता था कि अगर हमें ऐसा जीवन जीना है तो आगे चल के ये नहीं होना चाहिए कि हमने गलती की, शायद हमारा टाइम वेस्ट कर दिया, इसलिए बड़े क्लोजली ऑब्जर्व किया और ये देखा कि भी इनमें एक तो चीज सिंप्लिसिटी है।

0: बड़ी सिंपलिसिटी से, भले सेंटर्स को अच्छा भी बनाया है, बट देयर लाइफ इज वेरी सिंपल, देयर लाइफ इज रियली प्रैक्टिकल। और एक बात का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा, नो इट्स अ रियल थिंग, कि जो मैंने कहा ना, तीसरी बार जब मैं करीब 1.5 साल के बाद माउंट आबू गया था, तब भी पढ़ ही रहा था। और जैसे आमतौर पर होता है कि भी हम कहीं पर जाते हैं, वहां पर 3-4 दिन रहे, हमारे पर खर्चा भी हुआ, तो ये भी विचार चला कि भी हमको भी उनके लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो तब तो थोड़े ही पैसे थे जो पॉकेट एक्सपेंस के मिलते थे, वही पैसे थे। तो जो हमारी दिव्या बहन है बॉम्बे में, उनको मैं देने लगा। तो बहन ने कहा, नहीं नहीं नहीं आप नहीं दो, आप तो पढ़ते हो अभी। तो इसकी मेरे पे पावरफुल इफेक्ट हुई। मैंने सोचा कि भी व्यक्ति तो मांगेगा, यहां तक होगा कि भी और कोई युक्तियां ढूंढेगा कि किस प्रकार से ज्यादा
1: ये
0: लोग पैसे
1: निस्वार्थ
0: दे।
1: है ना सेवा।
0: हाँ,
1: हाँ
0: तो नहीं, ये प्रीफेक्ट हुई कि भाई ये रियल है, अन्यथा तो कोई ना तो नहीं कहेगा, चलो मांगा नहीं अलग बात है, ना क्यों कह रहे हैं कि अभी तो आप पढ़ रहे हैं, आपको नहीं कंट्रीब्यूट करना है। तो तब मैंने पक्का सोचा कि इनका कोई स्वार्थ नहीं है और इस पर गहराई से प्रैक्टिस करनी चाहिए, कि इस प्लेटफॉर्म पे हम जो बातें बता रहे हैं वो बहुत अच्छी है, जीवन उपयोगी है, लोगों के जीवन में परिवर्तन भी आ रहा है, परंतु क्योंकि हमारे दर्शक बदलते जाते, इसके कारण जो हम बातें बता रहे हैं वो एक लेवल तक है, बहुत डीप नहीं है। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी है, आप जीवन में इसका अनुभव करना चाहते हैं, तो सेंटर पर जाना बहुत जरूरी है। क्यों? दो बातें, एक तो वो वातावरण आपको मदद करेगा, घर का वातावरण और सेंटर के वातावरण में वो ऊर्जा है, और दूसरा सेंटर पर आप मेडिटेशन की गहराई में जा सकते हैं, और जो डेप्थ में जाने की जरूरत है वो सेंटर पर ही हो सकता है। भले ज्ञान बड़ा सरल है, वह जो सरल ज्ञान है उसकी डेप्थ में जाने में सेंटर मदद करेगा। और मुरली में जो बातें मिलती है प्रतिदिन, आज मैंने भी लक्ष्य रखा है कि भी प्रतिदिन मुरली को सुनना है, और इसीलिए कि भी मुरली में नई नई बातें भी है साथ साथ में, क्योंकि वो परमात्मा के महावाक्य है, तो उससे जो हमें ऊर्जा मिलती है, जो प्रेरणा मिलती है, वो भी बहुत गहरी है, कि जो भल प्रतिदिन रेगुलरली विदाउट फेल 365 डेज ईयर ये प्रोग्राम को देख रहे हैं तो भी वो नहीं मिल सकता। इसलिए मेरा ये निवेदन है कि भल सप्ताह में 2 बार जाओ, 3 बार जाओ, परंतु सेंटर पर जरूर जाइए, और गहन जो मेडिटेशन है, ज्ञान है, उसको समझने की कोशिश करिए।
1: बिल्कुल सिस्टर शिवानी, ये जो पूरी श्रृंखला चली, अब कई श्रृंखलाओं पे बात की है हमने, और जिंदगी जीने की कला, लाइफ स्किल्स, वो कौशल हमने कोशिश की कि इनमें समेट पाए, और काफ़ी सारी बातें नई हैं, नए अंदाज से हमने काम करना है। आप क्या कहेंगे, ये सफलता कब मिलेगी? एक स्किल तो हमने ले ली, समझ ली, सीख ली, अब क्या करें?
2: कोई भी स्किल, आप कोई भी चीज़ सीख लें, यूज करें, बार बार यूज करते जाएं, भले पहले एक दो बार में सफलता नहीं मिले, इट्स अ स्किल विच वी आर नाउ प्रैक्टिसिंग एंड प्रैक्टिस विल टेक अस टू परफेक्शन। उसको बस सुनने और समझने तक नहीं छोड़े, यू नो कई बार सुनते हैं, देखते हैं, जैसे भाई साहब ने कहा, हर रोज देखते हैं, देखते हुए कहते हैं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, दैट्स बिल्कुल राइट, आई विल डू इट, बट वो थॉट तक रह जाता है। नाउ लेट्स स्टार्ट डूइंग इट, वी विल डेफिनेटली गेट सक्सेस।
1: थैंक यू सो मच। ओम शांति।
0: ओम शांति।
1: ब्रह्मा कुमारी इसके देश विदेश में फैले सेंटर्स, जहां पर कोई भी जा सकता है, किसी भी धर्म के हों, किसी भी फिलॉसफी को मानते हों, किसी भी देश में रहते हों, आप जा सकते हैं, क्योंकि वो परमात्मा का घर है, आपका अपना परिवार है। वहां जाएं, यहां से कनेक्टेड है, अच्छा है, समझ में आ रहा है, अब उसका अभ्यास है। शिवानी ने भी कहा, डॉक्टर पटेल ने कहा, जितना अभ्यास, जितनी प्रैक्टिस, वो हमारा बनता जाएगा, हमारी कला हो जाएगी, फिर हम भी तो सिखा पाएंगे। तो ये हम करना चाहते हैं, ना सिर्फ अपने ऊपर काम करना चाहते हैं, अपनों के साथ काम करना चाहते हैं। तो आपको निमंत्रण, आप जाएं हर सेंटर पर, ये कला जो हमने यहाँ सीखी है उसका अभ्यास कराया जाता है, उस अभ्यास को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। आपसे आगे फिर मुलाकात होगी, लेकिन हमने लाइफ स्किल्स को आपके सामने रखा है, अपने सामने रखा है। आप कितने माहिर होते हैं, कितने पारंगत होते हैं, ये हम पर डिपेंड करता है। आपसे मुलाकात करेंगे। ओम शांति।

0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ट्रैक्स बने होते हैं एंड पानी उसमें बह रहा है, ठीक है, गार्डन है, रास्ते हैं, ट्रैक सपोज इधर ही इस सड़क पर एक ट्रैक बना हुआ है। अब वो रोज पानी उसी में बहता है, ठीक है। अब पानी का बहते बहते उस एरिया के अंदर वो एक ट्रैक बन ही गया ना। अब जैसे ही पानी आएगा वो दूसरी साइड पे कहीं जाएगा ही नहीं, राइट। वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक में फ्लो होगा। होते होते होते वो ट्रैक उस पानी के लिए एक परमानेंट पाथ बन चुका है, राइट। अब अगर हम आज से चाहते हैं कि वो उस ट्रैक में नहीं जाए, उस डायरेक्शन में वो पानी नहीं जाए, लेकिन वो एक नए तरह से जाए, तो हमें थोड़े दिन के लिए, सिर्फ ज्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए जैसे ही वो पानी आता है, फ्लो होने लगता है, हमें उसको चैनलाइज करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। ऐसे ही माइंड भी जब एक थॉट क्रिएट करता है, फिर अगले दिन वही थॉट क्रिएट करता है, फिर अगली बार वो सिचुएशन आती है, फिर वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाएगा अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में भी उसका एक ग्रूव बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आएगी तो आप चूज नहीं करते, आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली उस पैटर्न से ही होती है, एंड करते करते करते वो ग्रूव एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे ब्रेन की मैपिंग, वो पैटर्न्स बन जाते हैं। अब हम एक जीवन अनेक जन्म उसी पैटर्न उसी मैपिंग से काम करते जा सकते हैं, लेकिन अगर हम आज डिसाइड करें तो हम आज चेंज कर सकते हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।
1: सरदार अजीत सिंह शहीद भगत सिंह के सगे चाचा थे। उन्होंने दिल्ली में एकत्र राजा महाराजाओं से दिल्ली में होने वाले दरबार का बहिष्कार करके भारत को आजाद कराने की अपील की थी। उनकी वाणी अंग्रेजी साम्राज्य के लिए लावा के समान सिद्ध हुई। अंग्रेजी हुकूमत ने गदर को रोकने के लिए सरदार अजीत सिंह को गिरफ्तार करके बर्मा की मांडले जेल में डाल दिया। उन्हें मांडले जेल में रखने के विरोध में भारतवासियों ने तूफान खड़ा कर दिया, जिसके फलस्वरूप कुछ दिन बाद उन्हें आजाद कर दिया गया। जेल से छूटने पर सरदार अजीत सिंह और उग्र हो गए। वे सरकार के विरुद्ध अपने भाषणों में आग उगलने लगे। लोग दूर दूर से उनके भाषण सुनने के लिए पहुंचते और सरकार के खिलाफ बगावत का संकल्प लेकर लौटते थे। सरदार अजीत सिंह यूरोप में बहुत लंबे समय तक रहे थे, उस समय तक जबकि दूसरा विश्व युद्ध भी छिड़ गया था। सरदार जी ने इटली में आजाद हिंद रेडियो चालू किया तो पेरिस में भारतीय क्रांतिकारियों से भेंट करके क्रांतिकारी योजनाएं बनाई। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी और इटली की पराजय के बाद 2 मई 1945 को सरदार अजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें यातना गृहों में रखकर अमानवीय यातनाएं दी गईं। सरदार अजीत सिंह 38 सालों का लंबा अंतराल विदेशों में गुजारने के बाद नेहरू जी की पहल पर फिर भारत लौट आए। 15 अगस्त 1947 का दिन, भारत में स्वाधीनता के सूर्य का उदय हुआ। 50 सालों तक निरंतर आजादी की लड़ाई लड़ने वाले अजीत सिंह ठीक इसी दिन जय हिंद के अंतिम घोष के साथ इस दुनिया से विदा हो गए। उन्हें भारत के शहीदों को आजादी का शुभ संदेश जो देना था।

0: अले कोते, टाइम पे पहुंचा दिया ना ढाबे, अब जल्दी से मिटा ले अपनी चाय की तलब।
1: अहो सरदार जी, मैं बस मुंह हाथ धो के आया।
2: ओए छोटू, दो स्पेशल चाय
3: अभी लाया।
4: ओ गड्डी जांदी चलांगा यार मार दीना।
3: सरदार जी आपकी चाय।
0: अबे अबे ओए सच्चा, नाच कर डाला मेरे कुर्ते दा, खोते दे पुत्र, आंखें फूट गई है तेरी।
3: वो गलती हो गई।
0: ओए गलती, शुक्र है मेरे हाथ पे गिरी चाय, मुंह पे नहीं फेंकी तूने। चल भाग यहाँ से।
5: अरे क्यों बच्चे पर गुस्सा निकाल रहे हो जसमीत?
0: ओ जी काका जी, आपको नहीं मालूम, बच्चा नहीं तूफान मेल है ये, तूफान मेल। कुर्ता तो खराब किता सी, हाथ भी जला दिया मेरा।
5: चाय से ज्यादा गरम तो तेरा दिमाग है, जब देखो तब ताव खा जाता है।
0: वो तो है काका, असी तो है ही पंजाबी, कून विच गर्मी तो पैदाइशी होंदी है पंजाबियों में।
5: सो तो ठीक है जसमीत, पर अपने गरम खून का इस्तेमाल सही जगह करो तो कुछ बात बने, जैसे सरदार अजीत सिंह ने किया था बरसों पहले।
0: सरदार अजीत सिंह? वो पहले तो कभी नहीं सुना ही नाम।
5: अरे भगत सिंह का सुना है ना?
0: हेलो जी, वो तो साडा शेरे पंजाब था, शेरे पंजाब।
5: तो अजीत सिंह उस शेरे पंजाब का चाचा था जसमीत।
0: आहोए सुना ही दो आज तो कहानी अजीत सिंह की, भाई मैंने तो सुन के ही जानी है।
5: ठीक है सुना दूंगा, पर एक वादा करना होगा तुझे जसमीत।
0: हाँ जी दसो जी।
5: वो तो कहानी के बाद ही बताऊंगा, तो लो आज सुनो कहानी रेडियो की जुबानी।
0: तो रेडियो की जुबानी?
5: हाँ भाई, आज रेडियो पर सरदार अजीत सिंह का ही नाटक आने वाला है।
0: वो काका जी रेडियो?
5: भाई अब चुप हो जाओ, जरा मैं रेडियो लगा दूँ।
6: सरदार अजीत सिंह का जन्म 23 फरवरी 1881 को खटकड़ कलां जालंधर में हुआ। गांव में ही प्राइमरी परीक्षा और मिडिल पास किया। अजीत के घर का माहौल घोर आर्य समाजी था, जिसका अर्थ था कट्टर स्वदेशाभिमान। पर उनके ताऊ सरदार अर्जुन सिंह पक्के अंग्रेज परस्त थे। वे अक्सर अंग्रेज कलेक्टर से मिलने जाया करते थे। उनकी हर बात में साहब बहादुर का जिक्र जरूर होता था।
7: माँ, ये साहब बहादुर कैसे दिखता होगा? कुछ अलग दिखता है क्या?
8: पुत्र तू देखना चाहिए साहब बहादुर को, मैं कह दूंगी तेरे ताया जी को, साथ ही चले जाना जब वो जाए।
9: अजीते साहब बहादुर को देखना है तो जलंधर चलना पड़ेगा सवेरे।

0: ताया, ये आपड़े इतने सज्जे दज्जे कपड़े क्यों पहन रखे हैं?
1: साहब बहादुर से मिलने जाना है, कोई मजाक नहीं है। वहां बड़े बड़े लोग आते हैं।
0: बड़े लोग।

0: किनारे हो जाइए, साहब बहादुर आ रहे हैं।
1: ताया, ये तुम्हारे साहब हैं? इसे तो ठीक ठीक बोलना भी नहीं आता।
2: अजीते, नमस्ते कर।
1: जिन्हें ठीक से बोलना भी नहीं आता उन्हें मैं नमस्ते क्या करूं?
3: अठारह सौ चौरानवे में अजीत सिंह ने मैट्रिक पास किया और 1896 में वे स्कूल में अध्यापक हो गए। अजीत सिंह शहीद भगत सिंह के सगे चाचा थे। 1905-6 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कांग्रेस अधिवेशन में अजीत सिंह भी गए थे। वहां से वे संकल्प लेकर लौटे।
4: हमको पंजाब में भी किसानों को संगठित करना होगा। गुलशन भाई।
5: हां जी प्राजी।
4: अम्बा जी भी तो जेल से छूट गए हैं ना, हमें बहुत जल्द सब लोगों से मिलना चाहिए। एक सभा क्यों ना बुलाई जाए?
6: किसानों को संगठित करने की बात बहुत सही और दमदार है अजीत, इसके लिए हमें आप सब लोगों का सहयोग चाहिए।
7: हम सब तैयार हैं।
6: लाला हरदयाल, लाला लालचंद्र फलक, मेहता नंद किशोर, महाशय घसीटा राम और केदारनाथ सहगल भी हमारे साथ हैं, जो हमारे प्रमुख लोग होंगे।
8: हमें दो नीतियों पर अधिक जोर देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही सशक्त माध्यम है। पहला तो भाषण और दूसरा प्रकाशन। भारत माता की जय। हम अपनी सोसाइटी का नाम भारत माता सोसाइटी रखें तो कैसा रहे?
7: भारत माता की जय।
3: इस प्रकार भारत माता सोसाइटी की स्थापना हुई। इसके जलसों में सेना छावनियों को भी निमंत्रण भेजे जाते थे और अचरज की बात यह है कि बड़ी संख्या में सैनिक सुनने भी आते थे। पंजाब में ये आंदोलन छोटा सन 57 कहा जाने लगा। जलसों में भाषण का काम मुख्यतः सरदार अजीत सिंह के हाथों में था। वे ज्वालामुखी प्रवक्ता थे, घंटों ऐसे बोलते जैसे आग का झरना बह रहा हो। अजीत सिंह के ज्वालामुखी भाषणों को फैलता देखकर पंजाब के गवर्नर ने सब जिलों को एक सर्कुलर भेजा कि जनता को चेतावनी दी जाए कि वो सरदार अजीत सिंह का भाषण न सुने। इससे तो सरदार का आकर्षण और भी बढ़ गया। 17 मार्च 1907 को स्वदेशी पर भाषण हुआ और तीसरा जलसा आर्य सेवक होटल के मैदान में था।
4: भाइयों, जानते हो आज हम यहां क्यों इकट्ठा हुए हैं? इसलिए कि फिरंगी को बता दें कि हमारी पहली तहरीके आजाद को पूरे 50 साल गुजर गए हैं। बेशक कुछ गद्दारों की गद्दारी की वजह से हम 57 में असफल हुए, मगर अब आपको यहां से जाना होगा। हमने पहली जंगे आजादी की सफलता से जो सबक सीखा वो ये है कि हम तलवार नहीं उठाएंगे। आपने यहां बैठे एक हाथ कटे और फिरंगियों की कैद से आजाद होकर आने वाले सूफी अम्बा प्रसाद को देखा होगा। उन्होंने आते ही अखबार इंडिया में एक मजमून लिखा है जिसका शीर्षक है, हम पागल नहीं कि तलवार पकड़े। हमें फिरंगी को आज इस प्लेटफॉर्म से जो चैलेंज देना है, इसके लिए माजा और मालवा के ताकतवर सरदारों की मंजूरी हमारे पास है। आपकी मर्जी और इजाजत से हम फिरंगी को यह चेतावनी दे रहे हैं कि वे अपना रास्ता लें। हमारी पहली मांग यह है कि वे फौरन ये काला कानून न्यू कॉलोनी लायलपुर और मिंट गुमरी खत्म कर दें। 2 माह के अंदर यदि ऐसा ना हुआ तो हम कोई टैक्स नहीं देंगे। इस देश में लूट खसोट को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम में से हर एक सिर पर कफन बांधे तैयार खड़ा है।
7: भारत माता की जय।
9: कई लोग मैदान को चारों ओर से फास्ट बंद करवाओ ये जलसा।
10: जी जी हुजूर।
11: हुजूर, वहाँ कोई साहब रास्ता रोककर बैठ गए हैं, अंदर नहीं जाने दे रहे।
9: लेट मी सी, हम देखता है कौन है। बंद करो ये मीटिंग।
6: मैं देखूंगा कौन कमबख्त जलसा बंद कराता है। एक, सिर्फ एक गोली इधर आने तो दो।
9: अंबा प्रसाद, जो मीटर में कुर्सी पर बैठा है, ये जलसा बंद करने का हुक्म है। गेट अप।
6: मैं हिलूंगा भी नहीं।
12: देखें कौन बंद कराता है जलसा।
3: भारत माता सोसाइटी के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारियां हो रही थी, जिनमें प्रतिष्ठित वकील, पत्रकार, विद्यार्थी आदि थे। एक दिन लाला पिंडीदास, महाशय घसीटाराम और लाला दोना को अदालत लाया गया। अदालत के बाहर सब लोग साहब बारबटन का इंतजार कर रहे थे। पहरा दे रहे सिपाहियों में से एक सिख सार्जेंट बड़े उतावले स्वभाव का था। वो क्रांतिकारियों से बातचीत करने लगा।
13: आप किस अखबार के एडिटर हो पिंडीदास जी?
14: इंडिया पेपर का।
13: दीनानाथ जी आप?
15: मैं देश अखबार का एडिटर हूँ।
13: और महाशय जी आप?
16: आपको नहीं मालूम, मैं मुक्का मार अखबार का एडिटर हूँ।
13: बाबू, आप लोगों को मालूम है, जब आपको गुजरावाला से गिरफ्तार करके लाए थे तो स्टेशन से जेल तक 10-10 कदम पे फौजी था फौजी। इतना डर रहे थे अंग्रेज। पूरी शहर की सड़कों पर फौजी गोरखे घुड़सवार भी थे। प्राजी, अंग्रेजों ने तो डर के मारे अपने बीवी बच्चों को किले में या स्पेशल ट्रेन में भेज दिया।
3: ब्रिटिश हुकूमत की नजरों में अजीत सिंह एक भयंकर बागी थे, जिनकी बंगाल के क्रांतिकारियों तक पहुंच थी और महाराष्ट्र के केसरी बाल गंगाधर तिलक से भी साठ गांठ थी।
17: हुजूर, पंजाब से गवर्नर साहब का संदेश आया है।
18: पढ़ के सुनाओ।
17: पंजाब में गदर होने वाला है, उसका नेतृत्व सरदार अजीत सिंह और उनकी पार्टी करेगी। बगावत रोकने के प्रबंध करें।
18: कैप्टन, लाला लाजपत राय और अजीत सिंह के वारंट निकालो जल्दी से जल्दी।
3: 9 मई 1907 को लाला लाजपत राय और 2 जून को सरदार अजीत सिंह को गिरफ्तार करके बर्मा की मांडले जेल में डाल दिया गया। इस खबर से देशवासियों में तूफान उमड़ पड़ा और मजबूरन उन्हें 11 नवंबर को रिहा कर दिया गया।
4: अंबा भाई, अफगान में महेंद्र प्रताप जो मोर्चा संभाल रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है हमारे लिए।
6: हाँ, मैं भी सोच रहा हूं कि किसी तरह उनसे मिला जाए। उनकी आजाद हिंद सरकार की तैयारी में हमें जरूर साथ देना चाहिए।
4: तो तय रहा, हमें किसी भी हालत में उनकी मदद के लिए पहुंचना होगा। वहां जाने के लिए अगर पेशावर का रास्ता पकड़ा तो भयंकर खैबर का दर्रा पार करना पड़ेगा।
6: मेरे ख्याल से हम किसी तरह कराची पहुंचकर ईरान के जहाज में चढ़ जाएं और अफगान पहुंचे।
4: हमें जहाज के लिए नकली पासपोर्ट बनवाने पड़ेंगे और अंग्रेजों को बहकाने के लिए उन्हें खबर दिला दें कि हम पहाड़ के रास्ते जा रहे हैं।
6: राजेंद्र भाई, आपके अलावा हमारा पासपोर्ट चुपचाप और जल्दी कोई नहीं बना सकता।
18: अंबा भाई, आपका छदम के नाम से और अजीत भाई का मिर्जा हसन खां के नाम से पासपोर्ट बनवा देता हूँ, आप निकलने की तैयारी करें।
3: ईरान में इन दोनों का बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया गया। कुछ दिनों बाद सूफी अंबा प्रसाद वहीं रह गए और अजीत सिंह रस्तोव और बाखू होते हुए तुर्की पहुंचे, फिर जर्मनी से फ्रांस पहुंचे और पेरिस में अध्यापन का कार्य किया। कुछ दिनों बाद ही वे स्विट्जरलैंड चले गए। ईरान के एक मंत्री के दुभाषिया बनके सरदार अजीत सिंह फिर से जर्मनी गए। वहां पर जर्मनी के सर्वेसर्वा कैसर से उनकी मुलाकात हुई।
4: हमको युद्ध के समय आपकी जरूरत पड़ेगी, आपकी मदद पूरे एशिया को चाहिए।
9: श्योर, वी वुड डेफिनेटली लाइक टू हेल्प। हम एशिया की मदद तो जरूर करेंगे, पर हमारी लड़ाई तो सिर्फ फ्रांस से है।
4: कैसर साहब, आप ही बताएं, क्या ऐसा हो सकता है कि आप यूरोप को रौन दें और ब्रिटेन चुपचाप देखता रहे? ऐसे में आपकी ब्रिटेन से तो ठनेगी ही ना।
9: यस, आई अग्री सरदार जी।
4: तो बस इसीलिए ब्रिटेन हमारा और आपका एक सा दुश्मन है। हमारी मदद करके आप खुद अपने दुश्मन को ही शिकस्त देंगे।
14: ओके सरदार जी, वी आर विद यू।
4: देखिए, युद्ध में अंग्रेजों के झंडे के नीचे लड़ने वाले हजारों भारतीयों को तो आपकी सेना बंदी बनाएगी। हम उन्हीं सिपाहियों से आजाद हिंद सेना संगठित करेंगे। टर्की के पतन के साथ ही हमारी सेना का हिंदुस्तान की ओर रास्ता खुल जाएगा और हिंदुस्तान की सरहद पर हमारे साथी संगठन उनका स्वागत कर सकेंगे। इस अचानक हुए प्रहार से युद्ध में पहले से ही टूट चुकी अंग्रेजी सेना को हम पूरी तरह खदेड़ देंगे।
14: सरदार जी, यू हैव अमेजिंग ब्रेन एंड कैपेबिलिटीज ऑफ प्लानिंग। आई प्रॉमिस वी आर विथ यू। हम साथ है।
4: अब इजाजत दे।
3: द्वितीय विश्व युद्ध के समय अजीत सिंह यूरोप में थे। इटली में मुसोलिनी छाए हुए थे। सरदार ने वहां आजाद हिंद रेडियो चालू किया। 8 अक्टूबर 1943 को इटली का पतन हुआ। सरदार अजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। देश से दूर यात्रा ग्रहों में सरदार जी ने बहुत बुरा समय काटा। इधर भारत से अंग्रेज धीरे धीरे जा रहे थे। हिंदुस्तान आजाद हो रहा है। ज्यों ही ये गंध देश की हवा में फैली, समाचार पत्रों में सरदार अजीत सिंह की चर्चा आरंभ हो गई। बेहद जटिल कानूनी कार्रवाइयों और जद्दोजहद के बाद मार्च 1947 में वे कराची पहुंचे। उनकी तबीयत काफी खराब हो गई थी। कुछ दिन रुककर वे दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में एशियाटिक कॉन्फ्रेंस चल रही थी। उसी कॉन्फ्रेंस में अजीत सिंह ने देश के नवयुवकों को अपना संदेश दिया।
4: नौजवान आने वतन, 40 साल के दराज अरसा के बाद हिंदुस्तान में आकर आपको मुखातिब करने का मौका मिला है। दुनिया भर के ममालिक में नौजवान अपनी कौमी आजादी के हसूल और बरकरारी के लिए अपनी जानें कुर्बान करते चले आए हैं। ऐसी कुर्बानियों से आवाम में जिंदगी पैदा हुआ करती है और उनका नाम रोशन हुआ करता है। हिंदुस्तान में सामाजिक और सियासी इनकलाबात की सख्त जरूरत है और ये मुश्किल काम हम लोगों ने इस सदी के आगाज में शुरू किया, जिसकी तमकील का इन्हसार आप लोगों पर है। आजादी हासिल करने और उसे बरकरार रखने के लिए जांबाज और बहादुर नौजवानों की जरूरत है। मेरी ये ख्वाहिश है कि हिंदुस्तान के नौजवान शहीद भगत सिंह और उसके साथियों की तरह कुर्बानी के पुतले बने, जो इनकलाब जिंदाबाद के नारे बुलंद करते हुए अपनी अजीज जाने इनकलाब की खातिर जान निसार करें। ऐ हिंदी नौजवानों, अपने मुल्क की जहालत और फाका कशी को दूर करने का इज्म बलजिज्म करो। हर वक्त और हर जगह अपने अजीज वतन की इज्जत व एहतराम को मद्देनजर रखो। हसूल इल्म में इस कदर कोशिश करो कि माहिर बनो और मुकम्मल इंसान बनकर अपनी कौम का नाम रोशन करो। अपने मुल्क के उन शहीदों को कभी मत भूलो जिन्होंने वतन की शान की खातिर देश के अंदर और बाहर भारत माता के नाम पर अपनी जानें कुर्बान की। उनके नक्शे कदम पर चलो, क्योंकि शहीदों की अमवाल कौमी हयात का बायस हुआ करती हैं। फिरके दाराने झगड़ों से बचो जो मुल्क की तरक्की के रास्ते में रोड़े बन रहे हैं। अपने वक्त को कौम और मुफीद और ठोस कामों में शर्फ करो। मजाहब और इखलाक की हकीकत को समझते हुए नोहे बशर की खिदमत को अपने मकसद हयात बनाओ। तमाम दुनिया नए दौर से गुजर रही है। अगर हमारी तरफ से इस वक्त सुस्ती और गफलत का इजहार हुआ तो कई मंजिलें पीछे रह जाने का एहतमाल है। वक्त मुतवातर गुजरता जाता है, वो किसी का इंतजार नहीं करता। हमारे मुल्क को एक सुनहरी मौका मिला है। आजादी हासिल करने की सहूलियतें मयसर हैं। जमाने के हालात मुआफिक हैं। इस अहम मौके पर आप लोग यह अहद करें कि शख्सी एहजान और मुफाद को वतन अजीज के लिए कुर्बान किया जाएगा। हर काम में खुद मिसाल बनने की कोशिश करो। जब तक हिंदुस्तान से जहालत, नादारी और भूख दूर ना हो, अपनी जद्दोजहद मत तर्क करो। अपने फराइज को अदा करते हुए हयात अब्दी हासिल करो। जिंदाबाद इनकलाब।
17: ये कहां से एक बूढ़े बीमार आदमी की आवाज हो सकती है? इनका जज्बा और अंदर की आग देखकर शर्म आती है अपने ऊपर।
3: यहीं पर सरदारनी जी श्रीमती हरनाम कौर 39 साल के लंबे वियोग के बाद सरदार जी से मिली। सरदारनी जी 4-5 दिन दिल्ली रहकर लौट गई। लाहौर और दूसरी जगहों का दौरा करके अजीत सिंह को बीमारी के कारण डलहौजी लाया गया और बहुत आग्रह करके उन्होंने सरदारनी को भी वहां बुलवा लिया। दोनों अपने पूरे परिवार के बीच 40 साल बाद एक साथ थे। इसी बीच राष्ट्रीय मंच का पर्दा बदल गया। घोषणा हुई 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजी राज्य भारत के बंटवारे के साथ समाप्त हो जाएगा और भारत स्वतंत्रता प्राप्त करेगा।
4: ना जवाहरलाल देख रहा है न जिन्ना। दोनों तरफ खून की नदियां बह जाएंगी। मैं भला उसे कैसे देख सकता हूं? ना, मैं उसे नहीं देखूंगा। मैं चला जाऊंगा।
1: नहीं जी, अब कहां जाना है? अब कहीं नहीं जाना।
4: जिस आजादी के लिए मैं जिंदगी भर जूझता रहा, उसे बिना देखे मैं कैसे जा सकता हूं?
3: 14 अगस्त 1947 आ गया। सरदार सरदारनी बहुत खुश थे। घर में जैसे एक नए दांपत्य का उदय हुआ था। दोनों ने नए कपड़े पहने थे। पूरी कोठी का कायाकल्प हो गया था।
19: अब भी चार लड्डू लेके भागा था ना?
20: काका जी, आप तो दूल्हे लग रहे हो जी। आज एक बार फिर शादी करा दो दोनों की।
21: नमस्कार, रात्रि के 12 बज रहे हैं। देशवासियों को स्वतंत्रता की एक बार और बहुत बहुत बधाई।
1: सो जाइए, 12 बज चुके हैं रात के।
4: हमारा यज्ञ पूर्ण हो गया, हम स्वतंत्र हैं।
3: सरदार अजीत सिंह की आंख लगी ही थी। अभी 4 भी नहीं बजे थे, वो जाग गए और पूरे घर को जगा दिया।
4: मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया, अब मैं जा रहा हूं।
1: कहां?
4: कुलबीर पुत्र
22: जी,
4: ले मेरा आखिरी बयान लिख ले। दुनिया भर में मेरे दोस्त फैले हुए हैं। वे शिकायत करेंगे कि बिना हमसे कुछ कहे ही चला गया।
23: बेटा, डॉक्टर साहब आ गए हैं।
24: सरदार जी एकदम ठीक है। जरा बाहर आओ बेटा।
22: जी।
24: देखो, सरदार जी की उम्र काफी हो चुकी है, कमजोर भी बहुत ज्यादा है। ऊपर से जिंदगी भर उन्होंने मुसीबतें झेली हैं। ऐसे हाल में किसी वहम का हो जाना स्वाभाविक है। बयान मत लिखना, क्योंकि अगर मन में मरने की बात जम गई तो हार्ट फेल भी हो सकता है।
4: कोई सुनेगा? कोई मेरा बयान लिखेगा? तुम लोगों की नजर में मैं गलत और डॉक्टर सही है ना? खैर मत लिखो, दुनिया वाले तुम्हारी ही शिकायत करेंगे। पुत्र, काकी को बुला।
22: जी।
0: कहिए क्या हुआ?
2: मैंने तुमसे शादी की थी, तुम्हारी सेवा करना मेरा फर्ज था, पर मैं भारत माता की सेवा में लगा रहा। कुछ भी हो, कसूर तो हुआ ही। ओए सरदारनी, ओ मुझे माफ कर।
3: और सरदार जी ने झुककर सरदारनी के पैर छू लिए।
0: हे रब्बा, ऐ की कर रहे हो तुसी? क्यों?
4: जय हिंद।
2: और सरदार जी ने दोनों पैर सोफे पर कर लिए, एक और तकिए से टिक गए और जोर से जय हिंद पुकारा और शांत हो गए। ऐसा लगता है कि मानो अपनी मर्जी से चले गए हो सरदार अजीत सिंह। सच्चे मायने में हमारे देश की क्रांति के भीष्म पितामह थे वो। समझा जसमीत, कैसे इस्तेमाल किया जाता है गरम खून को?
5: आहो काका, आपने तो साढ़े दिमाग दा पिलग ही साफ कर दिया।
2: तो चल, निभा अपना वादा कि आज से कभी किसी पर भी ना गुस्सा नहीं करेगा और अपने गुस्से को अन्याय और गलत बातों के खिलाफ ही बचा के रखेगा।
5: ओ जी ठीक है जी, पक्का वादा। आज से गुस्सा तो जसमीत ने करना ही नहीं।
2: अरे छोटू इधर आ और जरा एक चाय और गिरा जसमीत पर।
5: ओए
3: निर्देशन श्रुति धर्मेश, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।

आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गर्मी होगी तो आई एम फाइन विद इट, लेकिन ठंड मेरे से जहन नहीं होती। ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, तो मैंने अपने आप को कंडीशनिंग दे दी कि गर्मी में आई विल बी फाइन, लेकिन ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है। विच मीन्स मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगी, ठंड में बीमार पड़ना अलाउड है। तो अब एक महीना दो महीना मैंने अपने आप को बीमार रहना अलाउड हुआ। अगले साल ठंड 6 महीने रही और मेरी प्रोग्रामिंग मैंने चेंज नहीं की और मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं किया, तो अगले साल मैं 6 महीने बीमार रही। उसके 2 साल के बाद इतनी ठंड आई, और क्योंकि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम हर साल बीमार होते होते होते होते कमजोर होता जा रहा था, उसके 4 साल बाद इतनी ठंड आई दैट आई जस्ट कुडंट टेक इट। एंड देन वी से डिप्रेशन, नर्वस ब्रेकडाउन, दिस। क्योंकि करते करते करते करते ताकत तो कम होती जाएगी और दुनिया की परिस्थितियां बढ़ती जाएंगी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: पुणेरी आवाज सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले रेडिओ स्टेशन ऐकत रहा 107.8 FM आनंदी रहा आणि आनंद लुटा.
1: वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मकुमारीज. वेलकम सिस्टर.
2: ओम शांति.
1: ओम शांति. आपका स्वागत है बीइंग ब्लिस में.
2: थैंक यू.
1: हमने पिछले कई एपिसोड्स में ये बात की कि एडवाइस देना लेना बाप बेटे को दे रहा है, मतलब पेरेंट्स चिल्ड्रन को दे रहे हैं, टीचर अपने स्टूडेंट्स को दे रहे हैं. लेकिन एक मैंने लाइन पढ़ी जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं मैं.
2: श्योर.
1: नेवर बेस योर लाइफ्स डिसीजंस ऑन एडवाइस फ्रॉम पीपल हु डोंट हैव टू डील विद द रिजल्ट्स. यानी आप अपने लाइफ के डिसीजंस, जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस है लाइफ के, बहुत ही महत्वपूर्ण आप कोई चीज डिसाइड करना चाहते हो, तो नेवर बेस योर लाइफ्स डिसीजंस ऑन एडवाइस फ्रॉम पीपल हु डोंट हैव टू डील विद द रिजल्ट्स. वो तो एडवाइस देके हमको चला गया और भुगतना तो मुझे है रिजल्ट का.
2: राइट. तो मतलब जीवन के डिसीजंस जब लेने हैं तो कभी भी वो डिसीजन किसी और की एडवाइस पर बेस्ड डिसीजन नहीं होना चाहिए. एंड डेफिनेटली उन लोगों की एडवाइस पर बेस्ड नहीं जो आपके साथ उस रास्ते पे चलने नहीं वाले हैं. अब ये हम अगर जब सुनते हैं तो लगता है ऐसा कैसे हो सकता है. ऑब्वियसली हम एडवाइस लेते हैं, हम सारी उम्र तो एडवाइस ही लेते आए हैं, पेरेंट्स से, फ्रेंड्स से, संत महात्माओं से, बड़ों से, आसपास जो है उनसे, टीचर्स से, जैसे आपने कहा. और एडवाइस लेना तो अच्छी बात है,
1: जरूरी है,
2: जरूरी है. जो हमारे बड़े हैं उनके पास अनुभव है.
1: ये छोटी छोटी जगहों पे हिंदी में सिखाया भी गया है कि रास्ता पूछ कर जाओ.
2: हाँ.
1: चलो तो फिर गांव जल्दी पहुंचते हैं.
2: हाँ, स्वीट.
1: मतलब हाँ. लोगों से रास्ते पूछते जाओ, नहीं तो फिर गलत रास्ते पे जाओगे, फिर ढूंढते रह जाओगे.
2: बिल्कुल.
1: पर यहाँ बोलते हैं कि जिसको मंजिल का हाँ. कुछ पता नहीं है, जो आपके साथ एंड में नहीं है, रिजल्ट में.
2: इट्स नॉट मंजिल का पता नहीं है, उस रास्ते किसको चलना है. जिस रास्ते जिसको चलना है उसको ही वो रास्ता चूज करना पड़ेगा. चलना आपने है, मैंने नहीं चलना है उस रास्ते. वो परिस्थिति आपकी है, सामना आपको करना है. तो फिर डिसीजन भी किसको लेना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा. क्यों? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि आज के समय में हम सब की, मेजोरिटी की जो निर्णय शक्ति है वो थोड़ी सी कमजोर है. यू नो, हम डिसीजन लेने से पहले अब थोड़ा सा घबराते हैं. उसमें भी रीजन ये है क्योंकि सिचुएशंस अनसर्टेन हो गई है. जितनी अनसर्टेनिटी बढ़ती जाएगी तो डिसीजंस लेने में थोड़ा सा डर आएगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि मेरे डिसीजन का आउटकम क्या हो सकता है, क्योंकि टाइम्स आर अनसर्टेन. जब सर्टेनिटी थी तो डिसीजन लेना इजी था, क्योंकि इट वॉज ये डिसीजन लेंगे तो ऐसे ऐसे होगा, ये डिसीजन लेंगे तो ऐसे होगा.
1: बड़ी बड़ी रिस्क भी तो नहीं थी ना पहले.
2: वही अनसर्टेनिटी ना, रिस्क मतलब अनसर्टेनिटी बहुत बढ़ गई है ना. अब ये नेसेसरी नहीं है कि जो सोच के मैं डिसीजन आज लूं मेरा आउटकम वैसा होगा जो आज मैं सोचूं. तो ये अनसर्टेनिटी है. अब इसको हमने किस तरह से समझना है. लेट्स से बहुत सारे लोग हमारे पास भी आते हैं, सेंटर्स पर आते हैं, अपनी प्रॉब्लम लेकर आते हैं और चाहते हैं कि हम उनको बता दें कि उनको क्या करना चाहिए इसमें. एंड दे विल से इट ऑल्सो डायरेक्टली, प्लीज टेल मी व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, कोई आकर कहेगा कि मेरा रिश्ता ठीक नहीं है अपने हस्बैंड के साथ, वो मुझे ये भी करते हैं, कभी मेरे पर हाथ भी उठाते हैं, हमारी आपस में शुरू से ही कभी बनी नहीं, ये अभी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है. पूरी एक जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है वो सारी बताकर एंड में जो लास्ट लाइन होती है वो ये होती है, आपको क्या लगता है, मुझे उनके साथ रहना चाहिए या मुझे अलग हो जाना चाहिए. नाउ दे वॉन्ट एन आंसर.
1: आंसर भी कैसा, मेरे मन की पसंद का आंसर
2: नहीं, बट आंसर चाहिए.
1: लेकिन आंसर तो मैं यूजुअली, मैं जब जाता हूँ किसी डॉक्टर के पास, मैं पूछता हूँ कि भाई इज अल्कोहल गुड और बैड फॉर मी,
2: राइट?
1: तो मैं वेट करता हूँ कि ये बोले नहीं, थोड़ा एक दो ले लो, कुछ नहीं होता.
2: ट्रू. एक केस में ये कि हम वो आंसर चाहेंगे ताकि जो आंसर मैंने सोचा है उसको कोई और बाहर रिकन्फर्म कर दे तो मुझे करना वो इजी हो जाएगा. लेकिन एक है कि मुझे मुझसे नहीं हो रहा, मेरे से डिसीजन नहीं लिया जा रहा कि कौन सी चीज मेरे लिए राइट है. मैं ये सोचती हूँ कि ये राइट है, फिर थोड़ी देर के बाद मेरा माइंड कहता है नहीं ये भी हो सकता है, जैसे करियर का डिसीशन, जॉब का डिसीशन, बिजनेस करूं या जॉब करूं, बिजनेस करूं किसके साथ करूं, इनके साथ करूं या इनके साथ करूं, ये वाला बिजनेस करूं या ये, रिश्तों में मेरा बच्चा यहाँ शादी करना चाहता है लेकिन मेरे हस्बैंड मान नहीं रहे हैं, क्या करूं मैं, अपने बेटे को सपोर्ट करूं या हस्बैंड को सपोर्ट करूं, ऐसे सारा दिन में बहुत सारे डिसीशंस लेने पड़ रहे हैं जिसके लिए हम चलते चलते थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। अब जब ये लोग हमारे पास कोई आए ऐसा पूछने के लिए कि शुड आई स्टे विद माय हस्बैंड और शुड आई मूव अवे, सो वी टेल देम वी सॉरी ये डिसीशन आपको लेना है कि नहीं नहीं नहीं सिस्टर प्लीज आई एम वेरी कंफ्यूज्ड, आप प्लीज बताओ कि मेरे लिए क्या ठीक होगा, आपको क्या लगता है। एंड यू नो दिल से आपको ज्यादा पता है, आप यू नो इस बारे में आपको ज्यादा मालूम है। अच्छा फिर ये भी कहेंगे आपके पास तो कितने लोग आते हैं ना अपनी प्रॉब्लम लेकर, तो आपको पता होगा कौन सा ऑप्शन ज्यादा अच्छा वर्क करेगा, तो आप प्लीज बताइए। अब ये बहुत रिस्की है कि जब कोई हमारे पास आए ऐसा पूछने के लिए, कोई भी, इवन फैमिली में फ्रेंड्स में, हम बहुत जल्दी उस बात के प्रभाव में आकर उन्हें डिसीशन देने के लिए रेडी हो जाते, मतलब क्योंकि इट गिव्स अ सेंस ऑफ पावर। अगर कोई आपके पास आए ना ये पूछने के लिए कि आपको क्या लगता है मैं ये करूं या ये करूं, हमें ये बहुत अच्छी फीलिंग आती है।
1: हम लोगों को फिर मतलब करना क्या चाहिए, कोई एडवाइस
2: मांग रहा है? ये है कि हमें, क्योंकि जिनसे मांगी जाती है एडवाइस मांगना और डिसीशन पूछना दो बातों में बहुत फर्क है, एडवाइस लेना और डिसीशन लेना। और जो दे रहा है उसको भी बहुत क्लियर होना चाहिए कि वो राय दे रहा है या डिसीशन सुना रहा है, ये बहुत क्लियर होना चाहिए। लेकिन क्योंकि आज हमें यू नो वी हैव दिस नेचर कि हमें कंट्रोल करना है, पावरफुल फील होना है, तो हम बहुत पावरफुल फील करते हैं कि अगर कोई आकर अपने जीवन का बहुत बड़ा डिसीशन हमारे से पूछ रहा है। बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, कभी भी किसी को डिसीशन नहीं सुनाना है। क्यों नहीं सुनाना है? जैसे इस लाइन ने हमें बहुत ब्यूटिफुली बताया, उस रास्ते उनको चलना है। इवन अगर आपका डिसीशन एक्यूरेट है, एक्यूरेट है बिल्कुल डिसीशन, लेकिन वो एक्यूरेट आपके लिए है, आपके संस्कार, आपकी कैपेसिटी, आपकी डिटर्मिनेशन, आपकी विल पावर के अनुसार आप वो डिसीशन लेंगे। लेकिन जो चलने वाला है उस रास्ते, जिसको आप डिसीशन सुना रहे हैं, उसकी कैपेसिटी, उसके संस्कार, उसकी डिटर्मिनेशन, दृढ़ता शक्ति, वो उसकी अपनी है। तो आपका एक्यूरेट डिसीशन भी एक्यूरेट है, लेकिन वो किसके लिए एक्यूरेट है? वो आपके लिए एक्यूरेट है, उनके लिए एक्यूरेट नहीं है। ये जो कर थिन लाइन समझ में आए, ये नहीं है कि हमारी राय सही नहीं होती, हमारी राय सही होती है, एक्यूरेट होती है, लेकिन वो किसके लिए एक्यूरेट होती है? क्योंकि हम अपने फिल्टर से वो राय देंगे ना, और मेरा फिल्टर किस चीज का होगा? मेरे संस्कारों का। जो एडवाइस देने वाले हैं या बताने वाले हैं, आपको ऐसा करना चाहिए, नहीं आपको ऐसा करना चाहिए, जैसे आपने भी कुछ एपिसोड्स पहले हमें बताया कि मेरे अंदर ये संस्कार था कि मैं दूसरे का कम सुन के सीधा बोल देता हूँ, आपको ये करो, आप ये करो, आपको ऐसा करना चाहिए। वी गिविंग डिसीशंस, हम डिसीशंस दे रहे हैं कि दूसरे, चाहे छोटी बात पे हो, चाहे छोटी बात पे हो, लेकिन आप जो बोल रहे हैं उनको करने के लिए वो 100% एक्यूरेट है, लेकिन वो आपके लिए 100% एक्यूरेट है। ये बहुत मतलब बहुत डीप है, इसको समझना होगा कि हम कितना इजीली, इट्स लाइक सेइंग गो रन 1 किलोमीटर एंड कम, इफ यू टेल मी दैट गो वॉक दिस 1 किलोमीटर, आप 1 किलोमीटर पैदल चल के आइए, आप एक्यूरेट बात कर रहे हैं, हेल्थ के लिए अच्छा है, मैं अगर 1 किलोमीटर पैदल चल के आऊं तो मेरे लिए बहुत यूजफुल होगा, तो आपने मुझे डिसीशन सुना दिया, आप जाइए 1 किलोमीटर चलकर आइए। ये डिसीशन आपके पर्सपेक्टिव से और आपकी फिजिकल कैपेसिटी के हिसाब से बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा पोटेंशियल, मेरी कैपेसिटी और मेरी हेल्थ अभी मुझे 100 मीटर भी चलने की परमिशन नहीं देती है, मेरी बॉडी में ताकत ही नहीं है अभी वो। और अगर मैं आपका डिसीशन लेकर चलना शुरू कर देती हूँ, आई विल कोलैप्स, मैं गिर जाऊंगी।
1: अगर मेरा बेटा फिल्म इंडस्ट्री के बारे में मुझसे कुछ पूछे, तो मेरा 30-35 साल का जो एक्सपीरियंस है 300-350 पिछले की, तो मैं दूंगा नहीं, कभी तो मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं करना चाहिए आपको ये, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ही डजंट नो येट।
2: राइट,
1: तो
2: आप एडवाइस देंगे ना, अनुभव आपका है, लेकिन वो सारे अनुभव को, हर परिस्थिति को आपने जैसा परसीव किया, आज आप उसको जैसा समझ रहे हैं, और जो डिसीजन आप ले रहे हैं वो किसके संस्कारों के थ्रू है?
1: मेरे।
2: लेट्स से अ सिंपल थिंग, चलो आपकी यही वाले एक्सपीरियंस को लेते हैं। सपोज आपके अंदर विल पावर बहुत है, ठीक है, ट्रेमेंडस विल पावर। अभी इतनी विल पावर सब में नहीं होती है, ठीक। तो आपका एक संस्कार, एक क्वालिटी जो बहुत स्ट्रांग है, अब इतनी विल पावर आपके पास है, उस कारण से आपने अपना पूरा करियर अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे आप चले। आपने कहा मैं ऐसा ही करूंगा, मैं इतने बजे ही शूट करूंगा, मैं इतने बजे नहीं करूंगा, आपको मुझे लेना है आप लीजिए, नहीं लेना है आई एम फाइन। सब नहीं कर सकते ये।
1: आज सुबह भी मैंने अपने क्रू से बात की थी, कैमरा डिपार्टमेंट से, मैंने कहा इफ यू वांट टू स्टिक टू योर प्रिंसिपल्स, तो फिर जैसे मैं एक साल घर बैठा मुझे किसी ने काम नहीं दिया, फिर आपको वो भी करना पड़ेगा।
2: विल पावर अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पर चलने की, फिर एक साल अगर घर बैठना पड़ा, उस एक साल में अपने मोटिवेशन लेवल को मेंटेन करके रखा। ऐसा नहीं कि एक साल काम नहीं मिला तो मैं,
1: कई सारी हॉबीज हैं, अपनी हॉबीज से बिजी रहे,
2: लेकिन वो आपकी चॉइस ना। अगर किसी और को एक साल घर बैठना पड़ जाए तो उदास हो जाए, वो फियर क्रिएट कर दे कि अब पता नहीं मेरे पास काम आएगा कि नहीं आएगा।
1: जिंदगी बर्बाद कर दी इन्होंने।
2: सो मच, नहीं किसी और की नहीं, आपका ही। आप देखो वो एक साल अगर आप वेट करते हैं, आपके अंदर वो पावर है। अब डिसीशन आपने लिया था ना कि मैं ये नेगेटिव रोल नहीं करूंगा, क्योंकि डिसीशन आपका था, तो उस डिसीशन के कॉन्सिक्वेंसेस जो आए सारे, कि आपके पास सपोज एक साल काम नहीं आया,
1: लोग तो बोलने लगे अच्छा था बेचारा,
2: बेचारा मतलब राइट ऑफ करना शुरू कर दिया,
1: नहीं अच्छा था बेचारा, पागल हो गया है।
2: हाँ।
1: करियर को पेपर कुल्हाड़ी मारी, मेरी वाइफ को जाके बोला।
2: राइट, अब डिसीशन लिया कि मैं इन प्रिंसिपल्स पे काम करूंगा। पहली बात तो वो डिसीशन लेने के लिए विल पावर चाहिए, उसके बाद जो पब्लिक ओपिनियन आया उसके ऊपर, उसको अपने ऊपर इफेक्ट होने
1: नहीं
2: दिया। तीसरा, जो काम नहीं मिला एक साल उस वजह से, उसको भी अपने एंथुजियाज्म पर हावी नहीं होने दिया। कहा ओके आई विल वेट, आएगा काम, लेकिन मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर। इसका मतलब विल पावर, सेल्फ रिस्पेक्ट कि दूसरे मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, मैं उससे इफेक्ट नहीं होऊंगा। तीसरा, एंथुजियाज्म, कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन। ये आपके पास सपोज 100 में से 90 मार्क्स थे आपके पास इन सारे सब्जेक्ट्स के अंदर, 90 मार्क्स आपके पास थे विल पावर में, सेल्फ रिस्पेक्ट में और सेल्फ कॉन्फिडेंस में, और इसीलिए वो डिसीशन आपके लिए 100% एक्यूरेट है। अब आपका 35 इयर्स ऑफ करियर, आपने ये डिसीशंस इस तरह से लिए एंड वो आपके लिए राइट प्रूफ हो गए। अब आपने कहा आज मेरा बच्चा अगर मुझसे एडवाइस मांगेगा तो मेरे पास 35 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो मैं उसको एडवाइस नहीं दूंगा उस बेसिस पर। 35 इयर्स का आपका एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन योर 90 मार्क्स इन ऑल दीज क्वालिटीज, तो आपको जो एडवाइस दे रहे हैं, आपके 90 नंबर थे विल पावर, सेल्फ कॉन्फिडेंस और डिटर्मिनेशन में। पहले ये चेक करना पड़ेगा, अगर आप सेम एडवाइस बच्चे को दे दी कि कुछ नहीं होता, डोंट सकम्ब टू प्रेशर, बोलने दो लोगों को जो बोल रहे हैं, तुम अपना करियर अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे चलाओ, तुम्हें झुकने की जरूरत नहीं है, तुम्हें रोल के लिए भी कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है, मैंने किया, देखो मुझे आज मैं कहां पर हूं। लेकिन जो बहुत बड़ा फैक्टर है, आपके 90 आउट ऑफ 100 थे उन तीन क्वालिटीज में, क्या बच्चे के भी 90 आउट ऑफ 100 होंगे इन तीन क्वालिटीज में? हो सकता है किसी में उसके पास 90 से ज्यादा है, क्योंकि उसके अपने संस्कार और क्वालिटीज होंगी, और किसी में उसके पास उससे कम है,
1: कम है।
2: हो सकता है उसके पास विल पावर उतनी है कि मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं। एनीबडी, वी आर सेइंग एनीबडी, फ्रेंड हो, रिलेटिव हो, बेटा हो, उसके पास विल पावर है कि मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, लेकिन उसके पास उतनी सेल्फ एस्टीम नहीं है कि जब सारी दुनिया मेरे को बोलेगी कि मैंने गलत लिया तब मैं तो भी स्ट्रांग रहूंगा। हो सकता है वो वैल्यू आपकी जितनी ना हो, आपके पास 90 हो उसके पास 50 हो, हो सकता है आप एक साल बिना काम के रहे लेकिन आपका उमंग उत्साह उतना ही बना रहा, हो सकता है उसका उमंग उत्साह उतना ना बना रहे, तो फिर आपका दिया हुआ डिसीशन उसके लिए राइट नहीं होगा ना। आपके लिए राइट था, आपके लिए 110% राइट था, आज आप जो राय दे रहे हैं वो भी 110% राइट है, लेकिन हम, दैट्स व्हाई इट सेज डोंट टेक द डिसीशन ऑफ दोज पीपल हु आर नॉट गोइंग टू वॉक ऑन दैट रोड। आप अच्छा, आपने जब 35 इयर्स में वो किया, परिस्थितियां अलग थी, समय अलग था, लोग अलग थे जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, आज परिस्थितियां अलग है, इंडस्ट्री बदल जाती है, लोग अलग हैं जिनके साथ वो वर्क कर रहा है और उसके अपने संस्कार अलग हैं। और एक बहुत बड़ा फैक्टर, आपके पास्ट कार्मिक अकाउंट्स अलग हैं और उसके पास्ट कार्मिक अकाउंट्स अलग हैं। जो डिसीशन आपकी फेवर में वर्क कर गया वो नॉट नेसेसरी होगा कि किसी और की भी फेवर में वर्क करेगा।
1: उल्टा भी हो सकता है ना, एक साल आप घर बैठे रहो, लोग राइट ऑफ कर दें, भूल जाएं आपको।
2: यस,
1: फिर
2: दिस इज व्हाट, उल्टा भी हो सकता है ना, कंप्लीटली बैकफायर कर सकता है,
1: लोग भूल ही गए, ये काम ही नहीं करना
2: चाहता। हो सकता है, अच्छा हो सकता है और भी कई गुना ज्यादा अच्छा हो जाए कुछ, वी डोंट नो। हम ये नहीं कह रहे कि हमारा डिसीशन हमेशा दूसरे के लिए गलत प्रूफ होगा, इम्पोर्टेंट है हम डिसीशन अपने संस्कारों की कैपेसिटी से देते हैं, लेकिन जो सामना करना है जिसने उस परिस्थिति का, वो आपसे डिसीशन तो ले लेगा, आपसे ब्लेसिंग्स भी ले लेगा, लेकिन आपसे आपके संस्कार तो नहीं ले पाएगा ना।
1: बट उस डिसीशन का जो रिजल्ट है, जो भुगतना पड़ता है, वो तो मुझे ही करना पड़ेगा ना, जिसने डिसीशन ली,
2: right.
1: भले मैंने 10 आदमी से पूछ के ली,
2: yes. This is it. भले मैंने 10 आदमियों से पूछ के ली, लेकिन मेरे को डिसीशन लेते समय ये क्लैरिटी होनी पड़ेगी
1: कि मुझे भुगतना है,
2: भुगतना नहीं,
1: गुड और बैड,
2: गुड और बैड
1: रिजल्ट में तो आप नहीं आएंगे ना मेरे।
2: एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, मुझे इस डिसीशन को इम्प्लीमेंट करना है, ये डिसीशन मेरा है। नेवर एवर कैन वी से मैं उनके लिए ये कर रहा हूँ, उन्होंने बोला इसलिए मैं कर रहा हूँ।
1: वाल्मीकि जी की स्टोरीज में भी बचपन में हम पढ़ते थे ये कि भाई जो भी आप कर रहे हो ठीक है, लेकिन इसका जो भुगतान, इसका जो फल है, गुड और बैड, हम उसके साथ भागीदार
2: आपके साथ नहीं आ सकते, राइट। अब इसको हर स्टेप पर देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में भी शेयर किया कि सपोज कोई आकर हमसे पूछे कि मेरे हस्बैंड ऐसे ऐसे हैं, मैं उनके साथ रहूं या अलग हो जाऊं। अब हमने क्या किया, बात सुनी, पर्सपेक्टिव सुना, पहली बात तो एक का पर्सपेक्टिव सुना, वो एक और क्रिटिकल पार्ट कि वाइफ का तो सुन लिया, हस्बैंड का पर्सपेक्टिव तो हमें पता ही नहीं है, हस्बैंड एक्चुअली क्या है, कैसा है, हमें नहीं मालूम, हम तो वो सुन रहे हैं कहानी जो एक तरफ से सुनाई जा रही है। अब सपोज वाइफ के अंदर 80% एडजस्टमेंट पावर है, राइट, मेरे से डिसीशन लेने आई, मेरे पास 60% एडजस्टमेंट पावर है, तो माय डिसीशन वुड बी आपको ऐसे व्यक्ति के साथ तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, आपको तो बिल्कुल अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि मेरी एडजस्टमेंट पावर, टॉलरेंस पावर कितनी है, 60 है, लेकिन उनकी टॉलरेंस पावर 80 है, अगर वो रहती तो वो कर लेती।
1: यही बात मदर एंड डॉटर, डॉटर अगर आके बोले कि मेरा हस्बैंड ये कर रहे, तो बोले देखो मैं भी तो बिना हस्बैंड की जी रही हूँ, पूरी लाइफ जीती हूँ, बिल्कुल झुकना नहीं, अब अटल रहो अपने पॉइंट्स पर।
2: दिस इज इट, दिस इज व्हाई इट्स वेरी क्रिटिकल,
1: बाद में उसका भी झगड़ा हो जाएगा, मेरी माँ ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी।
2: बिल्कुल, और ये होता है, ये बिल्कुल होता है। अब अगर उस वो बेटी या ये लेडी जो पूछने आई, उसके पास सहन शक्ति थी, उसके पास एडजस्ट करने की शक्ति थी, सब कुछ था उसके पास, रिसोर्सेस था, सिर्फ एक छोटी सी बात की, डिसीशन किसी और से पूछ लिया, अपने रिसोर्सेस नहीं इवैल्यूएट नहीं किए कि मेरे पास कितने रिसोर्सेस हैं। तो अगर मेरी टॉलरेंस पावर 60 है लेकिन सामने वाले की 80 है, तो भी मेरा गलत हो गया डिसीशन, मैंने उनको कहा आप अलग हो जाओ, ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहिए, उनका नुकसान हो गया। अब अगर उनकी टॉलरेंस पावर 80 है लेकिन मेरी 100 है, उनसे ज्यादा है कई गुना, मैंने कहा बिल्कुल रहना चाहिए उनके साथ, आप कैसे अलग होने का सोच रहे हो, लेकिन उसके अंदर है ही नहीं शक्ति एडजस्ट करने की वो उतनी, अगर ये रहे उनके साथ और एडजस्ट करने की कोशिश करे तो अंदर घुट जाएगी, घुटकर डिप्रेशन में चले जाएगी। तो मेरा ये डिसीजन कि आपको अलग नहीं होना चाहिए, साथ में रहना चाहिए, तो भी गलत हो गया।
1: तो कोई मुझसे अगर डिसीजन लेने आए, मेरी बेटी या बेटा, और इम्पोर्टेंट थिंग्स इन देयर लाइफ, जो आप झगड़े की बात कर रहे हैं या किसी फिल्म करियर की बात कर रहे हैं, तो मैं किस बेसिस पे दूं? मैं यही बोल सकता हूँ बेटा आपको तो सोचना चाहिए ना, आप बताओ।
2: हम ये कहते हैं
1: न्यूट्रल हो जाऊं?
2: नहीं, हम कैसे शेयर करेंगे किसी के साथ? एक, ये सिचुएशन आपकी है, आप बेस्ट इवैल्यूएट कर सकते हैं इस सिचुएशन को, क्यों आप परिस्थिति में हैं, हम परिस्थिति से बाहर है, जो सामने आपके व्यक्ति है वो भी सामना आप कर रहे हैं। मेरे लिए बहुत इजी है यहाँ बैठकर बोलना कि नहीं आप करो ना उनके साथ, अच्छा क्या प्रॉब्लम है, लेकिन सामना आप कर रहे हो तो इवैल्यूएट आप बेस्ट कर सकते हो। अब जब हमें राय देनी है कि हम क्या करते, वी हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर विच सेज, अगर मैं आपकी जगह होता, वेरी क्लियर आपको ऐसा करना है, नहीं, अगर मैं आपकी जगह इस परिस्थिति में होता तो मैं ऐसा करता, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मैं होता तो मैं ऐसा करता, अगर आप ऐसा करेंगे तो ये कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं, अगर आप ये करेंगे तो ये कॉन्सिक्वेंसेस आपके सामने आ सकते हैं, नाउ यू चूज। एक फैसिलिटेटर, एक गाइड, एक पेरेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल ये प्ले कर सकता है कि डिटैच्ड होके सारी ऑप्शंस के प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस क्या आ सकते हैं ये सामने रख सकते हैं,
1: और अगले की सहन शक्ति भी तो देखनी है ना,
2: वो डिसाइड करेंगे, वो डिसीजन वो उनका होगा। हम प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस दे सकते हैं सिर्फ, कोई कहे इस रास्ते जाऊं या इस रास्ते जाऊं।
1: बट कभी कभी बच्चे बोलते हैं ठीक है देखी जाएगी, कॉन्सिक्वेंस होगा तो होगा, मैं तो डिवोर्स करके ही रहूंगी,
2: तो डिसीजन उनका है, इट इज एब्सोल्युटली फाइन। सी वन थिंग वी हैव टू ऑलवेज रिमेम्बर, हम किसी के कार्मिक अकाउंट में, अब ये सिर्फ डिसीजंस नहीं होते, ये कार्मिक अकाउंट्स होते हैं एक्चुअली, उस आत्मा का उस आत्मा के साथ कार्मिक अकाउंट है। लेट्स से मेरा आपके साथ एक कार्मिक अकाउंट है, ऐसे ही एक और आत्मा का भी आपके साथ कार्मिक अकाउंट है, राइट? अब ये पास्ट के कैरी फॉरवर्ड कार्मिक अकाउंट्स हैं। सपोज मेरा आपके साथ पास्ट कार्मिक अकाउंट बहुत अच्छा था, तो मेरा अभी प्रेजेंट भी इंटरेक्शन कैसा होगा? बहुत अच्छा होगा। लेकिन किसी और आत्मा का आपके साथ पास्ट कार्मिक अकाउंट सपोज थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग था, तो उसका प्रेजेंट भी आपके साथ कैसा होगा? कि टक्कर ही आएगी, बार बार संस्कार में टक्कर आएगी। अब अगर ये जो थर्ड है ये मेरे से राय लेने आए कि आपके साथ डील कैसे करना है या आपके साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, तो आई एम गोइंग टू से आपको क्या प्रॉब्लम है, इतने अच्छे हैं, किस बात की आपको प्रॉब्लम आ रही है उनसे काम करने के लिए, ही इज अ वंडरफुल पर्सन, ऑफ कोर्स आपको उनके साथ काम करना चाहिए बेस्ड ऑन
1: माय आइडिया,
2: माय संस्कार्स एंड माय कार्मिक अकाउंट्स, माय कार्मिक अकाउंट।
1: फिर माँ जब बेटी की लाइफ में दखल देती है, तुम ये सब सुन के बर्दाश्त करके बैठी हो, तुम यहाँ ये भी करती हो, वहां भी ये भी करो, बोलो कि नौकर दे, बोलो ये करे, छोटी छोटी बात में जो डिस्टर्बेंस शुरू होता है।
2: yes.
1: अब मेरी बात में समझ में आई, तब से मैं सोच रहा था छोटी सी बात है, लेकिन आपने जो बोला कि छोटी सी लाइन भले छोटी है, बात बहुत डीप है।
2: कई बार ऑपोजिट भी होता है कि पेरेंट्स बोलते हैं नहीं तुम्हें रहना चाहिए वहाँ, ना आपको बनानी चाहिए, क्यों नहीं आप रह सकते हो, हमने आपकी शादी की, आपको जाकर वहां रहना है। कैपेसिटी नहीं इवैल्यूएट करते, बेटी की कैपेसिटी अगर नहीं इवैल्यूएट की, और जब उसको जो सहयोग की जरूरत थी वो सहयोग नहीं दे पाए तो भी नुकसान है,
1: बहुत डिफिकल्ट। अगर हमने बोल दिया कि वहीं रहना है, जीना है, मरना है, और वो वापस गई और सुसाइड कर ली, तो
2: दिस इज व्हाट ना, तो सहयोग
1: तो
2: नहीं
1: फिर
2: दिया,
1: वो भी दुख है, और रख लिया।
2: yes.
1: और वो बोला कि अच्छा ठीक है मैं लेने नहीं आऊंगा, रखो अपने बच्ची को, तो
2: right. हमारा रोल है पहले उनको उनकी कैपेसिटी दिखाना जो वो खुद अभी यूज नहीं कर रहे हैं, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है कि उनको उनके ही संस्कार्स की अवेयरनेस दिलाना। यू नो कभी कभी लेट्स से आई विल से नो आई कांट वॉक दैट मच, नहीं मेरे से ये नहीं हो पा रहा है, आप मुझे मोटिवेट करेंगे, आप मुझे मेरे ही संस्कारों से जागृत कराएंगे, क्योंकि आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, आपको पता है मेरे पास वो संस्कार है, लेकिन उस संस्कार को मैं इस टाइम यूज नहीं कर रही हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो होता है आसपास के लोगों का, स्पेशली व्हेन दे आर क्लोज पीपल, यू नो, फैमिली फ्रेंड्स जो हमें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, उनका सबसे इम्पोर्टेंट रोल है हमें हमारे संस्कार की अवेयरनेस दिलाना कि तुम्हारे अंदर इतनी कैपेसिटी है, यूज दिस, आप ये टूल यूज करो, आप ये टूल यूज करो, आप ये टेक्निक यूज करो। अपने संस्कार की अवेयरनेस दिखाना, सेकेंड कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में डिस्कस करना कि ये करेंगे ये हो सकता है, सेकेंड ये हो सकता है, थर्ड ये ऑप्शंस। नॉर्मली क्या होता है, जो सिचुएशन में होता है ना, वो ऑप्शंस नहीं एक्सप्लोर करता क्योंकि वो अपने आइडिया से अटैच्ड होता है। जो डिटैच्ड होगा वो बहुत सारे ऑप्शंस देख सकता है, जो अटैच्ड होता है वो कुछ नहीं देख सकता, उसको सिर्फ एक ही चीज दिखती है, नहीं मेरी नहीं बनती इनसे, नहीं मेरी नहीं बनती, मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, उसको सारी बाकी ऑप्शंस नहीं दिखाई देती।
1: ये अटैच्ड किससे है?
2: अपने हर्ट से, अपने आइडिया से। आप मुझे दर्द देते हैं जीवन में, ये मेरा आइडिया है, आई एम हर्ट, पहली बात तो मैं दर्द में हूँ, तो मुझे कुछ भी और ऑप्शंस दिखाई ही नहीं
1: देते। रॉन्ग हो,
2: यस, आई एम हर्ट ना, आई एम सो हर्ट राइट नाउ। जैसे कुछ लोग आते हैं हमारे पास, वो कहेंगे नहीं मेरी बनती इनके साथ, मैं सोच रही हूँ अलग हो जाए, या पेरेंट्स बोलते हैं हम सोच रहे हैं अब अपना बच्चा इनसे अलग हो जाए, हम उनकी शादी कहीं और करा देंगे। वो एक चीज देख रहे हैं सिर्फ, अभी सिर्फ एक ही चीज देख रहे हैं कि इनसे नहीं बनती, हम अलग हो जाते हैं। उनसे सिर्फ दो मिनट भी अगर बात की जाए कि हाँ इनसे क्यों नहीं बन रही, क्योंकि इनके और इनके संस्कार में ट्यूनिंग नहीं है, एडजस्टमेंट नहीं हो रही, लेकिन आपका बच्चा यही संस्कार लेकर नेक्स्ट रिश्ते में जाएगा ना, यही संस्कार लेकर जाएगा। अच्छा, दूसरा जिसके साथ आप सेकेंड टाइम रिश्ता जोड़ेंगे, वो अपना बंडल ऑफ संस्कार लेकर आएगा, वो ये नहीं होंगे जो एग्जिस्टिंग स्पाउस के हैं, लेकिन वो कुछ और होंगे, डिफरेंट, अच्छे होंगे बुरे होंगे नहीं, डिफरेंट होंगे। फिर वो नए संस्कार के सेट के साथ अब फिर से एडजस्टमेंट पावर करना। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपका बच्चा भी एक पास्ट लेकर आ रहा है, जिनके साथ आप दूसरी शादी कराने जा रहे हैं वो भी एक पास्ट लेकर आ रहा है, तो पहले ही दोनों आत्माओं की शक्ति तो नॉर्मल से अपने कम
1: लो है।
2: दोनों कंपैरिजन करेंगे अपने पास्ट के साथ, दोनों अपना हर्ट लेकर आएंगे। अब इन दोनों की एडजस्टमेंट पावर पहले से कई गुना कम है, तो द प्रोबेबिलिटी फैक्टर कि अब ये कितना एक दूसरे के साथ मोल्ड कर पाएंगे, ये तो पहले से कम होने वाली है। इतनी शक्ति नई एडजस्टमेंट में लगाने की बजाय,
1: हाँ, इससे आधी शक्ति, इससे कम शक्ति पुरानी एडजस्टमेंट में लगा लें,
2: हो जाएगा।
1: तो सिस्टर, मैं ये चाहूंगा कि इससे हम अगले एपिसोड में कंटिन्यू करें।
2: डेफिनेटली,
1: थैंक यू सो मच, वेरी इंटरेस्टिंग, थैंक यू, नमस्कार।
3: व्हेन वी टेक अ डिसीजन, इट हैज टू बी अकॉर्डिंग टू आवर कैपेसिटी टू फेस द सिचुएशन। वी नीड टू टेक द डिसीजन विद फुल अवेयरनेस ऑफ आवर संस्कार्स, which can make it easy or difficult to implement the decision. When we give decisions or ask others for decisions, it may go wrong. The one giving the decision is giving according to their sanskars, which may be completely different from the sanskars of the one implementing the decision. The right decision of the giver may be a failure for the one to whom it has been given. Do not take decisions for others. Be detached and see all the probable consequences of their decisions. Show them all the options possible and leave the decision to them. Make others aware of their sanskars which they are not using. Empower them to use their positive sanskars to face the situation. Then they will take the right decision.
4: Manan se manobal tak, aastha se astitva tak. Puneri Awaaz 107.8. Khush raho, khushiyan baat.

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जैसा अन्न वैसा मन, तो तामसिक भोजन का पर्यावरण पे तो असर हो रहा है, लेकिन तामसिक भोजन का हमारे मन पर क्या असर हो रहा है? अगर उस भोजन में नफरत की, क्रोध की, दर्द की ऊर्जा है, तो हमारी मन की स्थिति भी वही हो जाएगी उसको ग्रहण करने के बाद। तो अगर आज हम सिर्फ दो प्रतिज्ञा ले, एक हमारा अन्न सात्विक हो और दूसरा हम सिर्फ आज एक संस्कार का त्याग करें, वो है क्रोध, तो सही मायने में हमने आज इस यज्ञ में आहुति डालकर विश्व में शांति लाने की सेवा की, वो सच्ची सेवा है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अभी कोई चाहे तो हमसे कुछ भी करवा सकता है, या हम खुद चूज करते हैं उठना है या उठना है, बैठना है, खड़े होना है, हाथ ऊपर करना है, नीचे करना है। ये शरीर हमारी मर्जी से चलता है या औरों की मर्जी से चलता है? हमारी मर्जी से चलता है। हमारे मूड आजकल किसकी मर्जी से चलते हैं? कोई हमसे प्यार से बात करे,

नमस्कार दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और हम अपने आगे की चर्चा इसी तरह जारी रखते हैं। आज का हमारा विषय है तनाव रहित जीवन। एक होता है तनाव का निवारण भी हमें करना आना चाहिए। तनाव को दूर करने के लिए हमें या तो हम अपनी आंतरिक शक्ति का को बढ़ा सकते हैं, या तो उसे हम बढ़ाएं या बाहरी दबाव को कम करें, जैसे कि हम अपने खर्चे को कम करके या आमदनी के अन्य साधन अपनाकर अपने बजट को ठीक कर ले। इसी प्रकार हम अपनी जो है सहन शक्ति बढ़ाकर साक्षी दृष्टा होकर या ज्ञान योग की पराकाष्ठा से स्वयं को संतुलित कर ले, फिर तो तनाव से मुक्ति पा सकते हैं। यदि परिस्थितियां लगातार चलती रहे और हम तनाव

पे ही रहें, जैसे आपसी कलह, क्लेश, बिजनेस में घाटा, दफ्तर में बॉस से अनबन, इच्छाओं की पूर्ति न होना या लंबी बीमारी आदि, तो हमारे दिल व दिमाग पर भी तनाव प्रभाव डालने लग जाता है। फिर क्या होता है, डिप्रेशन के चिन्ह जैसे उदासी आना, किसी भी कार्य में मन न लगना आदि ऐसा मतलब पैदा होने लगते हैं। और हमें तनाव को दूर करने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। एक होता है तनाव के प्रति अपना जो होता है दृष्टिकोण, हमें बदलना चाहिए। इसके प्रति हम कैसे अपने दृष्टिकोण को बदलेंगे, किसी भी समस्या या परिस्थिति का भारीपन या हल्कापन, हल्कापन इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसे किस दृष्टिकोण से लेते हैं। यदि हम अपने दृष्टिकोण को बदल ले और यह समझ ले कि यह समस्या हमारे कल्याण के लिए है, इससे हमें कुछ शिक्षा ही मिलेगी या यह परिस्थिति हमारी कमी को निकालने के लिए आई है, तो यह हमें तनाव न होकर एक खेल ही नजर आएगा। एक यहाँ पे ये भी होता है, असफलता को कभी कभी सफलता न मिलने पे भी इंसान उदास हो जाता है, तो इसमें हम क्या करते हैं, असफलता को स्वीकार हमें ना करना चाहिए, इसे भी हम स्वीकार ना करें। मान लीजिए कि आप किसी भी रास्ते पर चल रहे हैं, रास्ते पे में चलते चलते क्या होता है, आपका पांव फिसल जाता है और आप गिर जाते हैं, तो आप क्या करेंगे, क्या आप चलना छोड़ देंगे या उठकर अपने कपड़े झाड़ेंगे या फिर से चलना शुरू कर देंगे। इसी प्रकार जीवन में कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ता है। यदि आप असफलता को स्वीकार करके हतोत्साहित होकर बैठ जाएंगे तो आप जीवन में उन्नति नहीं कर सकेंगे। अतः असफलता को न स्वीकार करके बल्कि और ही हिम्मत से आगे बढ़ने का ही सोचना, जैसे हर ताले की चाबी होती है वैसे हर समस्या का भी हल अवश्य होता है। मेहनत करते रहने पर कभी कभी हल मिल ही जाएगा। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ, और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार। तो फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में, और हम अपने आगे की चर्चा इसी तरह जारी रखते हुए देखते हैं कि तनाव मुक्त जीवन हमें कैसे जीना है। हमारा आज का विषय है तनाव रहित जीवन। तो तनाव ग्रस्त विश्व, अभी विश्व को कैसा बनाना है? हाँ, अभी तो विश्व जो है वो तनाव ग्रस्त है। और एक होता है जीवन, एक क्या है, प्रयोगशाला है। प्रयोग करने के लिए एक टेस्ट ट्यूब लेकर उसमें कुछ केमिकल्स डाले जाते हैं, फिर जो प्रक्रिया करनी होती है हाँ वह की जाती है। इसके बाद जो नया केमिकल बनता है वह नई खोज के रूप में हमें प्राप्त होता है। इसी प्रकार जीवन में समय जो है हमारी टेस्ट ट्यूब है। इसमें आप अपनी समस्या को डाल दीजिए, फिर समस्या का हल निकालने के लिए विचार सागर मंथन कीजिए। कुछ दिनों बाद समस्या का हल मिल जाएगा, वही हमारा अनुभव होगा और हम अपने अनुभव से दूसरों को भी लाभ पहुंचा सकेंगे। एक यहाँ पे ये भी होता है कि समस्याओं को स्वीकार कर उनसे समझौता करें। कभी कभी हमें क्या करना चाहिए, समझौता भी करनी आनी चाहिए। कई बार समस्याओं का कोई हल नहीं होता, जैसे लंबी बीमारी, अंगहीनता, या परिवार में किसी भी सदस्य का व्यवहार, या ऑफिस में किसी भी हाँ व्यक्ति का व्यवहार आदि। ऐसी बातों को हम क्या करते हैं, हमें स्वीकार करना पड़ता है और उन्हें साथ लेकर चलना ही होता है। जैसे यदि आप कहीं सफर कर रहे हैं तो आपके जो पास अपनी जो अटैची होती है, चाहे वो कितनी भी भारी हो, आप उसे उठाएंगे ही। ऐसे ही आप उन समस्याओं का भी जीवन भी हाँ उन समस्याओं को जीवन रूपी यात्रा की अटैची समझ लीजिए और यात्रा पर चलते रहिए। विश्व में भी बहुत तरह की समस्या है, हाँ तनाव ग्रस्त है हमारा विश्व। तो विश्व में कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो स्वयं तनावग्रस्त नहीं होते, परंतु उनके कारण जो है सारा विश्व तनाव में आ जाता है। जैसे हिटलर के मन में आया कि वह विश्व विजेता बने, इससे कितना नुकसान हुआ, कितने लोग मारे गए। वास्तव में यह भी एक तनाव ही है। आज भी विश्व के जो हालात बने हुए हैं वह भी एक प्रकार का तनाव ही है। एक देश दूसरे देश को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है और स्वयं को विश्व का सुपर पावर बनाना चाहता है, इसलिए अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा रहा है। इस पर कितना खर्च हो रहा है, यदि यह लोग भी अगर आध्यात्मिक परायण हो जाएं और विश्व बंधुत्व की भावना इनके अंदर आ जाए, तो विश्व विनाश से, जो विनाश हो रहा है उससे बच सकता है। आध्यात्मिकता तो कहती है मन जीते जगत जीत। वे लोग तन जीते जगत जीत का ही अनुसरण कर रहे हैं। यदि वे लोग भी विश्व पर जीत पाने की बजाय स्वयं पर जीत पाने का प्रयत्न करें और लोगों के दिलों में हाँ लोगों के जो है दिलों को जीत कर विश्व विजेता बनने की कोशिश करें, तो विश्व में जो है तनाव भी समाप्त होगा और विश्व विनाश जो हो रहा है विनाश से भी बच जाएगा। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ। और आइए सुनते हैं तब तक के लिए इस गीत को।

नमस्कार दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हैं। आज हम का हमारा विषय है तनाव रहित जीवन। योग और तनाव एक होता है, योग और तनाव। तनाव अर्थात तन प्लस आओ, तनाव। तन में आना ही तनाव होता है। आज की मानव की जो सुख शांति आनंद का आधार भौतिक प्राप्तियां ही है, इन प्राप्तियों के होते हुए भी आत्मा की जो संतुष्टता न होने के कारण आत्मा में अभाव का अभाव सा महसूस होता है और कुछ और चाहिए ऐसी महसूस होती रहती है। जब योग के द्वारा हमें आध्यात्मिक प्राप्ति होती है तो वह जो है अभाव समाप्त हो जाता है, फिर हमें सांसारिक पदार्थ जो है तुच्छ नजर आने लगते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा को ज्ञान मिलने के बाद हीरे भी पत्थर लगने लगे। योगाभ्यास करते योगा जो अभ्यास था वो करते करते हम क्या करते हैं, आत्म स्वरूप स्थिति को पाते जाते हैं और ईश्वरीय आनंद से भरपूर हो जाते हैं। फिर सांसारिक इच्छाएं जो होती है, तमन्नाएं समाप्त हो जाती है। हमारा जो जीवन है आध्यात्मिक जीवन बन जाता है। ऐसी अवस्था में तनाव का तो कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता। अतः हमें सदा तनाव मुक्त रहकर हर बात को साक्षी दृष्टा स्थिति में रहकर सुख शांति से जीवन बिताना चाहिए। नहीं तो यह जो अनमोल मानव जीवन, इसमें भी संगम योग का ब्राह्मण जीवन व्यर्थ नहीं चला जाएगा। मन के विचारों को लेकर शोध होना चाहिए। कहा जाता है कि मनुष्य अपने विचारों का उत्पाद है, अर्थात हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि आज हम जो भी कुछ हैं अपने विचारों की देन है। अतः अपने विचारों को श्रेष्ठ बनाना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। अभी का जो समय चल रहा है, वर्तमान समय में हम देखते हैं कि मन की जो समस्याएं बहुत बढ़ती जा रही है। मानसिक रूप से लोग जो है अव्यवस्थित है, जिसके कारण कई शारीरिक और मानसिक रोग भी लग जाते हैं। राजयोग जो होता है, एक राजयोग की एक विधि होती है, मन को व्यवस्थित करने में हमारी बहुत मदद करता है। राजयोग के अभ्यास से हम जो है अंतर्मुखी बनते हैं। योग का होना हमारे जीवन में बहुत जरूरी हो जाता है। अंतर्मुखी का अर्थ है अपनी भीतर की और अंदर की जो भी कमी कमजोरी है, अपनी भीतर की ओर मुड़ना और अपने अंदर हो रही जो एक्टिविटी है उसकी जांच करना। मन बुद्धि संस्कारों में क्या चल रहा है उसके रूप को समझना, उसके ऊपर नजर रखना। राजयोग के द्वारा हम यह जान पाते हैं कि हम हमारे जीवन में हमारी जो भी समस्याएं हैं, हमारे विचार पॉजिटिव होते हैं तो बहुत ही धीमी गति से व्यवस्थित तरीके से चलते हैं, लेकिन जब विचार निगेटिव होते हैं तो बहुत तीव्र गति से अव्यवस्थित तरीके से चलते हैं। तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, गाते रहिए और कुछ गुनगुनाते भी रहिए। नमस्कार, ओम शांति।

कई साल पहले की ये बात है। भयानक अंधेरी सिया रात में लिए अपनी बंदूक मैं हाथ में,

0: जा रहा था?
1: नहीं, आ रहा था। नहीं नहीं, जा रहा था।
2: उफ़, आगे भी तो बोलो ना।
1: बताता हूँ बताता हूँ। नहीं भूलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ।
0: बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय।
1: खड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई 10 सवा 10 का बस वक्त था।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो झपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ से, वो पीछे, अरे बचाओ, अरे बचाओ। मैं डाल डाल, वो पास पास, मैं पसीना, वो दाल दाल, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ बचाओ, अरे भागो, अरे भागो, अरे भागो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: हम जब कहते हैं ना क्षमा करना तो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं कर सकते हम, उनकी गलती इतनी बड़ी थी, और अगर हम क्षमा कर देंगे तो वो रियलाइज कैसे करेंगे, और अगर वो रियलाइज नहीं करेंगे वो उसी गलती को दोबारा करेंगे। ये सब चीजें सोचकर हम उस बात को, उस घाव को, उस दर्द को पकड़ते रहते हैं। जितना हम किसी भी घाव को पकड़ के रखेंगे और हम कहेंगे मैं इसको ठीक नहीं करने वाला हूं, सपोज पांव पे चोट लगे, दीक्षित जी ने हथौड़ा लिया, जोर से मारा, चोट लग गई, फिजिकल घाव लग गया, और मैंने कहा इस घाव को मैं जीवन भर भरने नहीं दूंगे, ये कहा, तो फिर उस घाव के पांव को लेकर चलते गए जीवन में। कई और लोग मिलेंगे जो हथौड़ा मारेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। जितना घाव को नहीं भरेंगे तो अगला वाला हथौड़ा, अगली वाली चोट और जोर से लगेगी, जितनी और जोर से लगेगी दर्द और जोर से होगा। हम कहेंगे इस बात को भी मैं नहीं भूलूंगा, अगली बार कोई मारेगा तो क्या होगा, और जोर से लगेगी। तो घाव को रहने दे या भरते जाएं, घाव को रहने देना चाहिए या भरना चाहिए? भरना चाहिए, ऑब्वियस है। हर चीज फिजिकल तो ऑब्वियस होती है और हर चीज इमोशनल इम्पॉसिबल होती है। फिजिकल चीज को भरना है ऑब्वियस है। आप शाम को चाय पी रहे हैं, चाय पीते पीते सोफे पर आप बैठे हैं, सोफे पे चाय गिर गई, तुरंत क्या करेंगे? तुरंत क्या करेंगे? चाय गिर गई चाय पीते पीते, अभी कप में चाय है, लेकिन तुरंत क्या करेंगे? उठकर साफ करेंगे। ये ऑब्वियस है, ये बात ऑब्वियस है, नेचुरल है। क्यों तुरंत उसी टाइम बैठ उठकर साफ करना है? कल सुबह भी तो साफ कर सकते हैं। इसका मतलब अगर सोफे पे कुछ गिरा उसी टाइम साफ करना है, अगर उसी टाइम साफ नहीं किया तो क्या हो जाएगा? दाग लग जाएगा। और यहां कुछ गिरा, यहां कुछ गिरा, कोई आया कुछ कह दिया, दूसरा कोई आया कुछ और कह दिया, तीसरा कोई मिला उसने और कुछ कह दिया, चीजें गिरती गई गिरती गई गिरती गई, लास्ट कब साफ किया? और धीरे धीरे धीरे इतने दाग पड़ते गए, इतने दाग पड़ते गए कि क्या हो गया, कि ओरिजिनल कलर ही भूल गया।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। नमस्कार, मैं हूँ अमोल। आप सभी रेडियो पुनेरी आवाज सुनने वालों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: तो हमारे थॉट्स का सोर्स है, स्रोत है, संकल्प भी किस आधार पर उठ रहे हैं। एक है पास्ट एक्सपीरियंसेस, कोई बीती हुई बातें, दूसरी इन्फॉर्मेशन जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, और तीसरी हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारी मान्यताएं ये हैं। तो वो मान्यता के आधार से, जैसे कभी खुशी कभी गम, जीवन ही ये है, तो ये एक मान्यता है। तो थॉट ऑटोमेटिकली गम की थॉट, उदासी की थॉट क्रिएट करने की आप अपने आप को परमिशन दे देते हैं। जहां आपने अपनी बिलीफ सिस्टम को चेंज किया कि खुशी इज एवरलास्टिंग, तो फिर आपकी थॉट प्रोसेस ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आप ऐकताहेत रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

हा हा दैया डाय उठाय लियो गिर नक पर बंस बजावत देन चरैया जगके मोहन मन में माए नित्य करत राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: असर्टिवनेस विदाउट जेनरेटिंग एंगर, तभी वो रियल मायने में असर्टिवनेस होगा, क्योंकि असर्टिवनेस इनर स्टेबिलिटी। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम गुस्सा भी हैं और स्टेबल भी हैं, क्योंकि जैसे ही गुस्सा अंदर जेनरेट हुआ, चाहे वो सप्रेस कर दिया, लेकिन हम स्टेबल नहीं होते हैं तब, यू नो। तो देन आई कैन नॉट से कि आई एम इंटरनली स्टेबल बट नाउ आई एम बींग असर्टिव। तो इंटरनल स्टेबिलिटी मीन्स यू नो नो ट्रेस ऑफ एंगर, उसको जो पूरा खत्म होगा, इंटरनली बिल्कुल काम एंड इन कंट्रोल है, लेकिन फिर भी आपको डिसिप्लिन करना, यू नो। एंड असर्टिव जब हम होते हैं, हमें बहुत कम बोलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा यू नो, और बहुत सोच समझ के एक एक बोल निकलेगा, क्योंकि आप फुल इन कंट्रोल है। एंगर में या सप्रेशन वाले स्टेज में आप इंटरनली डिस्टर्ब्ड है कि वो हो सकता है कि मुख से कोई ना कोई ऐसा बोल निकल ही जाए कि दूसरे को भी बुरा लगेगा और खुद को भी पश्चाताप हो।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: झुमका, नाक में बत्ती, कान में झुमका, नाक में बत्ती, हाथ में जलती अगरबत्ती।
1: अरे नहीं यार, मगरबत्ती। अरे बोला ना अगरबत्ती, मगरबत्ती, अगरबत्ती, मगरबत्ती, अगरबत्ती, मगरबत्ती, अगरबत्ती।
0: अगरबत्ती कछुआ था, आग पे बैठा पानी था।

0: पैर से चलता है, मांग में सिंदूर भरता है। माथे रोज लगाए बिंदी, इंग्लिश बोले मतलब हिंदी। इस पगर से बट पर वोट मतलब क्या? माथे रोज लगाए बिंदी, इंग्लिश बोले मतलब हिंदी, हिंदी
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। मैं स्मिता जयकर, खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: इतिहास से, भूगोल से,
3: समाज से, संस्कार से,
2: आधुनिकता से और विचार से,
3: खूबियों से भरा अनोखा है मेरा भारत।
2: एक महान राष्ट्र है मेरा भारत,
4: अतुल्य भारत।
3: चलिए आपको बताते हैं
2: भारत की 69 ऐसी विशेषताओं के बारे में
3: जो बनाती हैं भारत को पूरी दुनिया से अलग
2: और प्रदान करती हैं हमें एक गर्वित भारतीय नागरिक होने का हक।
5: क्या आपको पता है कि कोहिनूर, जो दुनिया के सबसे प्राचीन, प्रसिद्ध और कीमती हीरो में से एक है, वो भारत की ही संपत्ति था। कोहिनूर नाम इसे पर्सिया के नादिर शाह ने दिया था। बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के राज में कोहिनूर को ब्रिटेन भेज दिया गया और वहाँ ये क्वीन विक्टोरिया के ताज में सजा रहा। आज भी ये हीरा ब्रिटिश रॉयल फैमिली के पास है।
2: भारत की विशेषताओं को करते रहिए सलाम।
3: पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियां बांटो। जय हिंद,
2: जय भारत।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जब तक हम चाहिए चाहिए करते हैं तब तक हम औरों पे डिपेंडेंट हैं। अब हमें समझ में आ गया कि हम खुद भरपूर हैं, हमें उसका सिर्फ ध्यान रखना है। जैसे ये कप है, अब अगर मुझे लगे कि ये जो मेरा कप है ये खाली है, तो आई विल कीप टेलिंग यू कि इस कप को भरिए। तो आई एम डिपेंडेंट, जब आप भरेंगे तब।

0: अगर आप भर पाए और अगर आपके पास है उसको भरने के लिए, यू नो यू हैव टू हैव दैट लव टू गिव इट टू मी. नहीं तो आई कैन कीप वेटिंग टिल द एंड ऑफ माई लाइफ फॉर पीपल टू फिल माई कप, इट विल नेवर गेट फिल्ड. एंड राजयोग से हमने ये रियलाइज किया कि मेरा जो कप है ये ऑलरेडी भरा हुआ है, मैं हूं ही प्रेम स्वरूप. अब मुझे सिर्फ ध्यान रखना है कि इसको बहुत संभाल के चलना है कि आपका कोई शब्द, कोई और परिस्थिति मुझे उस व्यर्थ चिंतन की तरफ ना ले जाए जिससे मेरी खुशी गायब हो. हम ये वर्ड भी ये यूज करते हैं कि मेरी खुशी को वो छीन गई, मतलब वो मेरे पास ऑलरेडी थी. उतना ध्यान हमें रखना है कि इस भरे हुए कप को अंदर भरा हुआ ही रहने देना है. जब तक उसको खाली समझेंगे मांगते रहेंगे, एंड दैट जर्नी जस्ट गोज ऑन लाइक दैट.
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियां बांटो.

0: चलो चलो घंटी बज गई, चलो चलो।
1: क्यों बिल्लू, कैसे लगा?
2: बहुत अच्छा है दुश्मन।
1: अच्छा लगा ना?
0: चल चल जाओ जाओ जाओ।

अपना नाम नहीं है बन्ने खां भोपाली। मुन्ने मियां बधाई बनो खूब होनहार,

करना, सिर्फ अल्लाह से डरना, सभी को गले लगाना, मोहब्बत में लुट जाना। मोहब्बत वो खजाना है, कभी जो कम नहीं होता है, जिसके पास ये दौलत उसे

घिरा गम का अंधेरा, उसने किया तुझे अलम। जब भी घिरा